सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण

0: आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थी। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात में शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:05 में लीजिए सुनिए चिंतन।
2: ज्ञान आप ही हैं, आनंद भी आप हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, दुखी रहना कोई नहीं चाहता। जरा गहराई में जाकर तो देखो, खुशी भी आप ही हो। जिसे पानी का स्वभाव शीतल रहना है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव है खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, उद्देश्य नहीं। जिस तरह हम में से किसी को सैनिक बनना उद्देश्य है, लेकिन सैनिक बनना स्वभाव नहीं है। भाव में डूब जाओगे तब देखोगे सर्वदा आनंद ही आनंद है। जीते जी मर जाओ तब देखो क्या आनंद है, क्या मजा है। हम अपनी प्रसन्नता को बेच देते हैं दो कौड़ी में। हम दोषी हैं कहकर दुखी हो जाते हैं। जो हुआ सो हुआ, आज से हम खुश हैं। ऐसा संकल्प लो और फिर ऐसा काम नहीं करो जिससे दुखी होना पड़े। जिस प्रकार सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, उसी प्रकार आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी आप बाहरी वस्तु को लेकर होते हैं। हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। खुश रहो, खुशियां बांटो। न दुखी रहो न दुखी करो, न दुख बांटो। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे पास रहने वाले आने वाले सभी खुश होकर जाते हैं। हम कम से कम एक नियम बनाएं कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को हंसाएंगे। जो झुकता है वो सभी जगह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अपनी जिंदगी को व्यवसाय मत बनाओ, इससे आपकी खुशी छिन जाएगी और आप अशांत हो जाएंगे। खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में रहें, भूतकाल और भविष्यकाल में न जाएं। भूतकाल में हमेशा ग्लानी, अफसोस, रोना, दुख और उदासी रहती है। भविष्यकाल में कल्पना, आशा निराशा, चिंताएं और उदासी हैं। वर्तमान में हमेशा खुशी, आनंद, प्रसन्नता, शांति और सुख है। इसलिए वर्तमान में रहने से रोज दिवाली है। अपेक्षा और चाह छोड़ो, हंसो और हंसाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो, यही आपका स्वभाव है। जो समीप में रहता है उसी को पाने के लिए तड़प होती है। खुशी आपके पास है, खुशी के लिए भी तड़प होती है। परमात्मा आपके पास है,

0: तभी तो तड़पन है। हमें जीवन में कुछ चाहिए, क्या चाहिए देखें, सुख दुख मुसीबत या आनंद। हमारा जो भी काम होता है खुश रहने के लिए होता है। जीवन को दुख या मुसीबत नहीं समझें, जीवन प्रभु का प्रसाद है।
1: अभी आप आनंद पर चिंतन सुन रहे थे, वाचन स्वर विनय ध्यानी के थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सर्वप्रथम मातृभूमि को करते हैं नमन इस देशभक्ति रचना के साथ।

भक्ति संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के 13 तून केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली भक्ति रचना।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के 13 तून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी कथा।

गांधी कथा। आज की संक में महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से कुछ अंश और अंत में गांधी जी का एक प्रिय भजन। जलयान धक्के पर लगा, यात्री उतरे, पर मेरे बारे में मिस्टर एस्कम ने कप्तान से कहलाया था, गांधी को एवं उनके परिवार को सायंकाल के समय उतारिएगा। उनके विरुद्ध गोरे बहुत भड़के हुए हैं एवं उनके प्राण संकट में हैं। सुपरिटेंडेंट मिस्टर टेटम उन्हें सायंकाल को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे कप्तान ने इस संदेश का समाचार दिया। मैंने तदनुसार चलना स्वीकार किया, परंतु इस संदेश को मिले आधा घंटा भी न हुआ था, इतने में मिस्टर लाटन आए एवं कप्तान से मिलकर बोले, यदि मिस्टर गांधी मेरे साथ चलें तो मैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहता हूं। स्टीमर के एजेंट के अधिवक्ता के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि मिस्टर गांधी के बारे में जो संदेश आपको मिला है उसके बंधन से आप मुक्त हैं। इस प्रकार कप्तान से बातचीत करके वे मेरे पास आए एवं मुझसे कुछ इस मतलब की बातें कही, आपको जीवन का डर न हो तो मैं चाहता हूँ कि श्रीमती एवं बच्चे गाड़ी में रुस्तम जी सेठ के घर जाएं एवं आप तथा मैं आम रास्ते से पैदल चलें। मुझे यह एकदम अच्छा नहीं लगता कि आप अंधेरा होने पर चुपचाप शहर में दाखिल हूँ। मेरा विचार है कि आपका बाल भी बांका न होगा। अब तो सब कुछ शांत है, गोरे सब तीतर बीतर हो गए, पर कुछ भी क्यों न हो, मेरी राय है कि आपको छिपे तौर पर शहर में कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने सहमति जता दी। मेरी धर्मपत्नी एवं बच्चे गाड़ी में बैठकर रुस्तम जी सेठ के घर सही सलामत पहुंच गए। कप्तान की अनुमति लेकर मैं मिस्टर लाटन के साथ उतरा। रुस्तम जी सेठ का घर वहां से लगभग 2 मील दूर था। जैसे ही हम जलियान से उतरे, कुछ लड़कों ने मुझे पहचान लिया एवं वे गांधी गांधी चिल्लाने लगे। तुरंत ही कुछ लोग एकत्र हो गए एवं चिल्लाहट बढ़ गई। मिस्टर लाटन ने देखा कि भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने रिक्शा मंगवाया। उस पर सवार होने का मुझे ये प्रथम ही अनुभव होने जा रहा था, पर लड़की क्यों बैठने देते। उन्होंने रिक्शे वाले को धमकाया एवं वह भाग खड़ा हुआ। हम आगे बढ़े, भीड़ भी बढ़ती गई, खूब भीड़ जमा हो गई। प्रथम तो भीड़ वालों ने मुझे मिस्टर लाटन से अलग कर दिया, फिर मुझ पर कंकरों एवं सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई। किसी ने मेरी पगड़ी उतार फेंक दी, फिर लाते शुरू हुई। मुझे गश आ गया, मैंने पास के घर के जाली पकड़ ली एवं दम लिया। वहां खड़ा रहना तो संभव ही नहीं था, थप्पड़ पड़ने लगी। इतने में पुलिस अधिकारी की औरत, जो मुझे पहचानती थी, उस रास्ते से गुजरी। मुझे देखते ही वह मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई एवं धूप न रहते हुए भी उसने अपनी छतरी खोल ली। इससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब मुझ पर प्रहार करने हो तो मैसेज अलेक्जेंडर को बचाकर ही किए जाते।

सकते थे। मुझ पर इस दौरान मार पड़ते देखकर कोई भारतीय नौजवान पुलिस थाने पर दौड़ गया। सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने एक टुकड़ी मुझे घेर कर बचा लेने के लिए भेजी। वह समय पर पहुंची। मेरा रास्ता पुलिस थाने के पास ही होकर जाता था। सुपरिटेंडेंट ने मुझे थाने में आश्रय लेने की राय दी। मैंने मना किया एवं कहा, जब लोगों को अपनी भूल ज्ञात हो जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे। मुझे उनके न्याय बुद्धि पर विश्वास है। मैं पुलिस के दस्ते के साथ सही सलामत पारसी रुस्तम जी के आवास पर पहुंचा। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोड़ा खून निकल आया था। स्टीमर के डॉक्टर दादा बरजोर वहीं उपस्थित थे। उन्होंने मेरी अच्छी सेवा शुरू की। यो भीतर शांति थी पर बाहर गोरों ने आवास स्थल को घेर लिया था। सायंकाल हो चुकी थी। अंधेरा हो चला था। बाहर सहस्त्रों लोग तीखी आवाज में शोर कर रहे थे। गांधी को हमें सौंप दो की पुकार मचा रही थी। परिस्थिति का विचार करके सुपरिटेंडेंट वहां पहुंच गए थे एवं भीड़ को धमकी से नहीं बल्कि उसका मन बहलाकर वश में रख रही थी। वे फिर भी निश्चिंत तो न थे। उन्होंने मुझे इस आशय का संदेश भेजा, यदि आप अपने सखा के मकान, माल, असबाब एवं अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो जिस तरह से मैं कहूँ उस तरह से आप इस आवास स्थल से छिपे तौर पर निकल जाना चाहिए। मुझे एक ही दिन में एक दूसरे के विरुद्ध दो कार्य करने का प्रसंग आया। जब प्राणों का भय केवल काल्पनिक प्रतीत होता था, तब मिस्टर लाटर ने मुझे प्रकट रूप से बाहर निकलने की राय दी एवं मैंने उसे मान लिया। जब संकट प्रत्यक्ष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, तब दूसरी सखा ने इससे उल्टी राय दी। मैंने उसे भी मान लिया। कौन कह सकता है कि मैं अपने प्राणों के संकट से डरा या सखा के जान माल की जोखिम से या अपने परिवार की प्राण हानि से या तीनों से। कौन निश्चय पूर्वक कह सकता है कि मेरा स्टीमर से हिम्मत दिखाकर उतरना एवं बाद में संकट के प्रत्यक्ष सामने आने पर छिपकर भाग निकलना उचित था। पर घटित घटनाओं के बारे में इस तरह की चर्चा ही व्यर्थ है। उनका उपयोग यही है कि जो हो चुका है उसे समझ ले एवं उससे जितना सीखने को मिले सीख ले। अमुक प्रसंग में अमुक मनुष्य क्या करेगा, यह निश्चय पूर्वक कहा ही न जा सकता। इसी तरह हम यह भी देख सकते हैं कि मनुष्य के बाहरी आचरण से उसके गुणों की जो परीक्षा की जाती है वह अधूरी एवं अनुमान मात्र होती है। सो कुछ भी हो, भागने के कार्य में उलझ जाने से मैं अपनी चोटों को भूल गया। मैंने भारतीय सिपाही की वर्दी पहनी। कभी सिर पर मार पड़े तो उससे बचने के लिए माथे पर पीतल की तस्तरी रखी एवं ऊपर से मद्रासी तर्ज का एक बड़ा साफा बांधा। साथ में खुफिया पुलिस के दो जवान थे। उनमें से एक ने भारतीय व्यापारी की वर्दी पहनी एवं अपना चेहरा भारतीय की तरह रंग लिया। दूसरे ने क्या पहना सो मैं भूल गया। हम बगल की गली से होकर पड़ोस की एक दुकान में पहुंचे एवं गोदाम में लगी हुई बोरों की थपियों को अंधेरे में लांघते हुए दुकान के दरवाजे से भीड़ में घुसकर आगे निकल गई। गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठाकर मुझे अब उसी थाने में ले गए जिसमें आश्रय लेने की राय सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने पहले ही दी थी। मैंने सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर को एवं खुफिया पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जब एक ओर से मुझे ये ले जाया जा रहा था, तब दूसरी ओर सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर भीड़ से गाना गवा रहे थे। उस गीत का अनुवाद यह है, चलो हम गांधी को फांसी पर लटका दें, चलो हम गांधी को फांसी पर लटका दें, इमली के उस पेड़ पर फांसी लटका दें। जब सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर को मेरे सही सलामत थाने पर पहुंचाने का समाचार मिला, तो उन्होंने भीड़ से कहा, आपका गांधी तो इस दुकान में से सही सलामत निकल भागा है। भीड़ में किसी को क्रोध आया, कोई हंसा, बहुतों ने इस बात को मानने से मना किया। इस पर सुपरिटेंडेंट एलेक्जेंडर ने कहा, तो आप लोग अपने में से जिसे नियुक्त कर लें उसे मैं अंदर ले जाऊं एवं तलाश करके देख लें। अगर आप गांधी को ढूंढ निकालें तो मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, न ढूंढ सके तो आपको बिखर जाना होगा। मुझे यह विश्वास तो है कि आप पारसी रुस्तम जी का मकान हर किच न जलाएंगे एवं न गांधी के औरत बच्चों को दुख पहुंचाएंगे। भीड़ ने प्रतिनिधि नियुक्त किए। उन्होंने तलाश के बाद

उसे निराशाजनक समाचार सुनाए। सब सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर की सूझबूझ एवं चतुराई की प्रशंसा करते हुए पर मन ही मन कुछ क्रोध होते हुए बिखर गए। उस समय के उपनिवेश मंत्री स्वर्गीय मिस्टर चेम्बरलेन ने तार द्वारा सूचित किया कि मुझ पर हमला करने वालों पर मुकदमा चलाया जाए एवं मुझे न्याय दिया जाए। मिस्टर एस्कम ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे पहुंची हुई चोट के लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, आप यह तो मानेंगे ही कि आपका बाल भी बाका हो तो मुझे उससे कभी खुशी न हो सकती। आपने मिस्टर लैटन की राय मानकर तुरंत उतर जाने का साहस किया। आपको ऐसा करने का हक था, पर आपने मेरे संदेश को मान लिया होता तो यह दुखद घटना नहीं घटती। अब अगर आप हमला करने वालों को पहचान सके तो मैं उन्हें गिरफ्तार करने एवं उन पर मुकदमा चलाने को तैयार हूँ। मिस्टर चेम्बरलेन भी यही चाहते हैं। मैंने उत्तर दिया, मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। संभव है हमला करने वालों में से एक दो को मैं पहचान लूं, पर उन्हें सजा दिलाने से मुझे क्या लाभ होगा। फिर मैं हमला करने वालों को दोषी भी नहीं मानता। उन्हें तो यह कहा गया है कि मैंने भारत में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहकर नेटाल के गुरु को बदनाम किया है। वे इस बात को मानकर क्रोधित हूँ, इसमें आश्चर्य क्या है। दोष तो बड़ों का एवं मुझे कहने की अनुमति दें तो आपका माना जाना चाहिए। आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकते थे। आपने भी राइटर के तार को ठीक माना एवं यह कल्पना कर ली कि मैंने अतिशोक्ति की होगी। मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। जब वस्तु स्थिति प्रकट होगी एवं लोगों को पता चलेगा तो स्वयं पछताएंगे। तो आप यह बात लिखकर मुझे दे देंगे। मिस्टर चेम्बरलेन को इस आशय का तार भेजना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि आप शीघ्र ही कुछ लिखकर दे दें। मेरी इच्छा यह है कि आप मिस्टर लाटन से एवं दूसरे दोस्तों से राय करके जो उचित जान पड़े सो करें। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यदि आप हमला करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाएंगे तो सब और शांति स्थापित करने में मुझे बहुत मदद मिलेगी एवं आपकी प्रतिष्ठा तो निश्चय ही बढ़ेगी। मैंने उत्तर दिया, इस विषय में मेरे विचार पक्के हो चुके हैं। यह निश्चय समझिए कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए मैं आपको यही लिखकर दे देना चाहता हूँ। मैंने यह कहकर आवश्यक पत्र लिखकर दे दिया।

गांधी जी की इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

भगवान शिव पार्वती को काकभुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काकभुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 107.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे कथा सागर के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमती कुसुम भट्ट की कहानी।

शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत का प्रसारण किया जाएगा। शाम 7 बजे किसान साथी कार्यक्रम कृषि जगत में सुनेंगे आम लीची के बागों की प्रमुख समस्या व समाधान। इस विषय पर डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से भेंट वार्ता।

फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुनिएगा रात्रि 10 बजे। सवेरे 7:10 पर सुनिएगा फिल्मी भजन। सवेरे 7:30 पर शेल संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए कड़वाली लोकगीत।

नमस्कार, देहरादून कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे सवेरे 9:00।

प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए का सवेरे 10:02 पर। सवेरे 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुड्डू राणा के गाए चौंसारी लोकगीत।

व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनेंगे 11 बजे, बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 12:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। सैनिक साथी सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, समय रहेगा दोपहर 2:30। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित ब्रज नारायण से सरोद वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग मुल्तानी।

0: तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 6:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीन सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथसिंहः अद्य आंध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केंद्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिम प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलम षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलम लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है।

बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला फिल्मी भजन सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है आजाद। संगीत सी रामचंद्रा का है और गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णा ने।

0: अभी आप फिल्मी वचन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 7:20 में लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट। पहले मुख्य समाचार। ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पशुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए।
1: राज्य सरकार में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा है कि ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्रों में जल्द से जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रूप से साइकिल का उपयोग कर आवागमन कर सकें। उन्होंने बताया कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने के लिए अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही लोगों से आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने का अनुरोध किया गया है।
3: एक दिन हम लोगों ने अनुरोध किया है कि किस तरह से अधिकारी और इवन आम लोग, जैसे एक नो व्हीकल्स डे हम लोग कोशिश करेंगे, उसके लिए जिलाधिकारियों को भी हमने कहा है, जिसमें कि लोग मतलब साइकिल से या अन्य वैकल्पिक साधन से वो ऑफिस जा सके या बाकी और कहीं जाना है, मार्केट में जाना है। इसके अलावा कार पूलिंग, मान लिया कि जैसे एक ही जगह से ऑफिस आना है और वहां पे 4-5 लोग हैं तो वहां मतलब ये व्यवस्था की जाए कि कार पूल करके वो आ सके। तीसरा एक और चीज है कि सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, टाइमिंग अगर फिक्स करके।
1: सरकार की पहल पर आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में देश ईंधन संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सभी नागरिकों के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय से जुड़े सभी पक्षों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित लोगों से कार्यालय आने जाने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने कल विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की मौके पर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जाँच भी कराई।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी जिले में संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना करते हुए विभिन्न उत्पादन इकाइयों में प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने कीवी की खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मालू के पत्तों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि यात्रा मार्गों पर ताजे पत्तों की प्लेटों में भोजन परोसने की व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अलावा प्लम के तेल के अधिक प्लांट स्थापित करने तथा इसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि लिंगड़ा क्षेत्र में पूरी तरह जैविक रूप में उपलब्ध है, जिसकी वैश्विक स्तर पर मांग है। साथ ही बुरांश के रस को बिना चीनी और पानी मिलाए तैयार कर उसकी बेहतर पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं में अधिकांश में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
5: सभी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी समीक्षा की, लगभग सभी योजनाओं में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और बेहतर इसको करें ताकि इसके जो परिणाम आए उससे जो लाभार्थी हैं, खासतौर पे जो अल्ट्रा पुअर हमारे निवासी हैं, उनको जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
1: पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि पुलिस राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए सतर्क, सक्रिय और प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़, सघन चेकिंग, व्यापक सत्यापन अभियान और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई आगे भी अधिक तीव्रता, प्रभावशीलता और दृढ़ता के साथ निरंतर जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 4,000 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत 18,000 से अधिक बार, पब, क्लब, स्पा, होटल और ढाबों की जांच की गई, जिनमें नियमों के उल्लंघन पर 1,200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा में साइबर ठगी रोकने के लिए 200 से अधिक फर्जी सोशल मीडिया लिंक ब्लॉक किए गए हैं और 50 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद कराए गए हैं। इसके साथ ही 147 लिंक ऑपरेटरों और 27 फर्जी मोबाइल फोन धारकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चंपावत जिले के गोरलचौड़ मैदान में आयोजित 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव 2026 में विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं के साथ ही व्यापारिक मेले की धूम मची हुई है। 7 मई से 16 मई तक आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से 200 से अधिक व्यापारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। दूर दराज से आए लोग मेले में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि झूले और चरखे बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में कल से सांस्कृतिक संध्या के तहत 3 दिवसीय स्टार नाइट्स कार्यक्रम का आयोजन भी शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश के प्रख्यात कलाकार संगीत, लोक संस्कृति और रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि महोत्सव के पहले चरण में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके बाद 7 मई से शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से महोत्सव में पहुंचने की अपील की है।
6: चंपावत नगर क्षेत्र में गुलजू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रथम चरण में मंदिर में मांगलिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में दिनांक 7 से 16 तक 10 दिवसीय व्यापारिक मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 14 से 16 तक हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं, जो स्थानीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनको उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक मंच पालिका द्वारा यहाँ उपलब्ध कराया गया, जिसमें शाम के समय में उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियाँ होंगी और उसके

0: रात्रि के समय में जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, जो उत्तराखंड के पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपने कार्यक्रमों की परफॉर्मेंस दी जाएगी।
1: और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है, प्रदेश में SIR 8 जून से होगा शुरू। प्रदेश में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम पर दैनिक जागरण लिखता है, CM ने 243 डॉक्टरों समेत 307 को दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर अमर उजाला की सुर्खी है, UCC के तहत प्रदेश में हलाला का पहला मामला दर्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पशुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए और प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यंग समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए विविध कलाकारों के गाए कड़वाली लोकगीत। कार्यक्रम का पहला कड़वाली गीत विमला भंडारी के स्वर में है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शैल संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाये कड़वाली लोकगीत। लीजिए इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए रोशन लाल का गाया ये कड़वाली लोकगीत।

राजा धाम दियो धाम धाम का नेत्र छुड़ो चा बह करनी रोण्यो चा खूब चलो ढूंगो सो धना

कि राजा धर्मजोज ने लड़ी सुनी गर्भवती वे गायो राजा जांदो कई वे सैला शिकारा कि सात सौत क्या काम करिंदनु राजा धर्मजोज को बोलो जो ये मोरा।

जनी राणी देखी राजा धाम दो घर बड़ो वे गए। राणी देखी राजा धाम दो ने फिर वापिस भावर जंगल पर चल गए। लगी राणी तय कोखी की बिदना सात सौ तो न या को

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: शैल संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए कड़वाली लोकगीत। लीजिए अब सुनिए सुरेंद्र सिंह का गाया कार्यक्रम का अगला और अंतिम गढ़वाली लोकगीत।

0: अभी आप विविध कलाकारों के गाए गढ़वाली लोकगीत शैल संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है।

0: 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गो में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस

नमस्कार, देहरादून के सभी श्रोताओं को संगीता सेमवाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर दिन अपनी विशेषताओं के साथ आता है और बात आज के दिन की करें तो आज का दिन घर परिवार को समर्पित है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम मना रहे हैं। श्रोताओं, परिवार एक ऐसा शब्द है जिसमें मानो पूरी दुनिया ही बसी हो। परिवार ही होता है जहाँ हर सुख दुख को मिलकर बांटा जा सकता है। परिवार के बिना, परिवार के सदस्यों के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। इसलिए परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे का साथ दें, वक्त दें। लेकिन श्रोताओं, अक्सर हम सोशल मीडिया पर रहते हैं आजकल, है ना, और वहाँ पर उस भीड़ में कितना टाइम कब निकल जाए कुछ पता नहीं लगता। लेकिन आप उससे थोड़ा ब्रेक लेंगे ना, तो एक तो आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ इससे बहुत अमेजिंग हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है जब हम बिल्कुल फोकस होकर किसी काम को करते हैं। और दूसरा, आप अपने परिवार को वक्त दे पाते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है। तो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार, अपने पूरे परिवार के साथ हमारा आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून सुनते रहिए।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों की सुर्खियां। तापमान रोधी मॉडल सिटी के रूप में विकसित होगा देहरादून। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के चिकित्सकों ने एक 49 वर्षीय महिला की दुर्लभ फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर की सफल सर्जरी की है। उत्तराखंड में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, एक जिला एक खेल नीति तय और जनगणना का 70% कार्य पूरा, 19 लाख करोड़ तक पहुंची टीम। और अब मौसम, देहरादून में आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये थी अखबारों की सुर्खियां। और अब बीजे सुनिए इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1 प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म वर्ष 1817 में आज ही के दिन हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा, जाति प्रथा और महिलाओं की गुलामी के विरुद्ध कई कारगर कदम उठाए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जिसे बाद में उनके पुत्र और प्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर को बंगाल की आवाज के रूप में भी याद किया जाता है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1993 में हुआ था। भारत में सिर्फ 2 ही ऐसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्हें सेना के हाईएस्ट रैंक यानी फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये 2 नाम हैं, फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। महान स्वतंत्रता क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी की सजा पाने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में हुआ था। वर्ष 2010 में ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वॉटसन नाव पर अकेले बिना रुके पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा नाविक बन गई। तब जेसिका की आयु 17 वर्ष से भी कम थी। तो श्रोताओं, ये तो थी इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने आपके साथ साझा की। और श्रोताओं, हम आपको बता दें आज जन्मदिन है उस अभिनेत्री का भी जिनकी मुस्कान में सादगी है और अदाओं में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती। जी हाँ, आज जन्मदिन है भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने का। हम आपको बता दें श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा सन 2008 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं माधुरी दीक्षित पर अभिनीत फिल्म दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हैं, और इसी सोच को हमने सदियों से जिया है, तभी हमारी भारत भूमि पर भारत माता के लिए अपना सर्वस्व, अपना प्राण न्योछावर करने वाले कई युवा भारत की इस पुण्य भूमि पर पैदा हुए हैं। और आज 15 मई को हम भारत के ऐसे ही लाल की जन्मतिथि और योगदान को नमन कर रहे हैं। महान भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी की सजा पाने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म आज के दिन वर्ष 1907 में हुआ था। सुखदेव थापर नेशनल कॉलेज में पढ़ाया करते थे और इसी कॉलेज में दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने नौजवान भारत सभा के नाम से एक संगठन बनाया था और भारत की आज़ादी के लिए अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने संघर्ष किया था। भारत माता के इस वीर सपूत को आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, संगीत दिल को तसल्ली देता है, सुकून देता है, हमें जोड़ता है रोमानियत से। जब हम कोई पसंदीदा गीत सुनते हैं तो अक्सर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आज दिल करता है उन गीतों को सुने जो मील के पत्थर हैं, है ना? आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

श्रोताओ, धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो सब कुछ है। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 107.5 MHz पर। सवेरे के 9 बजे लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्म संगीत।

काल करे सो आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ श्रोताओं, हर वो चीज़ जो आपकी उन्नति के लिए ज़रूरी है उसे टालिए मत,

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

श्रोताओ, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मन शांत हो जाए, दिल को सुकून मिले। नेचर के अगर हम क्लोज जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी जगह जहाँ पहाड़ हो, नदियाँ, खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे हो, तो देखिएगा आप जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना सुकून पाएंगे। बहुत अच्छा लगता है। और इन जगहों पर श्रोताओ, चाह कर भी ना कोई भी थॉट आता ही नहीं है, लगता है जैसे आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो श्रोताओ, बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डेस्टिनेशन को आप देखिए जहाँ आपका मन है, अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए। और अगर आप इस वक्त घर पर हैं और हमें सुन रहे हैं, तो प्रकृति के बेहद करीब हम भी आपको लिए चलते हैं इस गीत के साथ। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

चौरी चौरी फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए अनुभव कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव से संकल्प मिश्रा की बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव जी, जो कि 2010 बैच की उत्तराखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस हैं, और श्रीमती ईवा वर्तमान में निदेशक हैं जनगणना कार्य डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस में और नागरिक पंजीकरण डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन। आप उत्तराखंड के इस कार्यालय में ईवा जी निदेशक के पद पर हैं इस समय, और इनसे हम जानेंगे इनके जिंदगी के अनुभव, कार्य क्षेत्र में इनके अनुभव। इसी के साथ ईवा जी की पसंद का एक गाना भी हम आज शामिल करेंगे आपके लिए, और जानेंगे उनके अनुभव से, उनके कार्यक्षेत्र के, उनके जीवन के अनुभव से, उनके फलसफे से आपको क्या जानने को मिलता है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है ईवा जी।
1: धन्यवाद।
0: ईवा जी, हम इस समय आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, अभी अभी हमारी जनगणना पे बात हुई है। आपका एक लंबा सफर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, आज आप निदेशक के पद पर हैं। आप शुरुआत देखती हैं अपने बचपन में, अगर जाना चाहें तो आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आती है, सबसे ज्यादा रिकॉलिंग मोमेंट्स कौन से रहते हैं आप?
1: मुझे याद आता है, पता नहीं मैं कितनी बड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है मैं 5-6 साल की रही होंगी, और मैंने अपने पापा से ऐसे ही पूछा। वो कुछ उन्होंने बोला कि डीएम बहुत पावरफुल होता है, तो मैंने पूछा कि पापा डीएम क्या होता है, तो उन्होंने कहा आईएएस। उन्होंने नाम लिया, मुझे कुछ कुछ समझाया, मुझे बहुत याद नहीं उन्होंने क्या समझाया, बट कुछ हिट कर गया, जैसे डेस्टिनी होती है, और शायद उस समय ही मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। और ये मेरे पापा का मतलब एक्चुअली सपना था, तभी नेचुरली उन्होंने मुझे मेंशन किया था इस बात को, और वहां से ही मैं कहती थी, मैंने कभी नहीं कहा मैं कभी इंजीनियर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, मेरा सीधे होता था मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। और स्कूल से जब मैं निकली तो मैंने उसी के हिसाब से सब्जेक्ट्स लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं निकली, सेंट मेरिस कॉन्वेंट से मैंने 12th किया। फिर जनरली लोग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए देते हैं, लेकिन मेरा क्लियर था कि मुझे ये सब नहीं करना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाना है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई, और उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने एमए किया। और पूरे वक्त मैंने, मेरे दिमाग में लक्ष्य मेरा क्लियर था कि मुझे ये एग्जाम देना है। और फाइनली जब मैं एमए करके घर अपने आई, एमफिल मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी लाइन वो रिसर्च की नहीं है। तो मैं आई, तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे बस ये लगा कि इतने सालों से मैंने मतलब इतना क्लियर लक्ष्य रखा हुआ है, तो क्या मुझे सिर्फ आईएएस निकालना है या किसी ऐसे तरीके से निकालना है जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि हाँ, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाया कि मुझे अपने पापा को प्राउड बनाना है। और मैंने फिर मतलब मैं तो 18 घंटे पढ़ती थी, पता नहीं क्या करती थी, और मेरा ये पूरा टारगेट था कि पहली बार में मुझे निकालना है और मुझे टॉप करना है आईएएस में। तो फाइनली इतनी पढ़ाई की मैंने, इतनी पढ़ाई की, और मेरे पेरेंट्स भी एकदम डर गए। मेरी मम्मी ने तो खैर जॉब ही छोड़ दी थी हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। और मेरा पहले अटेम्प्ट में मैं 3रे रैंक पे थी पूरी लिस्ट में, वुमेन टॉपर में थी अपने बैच की। तो हाँ ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा उसको जितने बेटर, जितने अच्छे ढंग से मैं कर सकती थी, बेस्ट तरीके से कर सकती थी, वो मैंने किया। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी की एक तरीके से शुरुआत थी आईएएस में आने के बाद।
0: स्कूल लाइफ कैसी रही? स्कूल के दोस्तों से क्या अभी भी टच में रहती हैं? स्कूल कहाँ से हुआ आपका, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
1: स्कूलिंग मेरी इलाहाबाद से हुई, सेंट मेरिस कॉन्वेंट से। टच में तो थोड़ा बहुत रहती हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल मेरा नहीं है, वो थोड़ा मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं अपने से बहुत टच में नहीं रह पाती, कुछ कुछ लोगों से टच में रहती हूँ। और सेंट मेरिस कॉन्वेंट था, आईसीएससी मीडियम स्कूल था वो, वहां से मेरी पढ़ाई हुई थी।
0: आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और जेएनयू में फिर आपने एमए किया, दोनों ही विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। दोनों के माहौल में आपको अपने नजरिए से क्या फर्क दिखता है?
1: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में ही बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, तो वहां का सिलेबस भी उसी प्रकार से है कि तैयारी करने वाले बच्चों को हेल्प मिल जाए। जेएनयू में वहां पर मानते हैं कि हमें एकेडमिक लाइन में जाना है, तो वहां बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रहती है, आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बुक्स उतनी ही ढेर सारी पढ़नी है, मतलब एक

0: एक कन्फाइंड सिलेबस में हम जेएनयू के पढ़ाई को नहीं कन्फाइन कर सकते, असाइनमेंट्स बनाने हैं तो आप एक स्कॉलर बनने की वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि मेरा लक्ष्य था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, बट स्टिल मतलब जेएनयू में भी मैंने अपने चारों सेमेस्टर्स में टॉप किया था, तो वहां जब तक मैं पढ़ी मैंने मतलब वहां की पढ़ाई के साथ पूरी ईमानदारी निभाई। लेकिन मेरा लक्ष्य नहीं था कि जो जेएनयू का मतलब एम रहता है वहां पर स्कॉलर्स निकलने का, तो वो नहीं था। और मुझे था कि मैं फिर शिफ्ट होकर के ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विस में अपना करियर बनाऊं।
1: इवा जी, इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बिहार से भी और आसपास के प्रदेशों से लोग तैयारी करने जाते हैं। आज के समय में ग्रामीण पृष्ठभूमि के भी लोग बहुत सारे जाते हैं
0: जी।
1: और वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें, खासकर जेएनयू की बात करें, तो वहां पर पूरे देश से ही लोग आईएएस की तैयारी करने जाते हैं। अब हम बात करें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, तो दोनों जगह में आपको अपने अनुभव से क्या अंतर महसूस हुआ और कैसा वो समय था, आप अभी क्या रिकॉल कर पाते?
0: जैसा वही मैंने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस था, एक फिक्स्ड सिलेबस था कि आप यूपीएससी का सिलेबस देख सकते हो और ये बीए का सिलेबस है, दोनों बहुत कुछ मैच कर रहे हैं। तो लेकिन जेएनयू का अगर आप सिलेबस देखें तो वो बिल्कुल अलग था। उस जैसे मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ट्रेडिशनल ज्योग्राफी का जो सिलेबस होता है वो था, लेकिन जेएनयू के सिलेबस में वो ज्योग्राफी भी थी, उसमें इकोनॉमिक्स भी थी, उसमें बहुत कुछ था जिससे कि एक मल्टी डिसिप्लिन्ड अप्रोच एक कोई भी बच्चा सीख सके, उस प्रकार से था। तो और असाइनमेंट्स बनाना था हमें, कैसे हम रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, इसकी बहुत ज़्यादा हमें हमारी ग्राउंडिंग होती थी कि हमें रिसर्च आर्टिकल्स लिखना है। तो काफ़ी अंतर था दोनों के माहौल में, बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन हाँ, मतलब शिक्षा, नॉलेज तो नॉलेज है और वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो मुझे इक्वली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस उतना ही काम आया आईएएस की पढ़ाई में, और जो जेएनयू की पढ़ाई हुई वो भी इक्वली काम आया। वो मतलब वो एक बहुत ही राउंडेड अप आपको नॉलेज दे देता है, मतलब ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा मुझे मेरा बेस तैयार हो गया दोनों जगह से पढ़ करके।
1: हम बात करें प्रेशर की, तैयारी के दौरान बहुत से कैंडिडेट्स बहुत प्रेशर लेते हैं, आपने भी बहुत प्रेशर झेला होगा तैयारी के दौरान, आज आप उस प्रेशर से निकल करके बहुत दूर आ चुकी हैं। आज के समय में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या कैंडिडेट के लिए प्रेशर सही है, उसको मैनेज कैसे किया जाना चाहिए आपके अनुसार, और प्रेशर को लेना आप कितना जायज समझती हैं?
0: देखिए, प्रेशर लेना तो ज़रूरी है कहीं पर भी लाइफ में। अगर हम नहीं चाह रहे कि अगर वो मोटिवेशन ही नहीं है कि ये करना है तो नहीं होगा। और इतना अथाह सिलेबस रहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि नहीं प्रेशर नहीं लो, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो, ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती फिर एक साथ। लेकिन हाँ, अगर वो प्रेशर हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अगर वो प्रेशर हम इस प्रकार का ले रहे हैं कि फिर हमारी पढ़ाई बाधित हो जा रही है, इसका मतलब वो गलत प्रेशर ले रहे हैं। और अगर हम इस प्रकार का प्रेशर ले रहे हैं कि हम फिर दुगुना तिगुना पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले तो सोचना चाहिए कि हम वो जॉब करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर, क्योंकि ये भी एक जॉब है और ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल हम आराम से, एक बार आ गए तो आराम से, जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है, हम ये करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। कोई एकेडमिक लाइन में जाना चाह रहा है और वो चला आया यहाँ पर जिसमें उसको 50 तरीके से प्रेशर्स, फिर जॉब के फील्ड के पब्लिक कुछ कह रही है, सुनने हैं, सारी चीज़ें करनी है, और कोई बिल्कुल स्कॉलरली टाइप का है, उसको लिखने पढ़ने से मतलब है, तो वो नहीं झेल पाएगा इस चीज़ को। तो इसीलिए हमें पहले सोचना चाहिए कि हम, ठीक है, हम ये जॉब है, ऐसा नहीं है कि सब दे रहे हैं तो मुझे भी देना है, जॉब है, मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तब हम दे रहे हैं। लेकिन हम इतना प्रेशर ले रहे हैं कि हमारे हेल्थ पर असर पड़ रहा है, तो नहीं, वो बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ऑप्शंस हैं, एक चीज़ नहीं हो तो कई और तरीके हैं अपनी लाइफ को फुलफिल्ड लाइफ आप बिताने के, ऐसा एक ही ये जरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आज तो इतने साल की सर्विस के बाद मैं कह सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी नहीं हुआ तो फिर दुनिया ख़त्म हो गई या इस तरीके से कुछ है, बहुत कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई प्रेशर हमें नहीं लेना चाहिए जो हमारे हेल्थ को, मानसिक स्थिति को, अगर वो एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं, उसको फिर हमें रीथिंक करके फिर प्रेशर उतना ही लेना चाहिए जो हमें अच्छे से पढ़ने में हेल्प करे।
1: कॉलेज के दौरान आप विश्वविद्यालय की तो पढ़ाई कर ही रही थी, साथ में आप तैयारी भी कर रही होंगी, इसके इतर कुछ आपके शौक भी थे जिससे जब पढ़ाई से मन ऊब जाए तब आप दिमाग को थोड़ा हल्का रखने के लिए आप कुछ और भी शौक रखती थी?
0: शौक तो मेरे थे, लेकिन ऐसा मैं बहुत डेवलप तो नहीं कर पाई क्योंकि नेचुरली पढ़ाई का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको पढ़ना है और किसी और चीज में इतना ज्यादा फोकस है तो फिर आप किसी और चीज में फोकस नहीं रख सकते। जैसे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मैं अब सर्विस के 15 साल बाद फिर म्यूजिक सीख रही हूँ, तो उस समय मैं नहीं कर पाई है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उस समय कोई भी शौक था जो मैंने डेवलप किया। हाँ, कभी मुझे बैडमिंटन भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं जो मुझे रिलैक्स करती हैं।
1: तैयारी के दौरान परिवार का सपोर्ट आप कितना अहम मानती हैं, कितना बल मिलता है उससे?
0: बहुत ज़्यादा बल मिलता है। मेरे तो मेरी मदर एक गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्होंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि वो दूसरे शहर में था और उससे हमारी परवरिश में प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे फादर भी कम्प्लीटली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, मतलब उन्हीं की थिंकिंग, उन्हीं का विजन था जिसकी वजह से मैं जो भी बन पाई हूँ। और मेरे मदर का बलिदान है जो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, वो लेक्चरर इकोनॉमिक्स की कॉलेज में थी बिहार के, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए मेरे लिए तो कंप्लीट है, वही है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं उन्होंने प्रेरित किया, बल्कि जो मेरे पूरे जीवन में उनकी ही शिक्षा के बल पे मैं कुछ भी कर पाती हूँ, शिक्षा, मॉरल, एथिकल, एवरीथिंग, तो उन्हीं की कर पाती हूँ। तो परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं था कि तुम ये नहीं करोगी तो हम नाराज़ हो जाएंगे। मतलब पेरेंट्स को इस टाइप का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए बच्चों से कि वो बच्चे फिर मतलब खुशी ना रह पाए। तो सबसे अगर बच्चा मोटिवेटेड है जिस भी काम को करने में, मैं मोटिवेटेड थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये अच्छा है, मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे नहीं अच्छा लगता तभी भी अगर मेरे पेरेंट्स जोर देते तो वो गलत होता, या मैं कभी अपने बच्चों के साथ करूँ या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करें। लेकिन हाँ, बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स की भी कुछ जो आशाएं आकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बोथ वे प्रोसेस है, ना पेरेंट्स को इस टाइप का प्रेशर देना चाहिए कि वो बच्चे को खत्म ही करता जाए, और ना बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि हमें आप बहुत प्रेशर दे रहे हो, हम तो अब बात ही आपकी नहीं मानेंगे। ये दोनों ही चीजें गलत हैं बिल्कुल।
1: प्रिपरेशन के दौरान हमें कई बार प्रेशर को हैंडल करना होता है, टाइम को भी मैनेज करना सीखना होता है, और बहुत बड़े सिलेबस को कंसाइज करके आगे बढ़ना होता है। निश्चित ही आपने किया होगा, इन प्रक्रियाओं को पूरा किया होगा और उसके बाद एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा। तैयारी के दौरान कुछ ऐसी सीख जो आपकी सर्विस में आने के बाद आपको बहुत काम आई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: स्ट्रैटेजिक होना, देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की तो स्ट्रैटेजिक होना तो है ही, मतलब उसके बिना तो नहीं क्लियर किया जा सकता। इतना ज़्यादा सिलेबस है, किस चीज़ को ज़्यादा करना है, किस चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को बेस्ट कहाँ से कर सकते हैं, मतलब 10 बुक्स होंगी एक टॉपिक पर लेकिन किस बुक से कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स अगर स्ट्रैटेजिकली आप चीज़ें अपनी प्लान कर सकते हैं तो चाहे ये जॉब हो चाहे कोई भी जॉब हो, कल को वो काम आता है कि अपने काम को आप बेटर किस ढंग से कर सकते हो। मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ स्मार्ट प्लानिंग, तो वो स्मार्ट प्लानिंग तो हर जगह काम आती है।
1: इवा जी, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे मेहमानों की पसंद का एक गीत लेने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: मैं मतलब खुद भी म्यूजिक सीखती हूँ, लता मंगेशकर जी की मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे गाना बचपन से उनका बड़ा अच्छा लगता है, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, ये फिल्म खामोशी का गीत है।
1: फिल्म खामोशी से आज इवा जी की पसंद का ये गीत हमारे श्रोता भी सुनेंगे, तो ये गीत आज हम फिल्म खामोशी से अब सुनवा रहे हैं आपको।

0: इस गीत के बाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। आज हमारे साथ हैं श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव जी, जिनसे हम आज बातचीत कर रहे हैं उनके अनुभवों के बारे में। ईवा जी, कार्यक्रम के फर्स्ट हाफ में हमने बात की आपके निजी जीवन के अनुभवों के बारे में। अब जब आप सर्विस में आ गई, कैसा अनुभव रहा? आप बता रही हैं 15 साल आप सर्विस में आ चुकी हैं, 15 साल इस बात को हो गए हैं। अगर हम पूरी टाइमलाइन को देखें, आप अगर उसे रिकॉल कर पाएं, तो क्या हासिल रहा है 15 सालों में?
1: 15 सालों की मैं अपनी जर्नी को बहुत सेटिस्फैक्ट्री जर्नी मानती हूँ। और मुझे पर्सनल जो इंटरेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा नेचर में और कल्चर में इंटरेस्ट है। और ये काडर भी मेरा उत्तराखंड का ऐसा है जहाँ प्रचुर मात्रा में मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलाइन करता है जिस प्रकार से पोस्ट होती हैं। और मैंने जब डीएमशिप के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी जब हम बनते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं किसी पहाड़ी जनपद की बनूं, क्योंकि पहाड़ों में अगर उत्तराखंड को समझना है, उत्तराखंड के लिए रियल कोई काम करना है, तो वो पहाड़ों में ही करना है। अगर हम पहाड़ पे नहीं करेंगे तो फिर पलायन प्लेन की तरफ होगा, तो ना प्लेन संभलेगा ना पहाड़ संभलेंगे। तो इसलिए मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। मैंने अल्मोड़ा में और टिहरी में मैं डीएम रही हूँ और वहाँ बहुत क्लोजली देखा है, कल्चर को देखा है, यहाँ के लोगों का जुझारूपन देखा है। और मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है अगर मैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे कि बहुत हमारे स्टेट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है महिलाओं के लिए। यहाँ उत्तराखंड की महिलाएं बहुत जागरूक भी हैं और हमेशा से वो बहुत सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो और इसी चीज़ को एक तरीके से यूज़ किया गया है पॉलिसीज़ में इस प्रकार से कि उनके स्वयं सहायता समूह बने और जिस भी प्रकार से विकास कार्य हुए या पंचायती राज जब एक्ट है यहाँ पर जितना वुमेन रिजर्वेशन है उसमें, तो सब कुछ इसलिए गियर्ड अप था कि पहाड़ की महिलाएं बहुत सक्रिय भूमिका निभा पाएं। और वो बहुत निभा रही हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। छोटी छोटी डेयरी यूनिट, बेकरी यूनिट, मसाले यूनिट, और उनको अगर आप पैकेजिंग मशीन दे दो या फॉर एग्जांपल बेकरी है, आइसक्रीम भी बेच रही हैं, कोल्ड स्टोरेज दे दो, तो ये चीज़ उनके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। कि एक छोटे 10 महिलाएं हैं, एक छोटा सा कस्बा है बिल्कुल दूरस्थ पहाड़ में, अगर उनको 50,000 का भी हमने कुछ हेल्प कर दिया, उनको दे दिया अपनी जो निधि होती है जिलाधिकारी के पास, तो वो बहुत उनको हेल्प करता है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। दूसरी बात जो मैंने किया, टिहरी में भी किया, अल्मोड़ा में भी, कि अगर हम कुछ या तो स्कूल्स में कुछ चेंज करें, जैसे एक वहाँ अल्मोड़ा में रूपांतरण कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैंने भी अपनी भूमिका निभाई जिसमें स्कूल्स को हम बहुत अच्छा कर देते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और कुछ पढ़ाई के स्तर पे भी कुछ कार्य होता था, तो वो उस कार्य से भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और टिहरी में आकर के फिर मैंने एक वहाँ पर निधि बनाई थी कुछ, तो एक तो हमारी जो व्यक्तिगत निधि होती है जिलाधिकारी की और कुछ राइफल क्लब वगैरह से मिला करके, जिसमें जो भी बच्चे जैसे उनके पेरेंट्स नहीं है या फादर नहीं है या किसी भी वजह से किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हम उनको 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसे पर मंथ हम स्वीकृत करते थे। तो अभी मुझे जानकारी नहीं है कि वो स्कीम फिर चल पा रही है कि नहीं, क्योंकि उसमें फंड्स नेचुरली इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उस स्कीम से भी मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और तीसरा, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का अवार्ड भी मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस समय कोसी पुनर्जीवीकरण जब चल रहा था, तो उसमें भी ट्रीज लगाना और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस प्रकार के कार्य करना, तो ये सभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अपनी जितना हो सके मैंने अपने जितने भी पोस्ट रहे हैं फील्ड पोस्ट ये किया है, और आगे भी मेरा यही मन है कि जब भी मैं पोस्टेड रहूं तो मैं इसी प्रकार के विभागों में रहूं कि जहां मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या फिर पर्यावरण में कुछ अपना योगदान दे पाऊं।
0: बहुत से यंग ब्यूरोक्रेट आपको शायद सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और जब सर्विसेज में जाने की तैयारी करते हैं तो एथिक्स का एक पेपर है जहाँ पर कई बार लोग पढ़ते हैं कि जब आप सर्विसेज में आ जाते हैं यू गेट पावर टू एम्पावर। तो डीएम रहते हुए आपको कितना लगता है लोगों के लिए कितना ज़्यादा किया जा सकता है, और जो यंग ब्यूरोक्रेट अब आएंगे, जो भावी जिलाधिकारी बनेंगे, उन्हें आज के युग में जब इंटरनेट की एज आ गई, जहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ऐसे में सर्विस डिलीवरी को और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है?
1: सर्विस डिलीवरी पहले से मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आया है। सर्विसेज अब ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन मिल रही हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ा दायित्व है कि हम इसको मॉनिटर करते रहें कि जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है वो फंक्शन कर रहा है, लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जा रही हैं। इसके अलावा जब हम जिलाधिकारी रहते हैं, जन सुनवाई होती है, उत्तराखंड सरकार के डायरेक्शंस रहते हैं कि हम जनता दरबार भी लगाएं जाकर के लोगों के बीच में, और हर सोमवार को जनता दर्शन का भी कार्यक्रम रखें, तो उसमें फिर भी लोग आते हैं जिनके कुछ कुछ ना कुछ कुछ परेशानियां रहती हैं। तो एज जिलाधिकारी हमारा ये दायित्व है कि सभी की परेशानियां एक जगह पर हम इंडेक्सिंग उनकी करते जा रहे हैं और फिर टाइम टू टाइम रिव्यू ले रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं कंप्लेंट्स आ रहे हैं, प्रार्थनाएं आ रही हैं, उन पे जितनी भी हो सकती है उनका कितनों का निस्तारण हुआ और लोगों तक ये पहुंचा। तो ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि एक एक बार में 50 लोग 60 लोग जन सुनवाई में आते हैं, फिर हम जब जनता दर्शन भी लगाने जाते हैं, जनता दरबार लगाने दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में एक बात बता दूं, ये जनता दरबार में पढ़ रही थी एक बार, तो इंटरेस्टिंग था, गोलू देवता जी लगाते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उत्तराखंड ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट में ही अग्रणी नहीं रहा है, बल्कि अगर जिस समय जस्टिस और जनता दरबार ये सब बातें कहीं नहीं थी तो भी उस समय भी उत्तराखंड में थी। तो हमारा ये दायित्व इसलिए और भी ज्यादा है कि हम उनको बहुत अच्छे से इंडेक्सिंग हो और हम उनका निस्तारण स्टडी करें और लोगों से मिले। जब तो बहुत परेशानी में ही लोग आते, वरना किसी को ऐसा नहीं है कि वो अपना घर छोड़ करके आए, तो उसे कुछ नहीं तो बहुत अच्छे से कम बात करें। और बिल्कुल हमारा ऑनेस्ट, हर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती, कुछ हमारे लेवल के बाहर की होती हैं, कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन उन पर भी मतलब हमारा सिंसियर सारा एफर्ट होना चाहिए कि उनको हम संतुष्ट कर सकें जितना कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है।
0: एक जिलाधिकारी जिले का सबसे व्यस्ततम अधिकारी होता है, उसको सारे जिले के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, सीएम के साथ लगातार टच में रहना पड़ता है उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में, और जनता दरबार की बात आपने कही, थोड़ा बताइए जनता दरबार का कॉन्सेप्ट क्या है। और कई हमारे श्रोता हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं जिनको नहीं पता कि डीएम तक सीधे भी पहुंच बनाई जा सकती है, कई बार बहुत निराश होकर के छोटे अधिकारियों से चले जाते हैं, क्या वो सीधे डीएम तक पहुंच बना सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, उत्तराखंड शासन निर्देशानुसार हर मंडे को डीएम्स को एक जनता दरबार अपने ही ऑफिस में आयोजित करना रहता है और वो सुबह 10:30 बजे से वो जनता दरबार में खुद डीएम मौजूद रहते हैं। अगर डीएम को किसी वजह से, ऐसे तो जो जनरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि डीएम्स को उस समय ना मीटिंग पे बुलाया जाए, ना वीसी में बुलाया जाए, ना उनको कहीं अपना टूर कुछ करना है, तो डीएम्स 90% ऑफ द टाइम्स उस समय जनता दरबार में मौजूद रहते हैं और डीएम्स के जो आया उस समय कलेक्ट्रेट उसको वहां पर सुनवाई जरूर प्राप्त होती है, डीएम्स उनको सुनते हैं और फिर उनकी जो भी उनकी प्रार्थना पत्र आए वो डायराइज होती है, मतलब नोट होता है उसका क्या था, कहां भेजा गया और फिर उसका निस्तारण क्या हुआ, ये टाइम टू टाइम्स डीएम्स समीक्षा करते हैं और इसकी रिपोर्ट फिर शासन भेजते हैं कि जनता दरबार में इतनी रिपोर्ट्स आई। उसके अलावा तहसीलों का रोस्टर बनता है जिसमें हर तहसील का नंबर आता है, एक महीने में ये तहसील, फिर दूसरे महीने में इस तहसील, तो उसमें भी डीएम जाते हैं। अगर डीएम किसी वजह से नहीं जा पाए तो कम से कम सीडीओ या एडीएम जाते हैं, मतलब उच्च स्तर से ही जाते हैं, और फिर तहसीलों में भी लोग आते हैं और अपनी कंप्लेंट्स जो भी उनकी रहती है वो वहां पर देते हैं, ये भी डायराइज होते हैं और कहाँ फिर इनको किस विभाग में भेजा गया, तो इस प्रकार से। और फिर बीच बीच में हमें ये भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे रात्रि चौपाल लगाना कि किसी गांव में जाके हमने रात्रि विश्राम किया, या फिर बीच में ही किसी भी गांव को चुन करके जो दूरस्थ गांव है वहां जाकर के कैंप किया, मतलब सरकार जनता के द्वार वाला जो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया गोलू देवता जी का, कई 100 साल पहले से यहाँ पर उत्तराखंड में वो शुरू किया हुआ है, तो वो भी काम करते हैं। तो ऐसे बहुत से विभिन्न मौके होते हैं जिसमें वो डीएम्स के पास जाकर के अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया वो गायब हो जाएगा, वो प्रॉपर नोट होता है कहाँ कहाँ जा रहा है, वो ट्रैक भी होता है।
0: और अंत में इवा जी आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत से युवा अधिकारी आपको सुन रहे होंगे, बहुत सा ऐसा समय आया होगा जब आपको काम बहुत अधिक होने के साथ समय पर काम को पूरा करने का बहुत प्रेशर रहा होगा, उस प्रेशर को आपने अपने काम के साथ कैसे मैनेज किया,

0: और आगे जो हमारे युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, जो युवा अधिकारी बन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी और आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: देखिए सबको, मतलब ऐसे तो मैं बताऊं कि मैं प्रेशर कैसे मैनेज करती हूँ, तो पिछले करीब 17-18 साल से, इवन सर्विस में आने से पहले से मैं मेडिटेशन करती हूँ, विपश्यना मेडिटेशन। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, ये एक प्राचीन काल में भगवान बुद्ध द्वारा खोजी गई टेक्निक है और ये माइंड को बैलेंस करने के लिए ही है। तो हमें कहीं पर भी, चाहे हम तैयारी कर रहे हों, हम जॉब कर रहे हों, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हों, हमारे सबसे जो बड़ा मित्र हमारा हो सकता है वो हमारे ही माइंड का बैलेंस है। अगर वो नहीं है तो कुछ ना कुछ हम गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, उसके गलत इफेक्ट्स आएंगे। बैलेंस्ड माइंड से अगर हम कुछ करेंगे तो बिगड़ती हुई स्थिति भी संभलने की तरफ जाने लग जाती है। तो अपने, तो मैंने अपने जीवन में, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत वही है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, विपश्यना मेडिटेशन करती हूँ, और उसी से मुझे ये शक्ति मिलती है कि मैं आगे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा प्लान कर सकूँ, कुछ अच्छा सोच सकूँ। और साथ ही मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि बहुत, आज के युग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, इस प्रकार से करना बहुत अच्छा है, अच्छा वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम भी ये काम करें। लेकिन मुझे, मेरे जो व्यक्तिगत थिंकिंग है वो ये है कि कभी भी गलत रास्तों से चलते हुए हम सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। और जो जो भी चीज़ें हमें किसी प्रकार से भी मेंटली वीक बनाती हैं, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो एडिक्शन स्क्रीन का हो, चाहे किसी पदार्थ का एडिक्शन हो, तो वो कभी हमें सही जगह पर ला ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं जा करके वो विनाश के ही रास्ते पे ले जाता है। तो इन सब चीज़ों से, व्यसनों से, चाहे वो स्क्रीन का हो, चाहे किसी पदार्थ का हो, दूर रहना चाहिए। और तभी हम अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं, और एक हेल्दी माइंड ही हेल्दी बॉडी बनाएगा और हमें, हमारा आगे का रास्ता हमें पथ प्रदर्शन करेगा।
0: इवा जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आईं और आपने अपने अनुभव तो साझा किए ही, लेकिन ये अनुभव निश्चित ही बहुत से लोगों के लिए सीख बनेगा। आज के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव से संकल्प मिश्रा की बातचीत। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे कथा सागर के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमती कुसुम भट्ट से कहानी। शाम 7 बजे किसान साथी कार्यक्रम कृषि जगत में सुनेंगे आम लीची के बागों की प्रमुख समस्या व समाधान। इस विषय पर डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से भेंट वार्ता।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 10 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप आशा भट्ट से सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में जल्द 10 से 15 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय परिसर में आज नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने टिहरी में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला प्रशिक्षण, कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन और पशुपालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप निबंधक विकास नगर के निलंबन व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की। चंपावत जिले के गौरलचोड़ मैदान में आयोजित 10 दिवसीय गोलजी महोत्सव में विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं के साथ ही व्यापारिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अधिकांश बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और जानने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। ये हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया। हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है

में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता, इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना। आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और उसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं। इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो ये बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखे। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में किए गए अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है। जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है, कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण है। आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग अल्कोहल जितना खतरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। With this very useful and thought-provoking information about social media addiction, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

हेमलता और जसपाल सिंह के स्वरों में अभी आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। संगीत और शब्द रचना रविंद्र जैन की थी। और आप लीजिए सुनिए यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर का ये गीत। संगीत और शब्द रचना रविंद्र जैन की है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए अब सुनिए प्रोफेसर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले के आवाजों में। संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: आयुष्मान खुराना के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 10:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशा भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसी योजना में शामिल मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए। राजधानी देहरादून के डोईवाला में आयोजित

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए लगातार महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर युवा रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: काफ़ी लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनको आज सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत 25-26 में 18 कैंप लगाए गए और अच्छी योजना के तहत और इतना है कि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी नज़र है इस पर कि किस तरह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से सफल हो और ये कार्यक्रम सफल भी हो रहा है। मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा।
0: पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा है कि पुलिस राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए सतर्क, सक्रिय और प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन प्रहार की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़, सघन चेकिंग, व्यापक सत्यापन अभियान और संगठित अपराध पर कठोर कार्यवाही आगे भी अधिक तीव्रता, प्रभावशीलता और दृढ़ता के साथ निरंतर जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक 4,000 से अधिक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अभियान में 18,000 से अधिक बार, पब, क्लब, स्पा, होटल और ढाबों की जांच की गई, जिनमें नियमों के उल्लंघन पर 1,200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री की मितव्ययिता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने की अपील का पालन करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आगामी आदेशों तक अधिकांश बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय स्वयं पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ईंधन बचत अभियान को जन सहभागिता के रूप में अपनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के विकासखंड विकासनगर के ग्राम सोरना डोभरी की रहने वाली महिला उद्यमी कल्पना बिष्ट आज ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बनकर उभरी हैं। राज्य सरकार की ग्रामोत्थान परियोजना और स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से उन्होंने स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट स्थापित कर न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अवसर भी प्रदान किया। वर्ष 2024-25 में स्थापित बेकरी में मंडवे के बिस्कुट, गुड़ मक्खन बिस्कुट, हनी ओट्स बिस्कुट, मिल्क रस और गोलगप्पे जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की खासियत स्थानीय स्वाद, पौष्टिकता और पारंपरिक विधि है। पौड़ी गढ़वाल स्थित गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। छात्रों ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा घोषित ई युवा फेलोशिप की तीसरी राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया में स्थान हासिल किया। संस्थान के निदेशक डॉ वी के बंगा ने बताया कि छात्रों के इंडोर वायु शुद्धिकरण के लिए पिरुल आधारित बायोचार एयर फिल्टर का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। चयनित छात्र को 2500 प्रतिमा फेलोशिप और परियोजना के लिए 2.5 लाख वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे छात्र अपने नवाचार को उद्यमिता एवं उत्पाद विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण पर ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से नगर निगम हरिद्वार में शिकायत प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों के प्रकरण, कुत्ते के काटने अथवा रेबीज की शिकायत प्राप्त होने पर निगम द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही समुदाय में आवारा कुत्तों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मानवीय व्यवहार अपनाने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गुड्डू राणा के गाए चोनसारी लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड्डू राणा के गाए चौंसरी लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 13 तून केंद्र से।

0: अभी आप गुड्डूराणा के गाए चुनसरी लोकगीत लोक संगीत के अंतर्गत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 107.5 MHz पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत, अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। आप सभी श्रोता हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ आइए शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश की। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ नीलम ममगाई। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना पसंदीदा गीत सुनने के लिए आपको हमें करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिखना है अपना नाम और पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7088007031। तो इस नंबर पर झटपट से भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत, गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम और पता लिखकर।

और पहली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की, टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा। आपने ये मैसेज किया है ग्राम शिरडे जिला सांगली से। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं सोनाली, सुरेश नारंग, आशु नारंग, शेख अल्लाह बख्श, अरविंद कुमार, संदीप मक्कड़, वली भाई, कुशवाहा रेशमा, राज एस डी कुशवाहा, सहारनपुर चंदननगर से आपने ये मैसेज किया है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी हैं नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष, विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास। ये अगला मैसेज आया है राजनगर कांति निकेतन कुशेश्वर कांति गुप्ता का, साथ में हैं दादा ठाकुर, फूलों मैडम रुद्र गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी। ये अगली फरमाइश आई है उत्तम नगर दिल्ली से। लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। शामिल कर रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा को दतरेंगी से। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, पाकुड़ झारखंड से आपने ये मैसेज किया है। बोहड़ा गाछी पश्चिमी बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये अगले श्रोता मैसेज कर रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, आपके नाम है धर्मेंद्र शिम्पा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलौड़ पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा। ये अगली फरमाइश शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान की, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, आपके नाम है नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर ने ये फरमाइश हम तक पहुंचाई है। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। तीन देवियां फिल्म से आवाज़ है किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से, हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी करवे। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से, हैं दीपक कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष और कल्पना कुरहाड़े। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनी रुनीसा को। ये अगली फरमाइश आई है सब्जी मंडी बुलढाना से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सर हुसैन। शामिल कर रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा को। ये अगली फरमाइश लिखी है मोहम्मद ख्वाजा रिजवानुद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया ने। ये अगली फरमाइश भेजी है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमसुल कमर राही ने गंज टुंडवारा से। शामिल कर रहे हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सनी, जैमिन भावसार को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठड़ से। आपके नाम है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से आप हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम जसवादी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, हैं दुर्गेश नागिनपुरे और वंदना नागिनपुरे। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है कृष्णा कॉलोनी हांसी से।

आप हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह को, और ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं गम्हरिया जमशेदपुर से, आप हैं रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से आप हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से आप हैं मुराहू और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर और सुमन जायसवाल, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत, कमल साहनी ने ये मैसेज किया है, पिंगा वाला चौक गौरिया जालंधर से, राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज, बीजना मुरादाबाद से, इसको लिखा है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान ने। दौलत बाग मुरादाबाद से आप हैं अंसार हुसैन और समीर मलिक। शामिल कर रहे हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता को। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी, दीपाली और युवान, साथ में हैं आर के राजा। धामण गांव महाराष्ट्र से आप हैं भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी, समर्थ दाता दादा और सानिका देठे पाटिल। कच्छ गुजरात से ये अगला मैसेज आया है, लिखने वाले श्रोता हैं गंगा वड़कर, गोविंद, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट, रमेश, महेश और जयंती। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, आंधी फिल्म से युगल स्वर, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है, आपकी फरमाइशों का, व्हाट्सएप फरमाइश का, और शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश। यह फरमाइश लिखी है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी नाना जी, छिंदवाड़ा से आप हैं बेरडी नाना जी, लाम से मीना, लाम से तेजस, जय लाम से और हर्षिता लाम से। ये अगली फरमाइश भेजी है करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरमगुड़िया और शोएब खान ने, सिंधोली मीरगंज बरेली से आप हैं जीशान वारसी। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राही नगर गंज डुंडवारा से हैं शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान आबाद खान, तबिश खान और शमसुल कमर राही। ये अगली फरमाइश लिखने वाले श्रोता हैं आप हैं किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, साईंराज सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीड शहर से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेंद्र जी। ये अगले श्रोता अपरकोट मोहल्ला चौकनटी बुलंदशहर से ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार। ये अगली फरमाइश लिखने वाले श्रोता हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, फूलो मैडम, आपका मैसेज हम शामिल कर चुके हैं श्रोताओं। यदि आपके नाम कार्यक्रम में शामिल हो जाएं तो आपसे गुजारिश कि दोबारा मैसेज ना करें। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं

कस्बा गन्नौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। ये अगला मैसेज भेज रहे हैं आप हैं गजानन नादरे मारोत राव पांचाल गिरगांव महाराष्ट्र से। आपने ये फरमाइश लिखी है, शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, जलगांव जंक्शन से ये इन्होंने ये मैसेज किया है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान को गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, आप जुड़े हुए हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना रानी, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कपास हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, स्टेशन रोड जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आप हैं, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली साथ में है नगमा नाज मंसूरी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खां रायपुर से आपने ये मैसेज किया है। ये अगली फरमाइश वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई है। लिखने वाले श्रोता हैं विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्वनी माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान शामिल कर रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋत्विक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार को श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से, कोयते बस्ती पुनावली से आप हैं अजय सोनवणे, करिश्मा, अविका, सायशा। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। आपने ये मैसेज किया है लदावली जिला मुरादाबाद से। अगले श्रोताओं का ये संदेश पहुंचा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से आप हैं बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा भी खत्री और उनके बहुत सारे साथी। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रोहिताज चौक पंढरपुर सिटी से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे और कृष्णा घोटके। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार, रिमी और तनुश्री। पिहरा बाजार झुमरी तलैया से आप हैं अभय कुमार, शिवानी, प्रियंका, रिया, जिया, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश और इनके बहुत सारे साथी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम कन्यादान।
1: उनकी जुल्फें उन

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. शामिल करते हैं श्रोताओं ये अगला मैसेज जिसको लिखा है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने पोटिया कला दुर्ग से. ये अगली फरमाइश रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश और प्रीतेश साथ में पूरा संघई परिवार हम तक पहुंचा रहा है. जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से. अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं तेलंगाना भोंगिर से. आप हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समयरा और आजमीन गुड़िया. कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं बालकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र और मनहरन वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आपने ये मैसेज किया है. मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ाना, जिला खरगोन, सनावत, मध्य प्रदेश से ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं. आपके साथ हैं सुदामा नगर, खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप. कलानौर से ये अगला मैसेज आया है. लिखने वाले श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा. शामिल कर रहे हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा को. ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, धाड़ी नांदुरा, महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज किया है. अगले श्रोताओं का ये मैसेज हरियाणा से गांव सातड़ी से आपने ये मैसेज किया है. आप हैं ईश्वर दयाल काम्बोज, लाजवंती काम्बोज, भव्य काम्बोज, अमित कुमार, पुनीत और मेघिल काम्बोज. शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में आर्यनगर कोहका भिलाई से इन सभी श्रोताओं को आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल. डुमराव बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी. बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू. गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य. इनके बहुत सारे साथी हम तक

ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। गांव कैरों जिला तरन तारण पंजाब से आप हैं गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनका पोतरा गुरु शबद। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्योहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादर चौधरी। गांव जाखौद राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। मुताला महाराष्ट्र से ये अगला मैसेज है, लिखने वाले श्रोताओं के नाम है विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशन वंजैनी, नीलम, स्वाति और किशु। शाहदरा दिल्ली से यह मैसेज किया है रुपेश शर्मा, निशु, किशु और छोटी गुड़िया टुकटुक ने। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम पगला कहीं का और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

और श्रोताओं, अब आप एक जरूरी सूचना सुनिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रोताओं के लिए है। जी हाँ, कार्यक्रमों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या फिर आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र लिखा मिला में, पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन कोड है 248001। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी पत्र भेज सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर तो याद है ही, जी हाँ, जिस पर आप अपने पसंद के गीत सुन रहे हैं। जी हाँ, यही नंबर है। नंबर है 7088000731। सूचना समाप्त हुई।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश का और समय हो गया है 11:42:59 यानी 11:43। शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश है गाड़के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रोयांश और समस्त लोखंडे परिवार की। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। आप हैं गांव ध्यांगला जिला कुरुक्षेत्र से हैं मांगे राम सैनी, नेवी सैनी, डिंपल सैनी, देवांश सैमी, यामी सैमी और सैनी और कनिका सैनी। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर महाराष्ट्र से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं एमडी जाहिद, एमडी शाहिद अली, एमडी सबिर परवाना और एमडी साजिद अली। मधुबनी बिहार से आपने ये मैसेज लिखा है। मजनू का टीला से आप हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने। यह अगली फरमाइश दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम शाक्य की अलीगंज जिला एटा यूपी से। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से आप हैं पांडु चंदन, उषा रानी चंदन, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडु रंग कुमार। ये अगले श्रोता हैं गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान ने। विजय सुरलकर रतनमाला गौरी आपका मैसेज तो हम शामिल कर चुके हैं श्रोताओं। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई ने। चंडीगढ़ सिटी से आप हैं शेफाली, शेफी डेविस, विमला और सतीश अनेचा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से आप हैं खुदा बख्श खलीफा, रेडियो का दीवाना। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव ने।

ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल जगदीश जौहरी और इनका समस्त परिवार गुजरात गांधीग्राम से आपने ये मैसेज किया है। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से, आप हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन अभिजोत। ये अगली फरमाइश रियाकत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिवाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की जसपुर उत्तराखंड से। शामिल कर रहे हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक अनुश्री, शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म का नाम सिर्फ तुम।

इसी गीत को सुनना चाहा था। तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण ने। अगले गीत की फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। शामिल कर रहे हैं सब संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया को गांव चौहलदा बागपत से। ये अगले श्रोताओं का संदेश पहुंचा है बुलढाणा महाराष्ट्र से, आप हैं वासुदेव बोदवड़े, अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आई है। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने इसको हम तक पहुंचाया है। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, आप हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश लिखी है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज किया है। मलकापुर से हमारे साथ जुड़े हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। ये अगली फरमाइश सदर बाजार कुरावली से आई है। लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। शामिल कर रहे हैं सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत, लियाकत रजाई वाले, राजेंद्र सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, गणेश भारद्वाज बिजलवाण को बालावाला देहरादून से। ये अगली फरमाइश पटियाली रोड गंज डुंडवारा यूपी से है। लिखने वाले श्रोता हैं एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा और हबीबा। रमा रावत इस कार्यक्रम को सुन रही हैं पौड़ी गढ़वाल से, और ये अगली फरमाइश सादुल शहर राजस्थान से आई है। लिखने वाले श्रोता हैं आप हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। कृष्णा पार्क दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से आप हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, बिट्टू खेड़ा, विशाल लाडी, तिवांशी, शालनी वाणी और जीवन सिंह बुक्को। अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चतन्या मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, केशव रिधान खुराना। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है आबाद अहमद, मोहम्मद आसिफ, शमा आजमी, मोहम्मद राशिद, युसरा हयात मोहल्ला, सहारनपुर से आपने ये मैसेज किया है। अगले श्रोताओं के नाम हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। आपने मैसेज किया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये अगले श्रोताओं का मैसेज हम शामिल कर रहे हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से, आप हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी और उनके बहुत सारे साथी। तो आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में, फिल्म का नाम साजन।

व्हाइट फील्ड बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।

इसी गीत को सुनना चाहा था ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा ने बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सरस्तारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन के बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मोहल्ला हलवाइयाँ शेरकोट जिला बिजनौर से, और ये संदेश जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो का।

0: लिख दूं दिल का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan

0: May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
1: Education mafiaon ke sadyantar se sahi chhatra ki adhikar vanchit ho jaye.
2: The education minister admitted that NTA requires definite reforms and said that steps will be taken to strengthen the examination system to prevent future irregularities. Earlier, a high-level meeting was held last night at the residence of the education minister to review preparations for reconducting the exam. The meeting was attended by senior officials including the Secretary of Higher Education, Secretary of School Education, Director General of the National Testing Agency, NTA, Chairperson of CBSE and Commissioners of Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti. Indraprasth Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas CNG by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79 rupees 9 paise and 87 rupees 70 paise in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 84 rupees 12 paise. Earlier, oil companies raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each. Amid spike in global energy prices, the petrol price has risen from 94 rupees 77 paise to 97 rupees 77 paise per litre, while diesel prices have increased from 87 rupees 67 paise to 90 rupees 67 paise per litre in New Delhi. Similar hike in oil prices was seen in other metro cities, including Mumbai, Kolkata and Chennai. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, in New Delhi. In a social media post, Mr. Jaishankar said both leaders discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Araghchi's participation in the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026. The Delhi Metro Rail Corporation DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. Benchmark domestic equity indices were trading marginally up in the forenoon session today. The Sensex rose 82 points to 75,481, while the Nifty added 29 points to 23,719 when reports last came in. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And with that, we end this news bulletin.
3: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप आशा भट्ट से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों से तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य 70% तक पूरा हुआ। जनगणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा संग्रहित कर 86 लाख की आबादी को कवर किया। चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू, बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे उपस्थित। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बागेश्वर जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 12 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई जारी, 1400 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नैनीताल बैंक की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के तहत स्वास्थ्य विभाग को एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई। वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्वकप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज

0: लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:12 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए विविध कलाकारों के गाए शब्द।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का। आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए शब्द। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला शब्द।

अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी सहेली बीना रावत। और बहनों, आज के कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे हम काव्य पाठ, होंगे कुछ संदेश, होगा मनोरंजन और साथ में होंगी आपकी और हमारी बातें। तो कैसी हैं आप बहनों? भाई देखिए, गर्मियों का सीजन आ ही गया है, बल्कि गर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। और इस गर्मी के मौसम में अपने साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखिए। और हाँ बहनों, परिवार से याद आया कि हमारे जीवन में परिवार का कितना बड़ा महत्व है, ये बात हमें कोविड-19 ने अच्छे से एहसास करा दिया है। जब बहनों इस महामारी

महामारी ने अपनों को खोने का डर पैदा कर दिया था पूरे समाज और मानव जाति में। जब एक और लोग घातक संक्रामक बीमारी के साए में जी रहे थे, तो भाई चाहे रिश्ता हुआ खून का रहा हो या मानवता का। बहनों, हम इस भौतिकवादी दुनिया में कितना भी खो जाएं और धन के चकाचौंध में हम सोचें कि सब कुछ की भरपाई धन या हमारी सुविधा संपन्न से हो जाए, तो ये बहनों निखालिस हमारा भ्रम है। क्योंकि बहनों, अपने दुख सुख को साझा करने, अपनी मन की बात बताने या अन्य कितनी भी प्रकार के हमें सहारा के लिए इंसान की जरूरत तो पड़ती ही है। और बहनों, भले ही हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार की कल्पना सिमटती गई और हमारे माँ बाप, हम और हमारे बच्चे तक सीमित रह गए थे। फिर बहनों, माँ बाप कहीं और, हम और हमारे बच्चे। और अब तो बहनों, आर्थिकी के कारण केवल मैं तक ही हम सीमित रह गए हैं। और बहनों, अगर देखा जाए तो आज के युग में एक मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि हर बच्चा अपनी सर्विस के दौरान, अपनी आर्थिकी के दौरान कहीं ना कहीं वो प्रत्येक रिश्ते से अलग होकर के दूसरी जगह में है। किंतु बहनों, यदि हम परिवार में दो चार व्यक्ति भी हैं और किसी भी कारणवश हम दूर हैं, तो मोबाइल के जरिए हम दुनिया की खबर रखने से बेहतर तो यही है ना कि हम सीमित परिवार के सदस्यों से फोन कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स के जरिए हम कम से कम जुड़े तो रहें कि हम उनके माध्यम से अपना दुख सुख साझा कर सकें और एक दूसरे को भावनात्मक मजबूती का एहसास हम कराते रहें। और बहनों, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज 15 मई को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। तो बहनों, हमें जितना भी समय मिले हम अपने परिवार के साथ गुजारें, उनके साथ अपना दुख सुख साझा करें। तो आइए इस अवसर पर हम परिवार के साथ स्वास्थ्यपूर्ण समय बिताएं, उन्हें प्रेम और सम्मान दें और मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त और संस्कारित समाज का निर्माण में हम योगदान करें।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत और साथ में संदेश। और बहनों, अब हम कार्यक्रम में पहुंचा रहे हैं ये काव्य पाठ। कवित्री हैं श्रीमती कल्पना बहुगुणा।
3: मेरी कविता का शीर्षक है भ्रम। जैसे कि सभी कुछ न कुछ भ्रम पाले रहते हैं, मैंने भी एक भ्रम पाला है, सुनिएगा। लगाया था एक पौधा आंगन के एक बड़े गमले में, नाम था मनी प्लांट। लगाया था एक पौधा आंगन के एक बड़े गमले में, नाम था मनी प्लांट। रोज सींचती, रोज देखती लगाए उस पौधे को, रोज सींचती, रोज देखती लगाए उस पौधे को, उस पर जब एक कोंपल फूटती मन प्रसन्न होता, पत्ते आते तो मन झूम उठता। हर्ष इसलिए कि एक पत्ता आएगा तो पैसा भी आएगा, हर्ष इसलिए कि एक पत्ता आएगा तो पैसा भी आएगा। उसमें ढेर सारे पत्ते आ गए पर नहीं आए पैसे। फिर पूछा माली से ये कैसा मनी प्लांट, तो माली बोला जड़ें बहुत फैल गई, आपस में उलझ गई एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में। जड़ें इसकी बहुत फैल गई, आपस में उलझ गई एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में। सब बेतहाशा आगे बढ़ने की सोच में, अपना अस्तित्व खो बैठे पैसे के लालच में। आपने भी अनाधुन पानी डाला, आखिर जिसकी जितनी जरूरत होती उतना ही काफ़ी होता है। आपने भी अनाधुन पानी डाला, आखिर जिसकी जितनी जरूरत होती उतना ही काफ़ी होता है। अब इस गमले को पलटना होगा, जड़ों को छांटना होगा, नए सिरे से खाद देनी होगी स्वस्थ रूपी विचारों की। अब इस गमले को पलटना होगा, जड़ों को छांटना होगा, नए सिरे से खाद देनी होगी स्वस्थ रूपी विचारों की। निस्वार्थ भाव से सींचना होगा, प्लांट तो असली है लेकिन इसको बोने वाला नकली हो गया, अच्छे बुरे की पहचान खो गया, अच्छे बुरे की पहचान खो गया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चित्रकार मन से। धुंधले चित्रों में रंग भरे, धुंधले चित्रों में रंग भरे, रस की अभिव्यक्ति बाकी है अभी। कुंठित भाव जीवन के स्वच्छ भाव लाने बाकी हैं अभी। रेखाओं से आकार होते नहीं पूरे, रंग से प्राण भरने बाकी हैं अभी। प्रदर्शित हो जन रंग चित्र, धरती चित्र बनाने बाकी हैं अभी। सरसहीन निर्जीव उमंग अरूप है, सजीवता लानी बाकी है भी। अगली कविता एक परत सी। हर चेहरा पहचान नहीं बनता, कई काले दाग होते हैं उसकी पहचान को छिपाने में। भले ही साफ दिखाई न दे, कभी ना कभी उभर आते हैं। हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते, हर विश्वास से बात नहीं कर सकते, हर बात पर विश्वास नहीं कर सकते, हर विश्वास से बात नहीं कर सकते। कई झूठ के पैबंद होते हैं, कई झूठ के पैबंद होते हैं इसकी सच्चाई को छिपाने में। भले ही सलीके से लगा दिए जाएं, भले ही सलीके से लगा दिए जाएं, कभी ना कभी उधड़ जाते हैं, कभी ना कभी उधड़ जाते हैं। अगली कविता शीर्षक है तुम आना। तुम आना, जरूर आना,

अगली कविता तुम सुनिएगा। उदार हृदय हो तुम, बहता निर्झर निर्मल जो सदा। उदार हृदय हो तुम, बहता निर्झर निर्मल जो सदा। फूलों सी वर्षा करते शब्द, शायद कहीं छोड़ आए तुम। फूलों सी वर्षा करते शब्द, शायद कहीं छोड़ आए तुम। मेरे आत्मीय हो तुम, मेरे आत्मीय हो तुम, जीवन के सहयात्री। मेरे आत्मीय हो तुम, जीवन के सहयात्री। दुनिया से अपरिचित जीवन में मेरे बसंत हो तुम। दुनिया से अपरिचित जीवन में मेरे बसंत हो तुम। मौसम की बहार हो तुम, मौसम की बहार हो तुम। निर्भीक चले आओ सावन के तीसरे पहर में, सावन के तीसरे पहर में। मेरे इंद्रधनुषी हो तुम, मेरे इंद्रधनुषी हो तुम। अगली कविता का शीर्षक है यह कैसा अपनापन। यह कैसा अपनापन जिसमें ना वेदना ना ममता ना ही चिन्ह किसी प्रेम का। यह कैसा अपनापन जिसमें ना वेदना ना ममता ना ही चिन्ह किसी प्रेम का। यह कैसी आत्मीयता जिसमें ना कुशल ना क्षेम ना ही समय हाल पूछने का। यह कैसी आत्मीयता जिसमें ना कुशल ना क्षेम ना ही समय हाल पूछने का। यह कैसी जिंदगी जिसमें न चाह न आकर्षण ना ही लगाव रहा जीने में। यह कैसी जिंदगी जिसमें न चाह न आकर्षण ना ही लगाव रहा जीने में। फिर भी जीना है, फिर भी जीना है, समाज परिवार और अपनों के खातिर। फिर भी जीना है, समाज परिवार और अपनों के खातिर। अगली कविता का शीर्षक है संकीर्ण मानव। इस स्वार्थी समाज के बीच फंसा इंसान, इस स्वार्थी समाज के बीच फंसा इंसान। तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए, परंतु कैसे मुक्त हो समाज की बेड़ियों से। परंतु कैसे मुक्त हो समाज की बेड़ियों से, क्योंकि वह खुद भी तो स्वार्थी है।

0: क्योंकि वह खुद भी तो स्वार्थी है, वासनाओं के अंधे जाल में फंसा, खोखली हंसी हंसता हुआ वह खुद को धिक्कार रहा है। प्यार को पूजा कहता है, मोहब्बत को इबादत कहता है, स्वयं प्रेम का उपहास उड़ाता है। खुद को धिक्कार रहा है, प्रेम को पूजा कहता है, मोहब्बत को इबादत कहता है, स्वयं प्रेम का उपहास उड़ाता है। नारी की पवित्रता का गुणगान करता है, नारी की पवित्रता का गुणगान करता है, नारी को देवी भी मानता है, लेकिन नारी को ही चरणों की धूल समझता है, उसी को अपनी वासना का शिकार बनाता है। क्योंकि लेकिन नारी को ही चरणों की धूल समझता है, उसी को अपनी वासना का शिकार बनाता है, उसे तो खिलौना समझकर खेल कर फेंक देता है यह जालिम समाज, फेंक देता है यह जालिम समाज। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आपने सुना कल्पना बहुगुणा जी का यह काव्य पाठ। और बहनों, हाँ, गर्मियों के दिन हैं और अब चलते हम सीधा अपनी रसोई घर में, क्योंकि इन दिनों शरबत शरीर को ठंडक देने और लू से बचाने के लिए बहुत फायदेमंद और स्वादिष्ट होता है, और साथ में शरबत पौष्टिक भी होता है और एनर्जी भी देता है। तो जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं खसखस के शरबत का। तो बहनों, आज हम बनाते हैं खसखस का मलाईदार दूध वाला शरबत बादाम पिस्ता के साथ। तो बहनों, इसके लिए आप सामग्री नोट कर लें। खसखस भीगी हुई 2 बड़ी चम्मच, दूध 1 लीटर, काजू और बादाम भीगे हुए 2 2 बड़े चम्मच और 2 इलायची, आधा कप चीनी स्वाद के अनुसार। और बहनों, सब्जियों में चिया सीड्स 1 बड़ा चम्मच पानी में भीगे हुए। तो बहनों, अब हम बनाते हैं खसखस का मलाईदार शरबत। तो बहनों, इसके लिए सबसे पहले खसखस, काजू, बादाम और इलायची को थोड़े से दूध या पानी के साथ पीसकर हम महीन पेस्ट बना लें। एक बर्तन में दूध उबालें और उबाल आने पर आंच धीमी करें और इसमें पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स और खसखस का पेस्ट डालें। अब बहनों, इसे 5 से 7 मिनट तक हम मध्यम आंच पर पकाएं ताकि खसखस का कच्चापन भी दूर हो जाए और दूध हल्का गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम चीनी मिलाएं और घुलने तक पकाएं। गैस बंद कर दें और शरबत को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और फिर फ्रीज में रख दें। और बहनों, अब ठंडा होने पर इसमें भीगे हुए सब्जी के बीज मिलाएं और बर्फ के टुकड़ों के साथ हम सर्व करें। और बहनों, ये तो थी हमारी ठंडे होने की विधि, और हम खूब पिए शरबत ताकि और पूरे परिवार को भी पिलाएं, स्वस्थ रहें। और बहनों, अब हम चलते चलते फिर से करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, तो इसी गीत के साथ संपन्न होता है आज का कार्यक्रम। मिलजुल कर रहें, गर्मियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण परिवार का भी आप ध्यान रखें। इन्हीं शुभ संदेश के साथ होता है आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न। दें बीना रावत को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात UAE पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। 1:05 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी, अभी तक 70% कार्य पूरा, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ, शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खोलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा तय नहीं थी। एक रिपोर्ट।
4: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय

0: है, इस लिहाज से 46 लाख की आबादी को कवर किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने देहरादून में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु के साथ प्रदेश में जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल बैठक कर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों से फीडबैक लिया। श्री नारायण ने कहा कि जनगणना के कार्य में आंकड़ों की गुणवत्ता की सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इसी पर परिसीमन से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं का आधार टिका हुआ है। उन्होंने सभी से आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की जांच पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील की। साथ ही उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में जनगणना कार्य में शेष बचे एक तिहाई कार्य को भी समयबद्ध ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में किया गया अच्छा काम ही दूसरे चरण की सफलता का मजबूत आधार साबित होगा। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय अभियान है, जिसका देश की प्रगति और विकास से गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरा करना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशा भट्ट।
0: पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नैनीताल बैंक की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के तहत स्वास्थ्य विभाग को एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग संस्थान पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा कि जिले के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्थानों द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य प्रेरणादायी और सराहनीय हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विशेष रूप से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
2: बहुत अच्छी पहल नैनीताल बैंक के द्वारा यहाँ पर की गई है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां आप पूरे संपूर्ण जनपद में अन्य जगह भी, क्योंकि एम्बुलेंस की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। और मैं सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सदुपयोग करना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एम्बुलेंस तो आ जाती है लेकिन फिर उसका रिकरिंग कॉस्ट होती है और उसका जो पूरा मेंटेनेंस होता है उसका भी पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए और ड्राइवर की भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और सही जगह पर डिप्लॉयमेंट भी होना चाहिए।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद प्रदेश में सरकारी विभाग सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने भी तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के दौरान साझा वाहन अपनाने का रोस्टर जारी किया गया है, ताकि अनावश्यक ईंधन खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा कार्यालय के आसपास रहने वाले कर्मचारियों को साइकिल से या पैदल कार्यालय आने की सलाह दी गई है। MDDA उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बिजली और ईंधन दोनों की बचत करना है।
4: हम लोगों ने रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में अवैध निर्माण में सीलिंग में लगे हैं, एक सेक्टर के लिए एक गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और दुष्टीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
0: चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच भगवान रुद्रनाथ की यात्रा का आज शीतकालीन गतिस्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हो गया है। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सुबह पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर में गर्भगृह से भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रखा गया। उन्होंने बताया कि आज और कल उत्सव डोली श्रद्धालु के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में ही रहेगी। 17 मई को डोली रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।

0: आज भगवान श्रीनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
1: पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में कोटद्वार में उप जिलाधिकारी ने आज शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों, साफ सफाई व्यवस्था और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित पाया गया तथा शौचालयों की स्थिति भी संतोषजनक मिली। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में चल रहे सभी निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों को इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की मौके पर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की भी जांच कराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी। अभी तक 70% कार्य पूरा, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की कीमत बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ, शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 107.5 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:15 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशिकी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये मधुर गीत। आवाज थी कुमार सानू के साथ अनुराधा पौडवाल की। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम अकेले हम अकेले तुम। अनु मलिक का संगीत है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का, और आपको सुनवाते हैं अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में। जतिन ललित की धुन है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी देहरादून है। 1:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
3: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है।

0: है, चलो बाहर चलें।
1: धातु और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं।
2: हम समुद्र तट पर जाते हैं।
1: ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं धातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर धातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। धातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं।
0: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने धातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे।

0: जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ,
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सुबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
4: जी सुबेदार साहब।
3: बोले सोनिहाल।
4: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
5: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
6: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर

0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाएं

0: परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक साथियों, जय हिंद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, जहां हम याद करते हैं उन महान योद्धाओं को, उन सैनिकों को जिन्होंने भारत की सैन्य परंपरा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिन्होंने अपने अनुशासन राष्ट्रभक्ति से आने वाली पीढ़ियों को संदेश दिया। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं प्रथम फील्ड मार्शल KM करियप्पा को, जिनकी आज है पुण्यतिथि। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो।

भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

105 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की मिसाल फील्ड मार्शल KM करियप्पा की। 28 जनवरी सन 1899 को कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में जन्मे कोडमडेरा मदप्पा करियप्पा बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। उस समय श्रोताओं, भारत अंग्रेजों के अधीन था। भारतीयों के लिए सेना में उच्च पदों पर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन करियप्पा जी ने इस सोच को बदल दिया। वो उन पहले भारतीय अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में किंग्स कमीशन प्राप्त हुआ। उनका सैन्य जीवन केवल पदों की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सेना के आत्मसम्मान की कहानी थी।

श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करियप्पा जी ने कई मोर्चों पर अपनी क्षमता का परिचय दिया। 15 जनवरी सन 1949 का दिन भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने सेना को केवल युद्ध की शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया। उनका प्रसिद्ध कथन था, सेना का धर्म केवल और केवल भारत है। उन्होंने सैनिकों में जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना विकसित की। उन्होंने सेना को भारत की ताकत और हिम्मत का प्रतीक बताया।

श्रोताओं, देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, संसाधन सीमित थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का साहस असीम था। जब सन 1947 में पाकिस्तान समर्पित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया, तब करियप्पा जी की अद्भुत रणनीति और नेतृत्व से सेना का मनोबल ऊंचा रहा। उनके निर्देशन में सेना ने दुश्मन को पीछे धकेला और कश्मीर के बड़े हिस्से की रक्षा की। करियप्पा जी अपने सैनिकों से, श्रोताओं, बेहद प्रेम करते थे। सन 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इनके पुत्र, जो कि एक पायलट थे, उन्हें बंदी बना लिया गया, तब उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने कुछ सैनिकों के बदले उनकी रिहाई की पेशकश की। तब करियप्पा जी ने कहा कि मेरा बेटा भी भारतीय सैनिकों जैसा ही है, यदि सभी युद्धबंदियों को छोड़ा जाएगा तभी उसे भी रिहा किया जाएगा, मेरे लिए सभी सैनिक एक समान हैं। तो श्रोताओं, यही था उनका निष्पक्ष राष्ट्र प्रेम।

श्रोताओं, सन 1986 में भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की सर्वोच्च सैन्य उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने जीवन भर अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति का संदेश दिया। वो कहते थे, अनुशासन सैनिक की सबसे बड़ी शक्ति है। देश पहले, बाकी सब कुछ बाद में आता है। नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से आता है। सच्चा सैनिक हर परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। आज जब हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर डटे हैं, तब करियप्पा जी की प्रेरणा हर जवान के मनोबल को और मजबूत करती है। भारत माता के इस महान सपूत ने 15 मई सन 1993 को इस नश्वर संसार को त्याग दिया। हम के एम करियप्पा जी को शत शत नमन करते हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा तय नहीं थी। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूरा हुआ। गणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा संग्रहित करते हुए 86 लाख की आबादी को कवर किया है। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी तेल बचाओ मुहिम शुरू की। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने उत्तरकाशी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कहा, गांव, गरीब और युवाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कारलीगाड़ सहस्त्रधारा में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आपदा में आए मलबे को तत्काल चैनलाइज करने और बरसात से पहले संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मानकों के विपरीत संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त किए। इन होमस्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया है। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। और पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नैनीताल बैंक की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के तहत स्वास्थ्य विभाग को एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 3:02 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत गाने नए तराने।

स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत गाने नए तराने में। तो श्रोताओं, संगीत के इस सुरमई सफर की शुरुआत करते हैं पेपॉन के गाए इस बेहद खूबसूरत और मधुर गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म दम लगा के हाय शाह से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिधि चौहान की मनमोहक आवाज में, फिल्म का नाम डर्टी पिक्चर, संगीत विशाल शेखर का है, गीतकार हैं रजत अरोड़ा।

किसी ने क्या खूब कहा है कि वो बात अधूरी रह गई, मेरी मुलाकात अधूरी रह गई। कहना तो उनसे बहुत कुछ था, लेकिन वो मुलाकात अधूरी रह गई। तभी तो एक मुलाकात जरूरी है सनम।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। आपको सुनवाते हैं अगला तराना उदित नारायण की मधुर आवाज में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या। जतिन ललित का संगीत है, गीतकार है समीर।

नशा था उनके प्यार का जिसमें हम खो गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब हम उनके हो गए। जी हाँ श्रोताओं, मोहब्बत का नशा कुछ ऐसा ही होता है। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको भी सुनाते हैं।

0: आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: सदस्य 5 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत गाने नए तराने का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह के साथ अंतरा मित्रा की आवाज में, फिल्म का नाम दिलवाले। प्रीतम का संगीत है, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्या।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, गायक कलाकार थे मोहम्मद इरफान और पलक मुच्छल। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है अंदाज फिल्म से। गीत को गाया है उदित नारायण के साथ अलका याग्निक ने, संगीत नदीम श्रवण का है, गीतकार है समीर।

श्रोताओं, समय हो गया है 3:56। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत पालोमी की आवाज में। फिल्म का नाम हेलीकॉप्टर इला।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत गाने नए तराने FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं इस वक्त की FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफॉर्म्स पर सभी पाठ्यक्रमों की ई बुक सहित अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने उत्तरकाशी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की, योजनाओं के समयबद्ध और क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कहा, गांव, गरीब और युवाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उधम सिंह नगर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य आमजन में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देहरादून जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मानकों के विपरीत संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण निरस्त किए। इन होमस्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पौड़ी जिले में विकास कार्य को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पौड़ी प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा शुरू। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी किया गया है। इस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में इन दिनों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को अगरबत्ती, धूप और पारंपरिक दिए बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 4:02 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए पंडित ब्रजनारायण से राग मुल्तानी में सितार वादन। तबले पर आपके साथ संगत दे रहे हैं सुखविंदर सिंह नामधारी।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रज नारायण से राग मुल्तानी में सितार वादन। तबले पर आपके साथ संगत दे रहे थे सुखविंदर सिंह नामधारी। FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: सदशमलव पांच मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक कलाकार में। और आज की कलाकार कौन है ये आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज की कलाकार है मशहूर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। आज माधुरी जी का जन्मदिन है, तो आकाशवाणी परिवार की ओर से माधुरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रोताओं बात और भी करेंगे इनके बारे में, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में इन्हीं पर फिल्माया ये गीत।

107.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है एक कलाकार, और आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। श्रोताओं, माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का एक ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई।

श्रोताओं, इनका जन्म हुआ 15 जनवरी 1967 को मुंबई में। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलती लता की लाडली माधुरी बनना चाहती थी डॉक्टर, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और वो बनी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस।

श्रोताओं, माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की सन 1984 में आई फिल्म अबोध से, किंतु इनको पहचान मिली सन 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के कारवां ने इनको भारतीय सिनेमा की सर्वोच्च अभिनेत्री बनाया। तो आपको भी सुनवाते हैं फिल्म तेजाब का वही वाला गीत।

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

अपनी प्यारी सी मुस्कान और दमदार अभिनय के बल पर माधुरी दीक्षित ने बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में हैं राजा, हम आपके हैं कौन, तेजाब, रामलखन प्रेम ग्रंथ, दिल, गुलाब गैंग, देवदास, बेटा, टोटल धमाल, दिल तो पागल है, देवदास, साजन, हम तुम्हारे हैं सनम, आरजू, डेडेश किया, प्रेम प्रतिज्ञा, लज्जा, परिंदा, याराना, कोयला, संगीत, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। तो आइए सुनते हैं इन्हीं पर फिल्माया ये कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राम लखन से।

0: श्रोताओं, बात करें इनको मिले पुरस्कारों की, तो इन्हें सन 1998 में, 1995 में और सन 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस से नवाजा गया। इसके साथ ही सन 2008 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माधुरी आज भी अपने कार्यक्षेत्र में अग्रसर हैं। अभी हाल ही में ओटीटी पर रिलीज फिल्म मिसेज देश पांडे में उन्होंने दमदार अभिनय किया है। इसके अलावा इनकी आने वाली फिल्म है माँ बहन, जिसमें इनके साथ हैं तृप्ति डिमरी। तो हम माधुरी जी को आने वाली और भी फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इन्हीं की अभिनीत फिल्म गुलाब गैंग से।
1: गगन गन गन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर यानी शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्री शंभू प्रसाद रतूड़ी से गढ़वाली कहानी छोटी फूफू। पर्वतीय अंचलों के कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर। किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:00, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे आम लीची के बागों की प्रमुख समस्या व समाधान विषय पर डॉक्टर मीनाक्षी जोशी से बातचीत। आरएनए देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद का समय रहेगा शाम 7:50 पर।

रात्रि 8 बजे कथा सागर के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमती कुसुम भट्ट से कहानी खूबसूरत हो। सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की आवाज में आप सुनेंगे चंद गजलें रात्रि 8:15 पर। फिल्मी गीतों के सफर फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम हेलो फरमाइश के अंतर्गत रात्रि 10:00।

कल रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट, कल रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका और कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल प्रातः 7:30 पर शैल संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पप्पू राज की आवाज में जौनसारी लोकगीत।

प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा कल प्रातः 8:30 पर। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत कल प्रातः 9:00। कल प्रातः 10:35 पर आप सुनेंगे रामपाल की आवाज में रागणिया। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा कल प्रातः 11:00। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम महिला जगत कल दोपहर 12:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे सेवानिवृत्ति के बाद समय कैसे व्यतीत करें विषय पर श्रीमती रेखा सिंघल से बातचीत। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय रहेगा कल दोपहर 2:30 पर। कल दोपहर 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राग कलावती और राग मरुविहाग पर प्रभा अन्नी का ख्याल गायन। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मानस उनियाल। आज का कार्यक्रम साथियों शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहूँगा, उत्तर भारत में बढ़ रही भीषण गर्मियाँ। साथियों, तापमान बारिश के कारण थोड़ा कम तो हुआ था, परंतु अब फिर से गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं और इससे काफ़ी असुविधा बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य खतरे भी बढ़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक्स, डिहाइड्रेशन, फटीग जैसी समस्याएं अब आम होती जा रही हैं। ऐसे में साथियों हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे खाली पेट घर से बाहर ना निकले, नियमित अंतराल पर तरल पदार्थ और पानी पीते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण साथियों अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझें। याद रखिए कि आप यदि स्वस्थ होंगे तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, और इस गर्मी के मौसम में कोशिश करिए कि आप अपने घर के बाहर थोड़ा पानी और अनाज अवश्य रखें पशु पक्षियों के लिए। तो साथियों इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं लाइफ इन अ मेट्रो से लिया गया यह बेहतरीन सा गीत KK की आवाज़ में।

दोस्तों, हम सभी ने बचपन से सुना है कि समय बहुत ही कीमती होता है। अगर समय निकल जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के साथ भी तो यही बात लागू होती है? आज की युवा पीढ़ी समय को लेकर पहले से अधिक जागरूक हो चुकी है। लोग अपनी पढ़ाई, नौकरी, फिटनेस और करियर को लेकर के योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी बहुत से लोग गलतियां कर बैठते हैं, और वह है मनी मैनेजमेंट, यानी पैसों का सही इस्तेमाल और बचत। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है। हर दिन हमें नई नई चीज़ें खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। कभी सेल्स, कभी नए गैजेट्स, कभी नए ट्रेंड्स, और कई बार तो हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। कई युवा नौकरी पर लगते ही सोचते हैं कि अब तो हमें ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, और साथ ही उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन वे अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। शुरुआत में तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है और हम ये गलत आदत डाल लेते हैं। महीने के अंत में बचत हो जाती है शून्य, और एक छोटी सी चिंता बाद में एक बड़ा कारण बन सकती है आर्थिक प्रॉब्लम्स की। दोस्तों, पैसे कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उन्हें संभालना। अगर कोई व्यक्ति लाखों कमाता है लेकिन बचत नहीं करता तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं एक साधारण आय वाला व्यक्ति यदि समझदारी से पैसे बचाता है तो अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा होता है। आज के समय में युवा को फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि आर्थिक समझ होनी बहुत ही आवश्यक है। हमें यह जानना चाहिए कि बजट कैसे बनाया जाता है, खर्चों को कैसे नियंत्रित किया जाता है और बचत हमें कहाँ करनी चाहिए। यदि आप छात्र हैं तो आप अपनी पॉकेट मनी का रिकॉर्ड रखें, और यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो कम से कम अपनी सैलरी का 20 से 30% हिस्सा बचत करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ा सहारा बनती हैं। आज बचाया गया पैसा आपके कल की शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और किसी इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। साथियों, इसके अलावा आपको निवेश की समझ भी होनी आवश्यक है। जैसे बैंक में पैसा रखना आज के डेट में काफ़ी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, FDs और अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। साथ ही आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग एक एक करके अपना पैसा गुल्लक में डालते थे, ताकि बाद में यदि गुल्लक भरे तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट हमें मिले और उस अमाउंट से हम अपने लिए चीज़ें खरीदते थे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इस गुल्लक को बैंक में बदल देना चाहिए या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में बदल देना चाहिए, ताकि हमारी बचत भी हो और हमारी आय के साधन बढ़े भी। साथियों, लोग आज के समय में दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। लेकिन सच्ची सफलता वही है जो कि मानसिक हो, यानी कि दूसरों को दिखाने के लिए ना हो। और हमें यह समझ को भी डेवलप करना होगा कि हमें अपने लिए पैसा जमा करना है, ना कि किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए। इसलिए साथियों, जीवन में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। काम का समय, आराम का समय, बचत का तरीका और खर्च करने की समझ, यही एक सफल और स्थिर जीवन की पहचान है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति समय और पैसे दोनों की कदर करना सीख जाता है, वह जीवन की कई परेशानियों से खुद को बचा लेता है। और साथियों, उसी के साथ अब आपको सुनाते हैं फिल्म ब्रदर्स से सोनू निगम की आवाज़ में यह बेहतरीन सा गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज भारत का युवा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। आज के युवा में कुछ नया करने का जुनून है। वह खुद का काम शुरू करना चाहता है और अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। और इसी सोच के साथ कई नए क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट। आज के समय में छोटे से छोटे कार्यक्रम को लेकर के लोग उसे खास बनाना चाहते हैं। चाहे शादी हो, जन्मदिन हो, कॉलेज फेस्ट हो, धार्मिक आयोजन या फिर कोई कॉरपोरेटिव इवेंट, हर जगह अच्छे आयोजनों की मांग बढ़ती जा रही है। पहले तो लोग खुद से ही कार्यक्रम संभाल लेते थे, परंतु अब समय बदल चुका है। आज लोग चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम व्यवस्थित, आकर्षित और यादगार हो, और यही काम इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स करते हैं। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि इनमें अवसरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारत में त्यौहार हर महीने आते हैं, जन्मदिन आते ही रहते हैं, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है। अगर किसी युवा के अंदर रचनात्मक सोच है, लोगों से बातचीत करने की क्षमता है और टीम के साथ काम करने का आत्मविश्वास है, तो यह क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जहां छोटे स्तर से भी शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में कोई व्यक्ति छोटे जन्मदिन समारोह, स्कूल प्रोग्राम या फिर स्थानीय आयोजनों से अनुभव ले सकता है और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बढ़ा सकता है, ताकि उनको बाद में बड़े अवसर मिले। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया ने तो इस काम को और भी आसान बना दिया है। अगर आपका काम अच्छा है तो लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे और प्रचार खुद को खुद करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवा अपनी क्रिएटिविटी को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और इवेंट मैनेजमेंट सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है साथियों, इनमें कई अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि स्टेज डिज़ाइन, लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग और गेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि एक इवेंट कई लोगों को रोजगार दे सकता है। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में सफल होता है तो वह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि काफ़ी

लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा होता है। आज भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग्स और बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। समय पर काम पूरा करना, अपनी मीटिंग्स को कंप्लीट करना, टास्क को कंप्लीट करना और इवेंट्स को और भी ज्यादा मनोरंजक बनाना काफी महत्वपूर्ण होता है। इनमें इवेंट मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने काम को व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं और इसे अपने आय का एक जरिया बना सकते हैं। साथियों, भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब युवा अलग-अलग क्षेत्रों में अपना नाम स्वयं बनाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि हर बड़ा व्यवसाय कभी ना कभी एक छोटे विचार से ही शुरू हुआ था और आप भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं हम दम लगा के हाइशा फिल्म से यह बेहतरीन सा गीत।

दोस्तों, घूमना फिरना सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं बल्कि हमें नई जगह, नई संस्कृतियों और नए अनुभवों से भी जोड़ता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग विदेशी पर्यटन स्थलों की तारीफें तो करते हैं और वहाँ जाने का सपना भी देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने देश भारत को सही मायने में देखें तो यहाँ भी ऐसी अनगिनत जगहें हैं जिनकी खूबसूरती दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, भाषा, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता है। अगर किसी को बर्फ़ से ढके पहाड़ पसंद है तो आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे किसी राज्य में आ सकते हैं जो कि जन्नत से कम बिल्कुल भी नहीं है। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बहती नदियाँ और प्रकृति की शांति मन को एक अलग ही सुकून देती हैं। अगर समुद्र पसंद है तो आप गोवा, अंडमान और केरल के बीच दुनिया के बेहतरीन समुद्री तटों में गिने जाने वाले राज्यों में जा सकते हैं। साफ पानी, खूबसूरत सूर्यास्त और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजस्थान का इतिहास और वहाँ के किले भारत की शान है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे कई विदेशी पर्यटनों को भी पसंद आती है यह जगहें, और आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। लद्दाख की खूबसूरती इतनी अद्भुत है कि वहाँ की सड़कें और पहाड़ किसी विदेशी फिल्म का की लोकेशन जैसे लगते हैं। वहीं मेघालय के झरने और हरियाली प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। भारत सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है साथियों, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार और लोगों का अपनापन इसे दुनिया से अलग बनाते हैं। काशी की आध्यात्मिकता, अमृतसर की स्वर्ण मंदिर और केरल की बैकवाटर, सिक्किम की शांति और तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर, हर जगह भारत की अनोखी पहचान दिखाई देती है। आज घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। साथियों, जब हम अपने देश में यात्रा करते हैं तो स्थानीय व्यापारियों, होटल मालिकों, टैक्सी चालकों, गाइड्स और कलाकारों को भी इससे रोजगार मिलता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाती है। इसके अलावा अपने देश को करीब से जानना आज के समय में तो बहुत ही आवश्यक हो चुका है। कई बार हम विदेशों की खूबसूरती की तारीफ तो करते हैं और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन अपने ही देश की अनमोल जगहों को देखने का हमें समय नहीं मिल पाता, या फिर शायद हम निकालना नहीं चाहते। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ जाने के बाद इंसान सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि यादें लेकर के भी लौटता है। और दोस्तों, यात्रा हमें सिर्फ दुनिया नहीं दिखाती बल्कि हमें खुद को समझने का भी मौका देती है। इसीलिए यदि आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप सबसे पहले भारत को घूमिए। भारत में आपको बहुत सारी जगहों में शांति मिलेगी, सुंदरता मिलेगी और एक अलग सा अनुभव होगा। तो साथियों, इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में यह गीत।

दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें पत्र लिख करके भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम युवाणी, द्वारा निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, देहरादून, हरिद्वार, बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, और हमारा पिन कोड है 2480001। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है youthddn@gmail.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे यानी कि मानस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 5:45 होने को हैं श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम रामजगत सुनदरा सभी भाई बंधु थे नमस्कार विनय ध्यानिका तरफ बटेगी
1: दगड़ हमेशा आप दगड़ रुचि रावत मेतर पावड़े भी आप सभी उनके सेवा सौली प्रणाम फैला
0: तो इनका जोर से सांस खींचे किला खेरा गई कि क्या भाई
1: हाँ जी
0: खेर नहीं आने चाहिए भाई जवान जवान लोग छे ना तो खेर अब बेटे हुए तब क्या तभी बोल देना कि थोड़ा बहुत हाथ कुटा हलान चाहिए उन क्या है ना कि हम लोग को तो गीज पूड़ गया बैठ बैठे खाने के
1: हाँ जी
0: है ना कि यू भी ओ क्या बोल देना मशीन वो कपड़ा धोने वाले भी हूँ तैयार और तो मुझे रोटी भी अब मशीन आ गया
1: हाँ जी भांडा धोना की
0: तो क्या कन एडमन क्या कन
1: सही
0: खाड़ चुबस है
1: हाँ जी
0: तो थोड़ा बहुत हाथ कुटा हलाने चंदे ने तो वैसे आप सेहत ठीक ठाक रहे सबसे आटने हो ना
1: जी ध्यानी जी मैं जरा पैदल चले हो ना आज
0: ओ पैदल तो बहुत जरूरी है चलो ना
1: जी
0: स्वास्थ्य का खातिर बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा बहुत हीट लियो अगर गाड़ी घोड़ा छेने तो भाई आजकल आदमी सोचो तो कि एक हम बटे उखम तक भी जान तो बस गाड़ी घोड़ा होना चाहिए
1: जी
0: इतना ही ना मैं तो पहाड़ में भी देखना चाहूँ ये बात
1: हाँ जी
0: सड़क बाटा घाटा बिल्कुल साफ सुथरा छ
1: जी
0: लेकिन एक स्टेशन बटे यार है एक स्टेशन अगर 2 किलोमीटर छ ना
1: जी
0: तो लोग बसों में जीपों में ट्रैकर में टंगे जाना खुण तैयार छ
1: बिल्कुल
0: पर खुटा नहीं हलाना
1: बिल्कुल ध्यान दीजिए जो पुराना रास्ता घाटा बाटा चाहो
0: तो बाहर जा पहुंच गए बड़ी मुश्किल हो जाए कह दो आप देखा कि ये जो छो ना क्या बोल देना ये सतपुली एंच
1: जी।
0: पल छोड़ जो नयार छो पल छोड़ जो गांव छो ना लोग हाँ पैदल जाना चाहे हम ही टिका छो हाँ। वो बाटा घाटा
1: हाँ जी।
0: आज वो बाटा घाटा सजमना छन हर चीज नी छन लेकिन लोग ये चाल बेटा कर वो चाल जाना खून भी 1 से 2 घंटा बस के इंतजार करना
1: चाहिए
0: जबकि वो 2 घंटा में पहुंच सकते ना गौर
1: हाँ जी अरे बीच की अगर बस नहीं मिले ना तो बुकिंग करी जाना चाहिए
0: हाँ आजकल तो गाँव गाँव में टैक्सी हुएगी
1: जी
0: तो भाई जरा सी अपन सेहत को ध्यान रखा और सेहत तभी बना ली कि जब हम शरीर था जरा से मेहनत करो ला
1: जी।
0: और ये बात बोले जानी चाहिए कि भाई ठीक छे खाने पीने भल बात
1: जी।
0: लेकिन अगर आप थोड़ा सी योग थोड़ा सी व्यायाम नहीं करना छे ना तो भाई बहुत मुश्किल छे ये समय मा यू समय इन छे ना जो कुछ हम खाना चाहो ना कुछ ना वक्त में कितना शुद्धता छे
1: जी बिल्कुल
0: तो शुद्धता का खातिर ये छे कि हम अपन जो सगोड़ा छे ना ओख में कुछ ना कुछ फल फूल उगा दी वहां साग पात उगा दी वहां ऊं तो खवा तो वैसे साफ सुथरी चीज जानी चाहिए
1: बिल्कुल ध्यान दीजिए दो काम होते हैं से एक तो ऑर्गेनिक हम तो अपने घरों में जा दूसरी थोड़ा हाथ खुटा भी चला ला
0: क्या भाई ऑर्गेनिक अच्छा जैविक बोल दें जैकुण
1: जी
0: प्राकृतिक है
1: जी
0: जो मोल डाल दिया तो वैसे हुए जान भुजी सुंदर
1: हाँ जी पर आजकल लोग ऑर्गेनिक ही बुनाते
0: हैं हाँ बिंगना भी छन लोग मीट नहीं बिंगनो बाकी सब बिंग देन किला की बाजारों में भी लोग जाना छे ना तो जरा वो ऑर्गेनिक वो शायद नहीं तुम मां
1: जी
0: इन बोल देन
1: जी
0: है ना तो साफ ठीक छे हम बोले हम बचे हैं जन भी लेकिन कुल मिला एक बात यह कि खानी पीनी ठीक ठाक होनी चाहिए और वही का अलावा जन हमन बताया कि शरीर तय जरेस आप छोड़ दिया कि भाई हाथ खुटा भगवान दिया छन हला लो दू तय और घर गाँव में तो बच्चों था देखो कितना दूर दूर स्कूल अटकना छो है ना तो वैसे स्वस्थ रहे सभी लोग आज एक कार्यक्रम बाबत बतौला कि इन छुई एथर भी हम लोगों ला हाँ बन बनी छुई लेकिन आज एक सगत दिन छ और वो च अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस परिवार का खातिर क्या बोल रहा आप रुचि जी
1: बस ध्यानी जी ये बोला कि जीवन में पैसा सफलता और नाम सब जरूरी है लेकिन घर वापस लौटने पर अगर अपने लोग निवात फिर कोई भी खुशी अधूरी है लेकिन परिवार वृक्ष जाएगा छैल माँ हम तो हमेशा सुकून मिलते
0: वाह क्या सगत तो बात भारी भरकम कर दिया अपन हाँ तो हो रही और बोल रहा इधर अच्छा क्या
1: ना ना हरी बीबी जाम चा परिवार शब्द अपने आप हम बहुत बड़ो शब्द चा दुनिया में अगर कोई जगह सबसे सुरक्षित जो अपने घर जख हमारा लोग जो बिना बताया हमारे खैरी समझ जाते ना हमारा आंसू देख देंगे ना और हमारे एक छोटी सी खुशी में पूरा परिवार खुश हो जाता तो वही परिवार है ना और आजकल हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी हम लोग लगातार परिवार से दूर हो जाना चाहिए लेकिन हम यू ही बुल्ला की अपना श्रोताओं था बुल्ला सभी था यू ही बुल्ला की जो पैसा तो हम कमा सकते हैं लेकिन हम परिवार हम कमा नहीं सकते हैं ना जन हम बचपन में अपने परिवार दगड़ बैठे की अपने माँ पिता जी दादी दादा दगड़ कहानी सुनता चाहिए और भाई बहनों दगड़ हंसी मजाक करते चाहे तो आज वह सबसे

0: खूबसूरत याद हमारे च,
1: बिल्कुल
0: और हम और अगर भी बढ़ते हैं कि हम छोटा चाहे इन कर दे चाहे उनका सिखा दे पीछे हैं कि मिलजुली कह रहा हुआ।
1: अब याद करण जोगा कुछ छह ना
0: जी,
1: आपन बताया ना कि हाँ सगत कुटुंबदारी हुई छे
0: जी,
1: जैसे कि हम कुटुंब परिवार बहुत अच्छा
0: जी,
1: कि अगर आस पड़ोस का बीच है ना तो वो कौन भी अपने कुटुंब में शामिल करना चाहता
0: जी,
1: सगत परिवार का बहुत सारा फायदा छा, यानी कुल मिला संयुक्त परिवार जो हम बोलना
0: जी,
1: तो उखमा एक दूसरे पीढ़ जो आपन बताया ना कि भावनात्मक जो रिश्ता छा वो बड़ा मजबूत छा, और काम धैने चुटकियों में भोजन छा,
0: बिल्कुल
1: कैन पिसी हुए दे यार, कैन खट से रोटी बना दी, और कैन भांडा फरका दी, मतलब मजा दी फरकान जुगत नहीं ना और कोई पानी की बंटा आप हाथ पंजार बटे भूर लिया
0: हाँ जी,
1: तो पता नहीं चलो छा। अब परिवारों की जो शक्ल छ वह एकल परिवार का तौर पर हो गया,
0: बिल्कुल
1: दुई जना छ ना, एक जी या दुई छन बस। अब कते दा हम यक देखना छु, खास करी कि देहरादून में बुजुर्ग बेचारा गर्मो में छ
0: जी,
1: और यक बुएल अफारू पकड़ी स्कूटर
0: जी,
1: और वे में दो या नौ नान नौनी जो भी छन धरियो, और उनका बस्ता उन बच्चों से बड़ा अतब ले जाना छ स्कूल,
0: बिल्कुल
1: है ना, और बाबा जी जया छ ना पार नौकर पर या अपन काम धंधा पर
0: जी।
1: अब कई बात तो बच्चों को दगड़ बुए बाबू रलियों मिसियों छुई लगनी कुजान कुजान
0: जी।
1: और बच्चा भी स्कूल बिटाना छन तो काम ही हूं इधर छो, जब तुम बसता छो उतना ही काम भी रहे,
0: बिल्कुल।
1: और बेखुंदा अगर आ गए परिवार का मुखिया तो तब उन बोलना हो आज तो भिंडी खेरा गया है
0: जी,
1: तो इन करना की जरा रोटी दियो दी खा लियो ना से ला।
0: बिल्कुल ध्यान दीजिए, बाकी जो कसर बची ना दो फोन पूरा कर दें।
1: बा बा बा मी वो ख्याण छा
0: जी,
1: कि अगर चार भी बैठे हैं छन दुई नो ना नोनी और बुए बाप तो चलो का हाथ में छन मोबाइल
0: जी,
1: तो क्या कहना वही परिवार को जब हम छुई नहीं लगाना छो आपस में,
0: सही बात।
1: पर इली हम अपनी खेरी बिपदा अपनी बात बोल देना चाह हर तो हर अपने बुआरी छुई फलानी सास में लगा देना चाह
0: जी जी
1: यानी कुल मिला के उमाल जो छाने वो खाते जान छा
0: जी,
1: कि चलो फारू में बोडी में बोलियो लो तो जर में हल्की हो जाऊं कि बाबा आज मेरी बुआरी ने तीन कह दिया
0: जी।
1: तो कुल मिला के आप अभी भी ये बात था ध्यान रखा कि जो बुजुर्ग छन जो हमारा पुराना छन
0: जी
1: उन ते एहसास नहीं दिला कि वो अकेला छन,
0: बिल्कुल
1: आप तो अकेला छह ही छन
0: जी,
1: लेकिन आप उन ते एहसास नहीं दिला, वही साक तो फोन फान कह लिया
0: जी,
1: वही साक तो रोज छुई लगा लिया उन दगड़
0: जी, बिल्कुल
1: कि लगी वो छुई लगाना खुन भीतर से की ना,
0: बिल्कुल ध्यान जी। और एक बात और बुनचानो छ कि हम लोग उनका जाना बाद स्टेटस वगैरह आजकल फोन हम खूब लगाना छे, लेकिन जब वो रहना छे तो हम एक फोन का नौ पांच मिनट दो मिनट मतलब सोचना रहने कि आज समय नहीं मिनो चा, जबकि पूरा दिन भर इंतजार कर दिन कि हम नौ ने ड्यूटी बटा ला या काम बटा फिर वे कि हम तो कॉल कर रहा।
1: हाँ साहब बात ठीक बना छन, फोन जमन च नहीं जमन च मिल जाने लोग मुखड़ भी दिखा दें देना तो वीडियो कॉल पर
0: जी,
1: लेकिन सच एक मोहब्बत छप छप नहीं पड़े जो कि अंगवाल बोटी की भूखी पेक होंद
0: जी,
1: और ये परिवार का जो मूल्य छ नहीं होता हम तब बचाण होलू तभी आजक जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस छ वो एक सार्थकता बनी रह।
0: बिल्कुल ध्यानी जी, आप कार्यक्रम में शामिल कर दें गढ़वाल गीत स्वर्च दीपा चौहान को अरवान अगर छिन कुछ रंत रह बात।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अभी आपन सुन दीपा चौहान का स्वरमा ये सुंदर सी गडवल गीत। उम्मीद कर दो कि गीत आपते पसंद आवल।
2: और अब कार्यक्रम में एक दा फिर से छठी फूप आनी छे। अब वो यहाँ खातिर आनी छे कि 13 तारीख में जो दिन हमने यू सुना चाहे आप था यह वार्ता, वो दौरान जरे हमारे एक जन के हमने पहले भी बताया कि तकनीकी खराबी का चलता अपन साफ सुतुर हो सकते रेडियो पर नहीं सुनोल, तो हमन सोच चला आज आप थे फिर से सुनोला। तो सुना श्री शंभू प्रसाद रतूड़ी की या गडवल कहानी छोटी फूफू।
3: बिचला चांदपुर में पिंडर नदी का बाई तरफ नदी का किनारा बिटी पहाड़ का शिखर तक फैलू गांव चो रतूड़ा। पंडित हरिकृष्ण जी रतूड़ी अपना गढ़वाल का इतिहास नामक किताब में बतलौंदा कि संबत 980 में पंडित सत्यानंद जी और राजबल जी जो आद्य गौर छया यून ऐते रतूड़ा गांव में बसावट करे। उत्तराखंड ते देवभूमि बोली जांद, देवताओं का दगड़ा दगड़ी नारी शक्ति देवी का रूप में यख निवास कर दी। रतूड़ा में माँ भगवती, ज्वालपा, गौरजा, झाली, नागिना, नंदा, सरस्वती आदि रूपों में गांव की रक्षा कर दी। देवियों और ध्यानियों की भूमि ची रतूड़ा। ये गांव में द्वि भाइयों का बाद कन्या को जन्म भयो नौ पड़े भागीरथी। द्वि भाइयों की लाडली बहन को बचपन वे बाबा और भाइयों का दगड़ी सुखपूर्वक बीते। सामान्य किसान का परिवार में 60-70 साल पहली जन प्रथा होंदी छे कि नौनी ते घर बार देख करी विंकू ब्यो पगना कर देन छा। भागीरथी ते भी जीवन साथी की ढूंढ खोज करे गई। चांदपुर परगना का ही सुदूर डांडा मां बसू रमणीक ग्वालखेत गांव में भागीरथी को रिश्ता तय हुए। जीवन का दूसरा परिच्छेद मां अबोध भागीरथी का सीधा साधा वे बबों दगड़ी छलर कपट की कथा शुरू हुए। दरअसल मां वर नारायण पहली बेटी शादीशुदा छया। जब ब्यो भेगे भागीरथी सौरास पहुंचे तब जानकारी मिले सीधा साधा लाटा वे बबों अपनों कपाल पकड़ दे ठगी पर अफसोस करदा रह गया। बर नारायण फौज में छया दाना सयानों

राय मशुरा करी ते बाटू खोजी कि ये ते विधि को विधान माना, कै भी प्रकार की सिकवा शिकायत से परहेज करा। भागीरथी ते भी जमीन जायदाद मा पूरो हिस्सा किस्सा दिए जालू। भागीरथी की सौत अपना ही महत्मा जीवन बितौली। ग्वाली खेत का कोड़ा पुंगड़ा सब भागीरथी की जिम्मेदारी भली। पंचू की इन राय पर सब सहमत हुए गेन। जीवन मा पुंगड़ा पाटला घर बौन गोर बाछूर का दगड़ी भागीरथी अग्नि बढ़नी चाहिए। पर एक और दुर्भाग्य भागीरथी का जीवन मा अचानक ऐ पड़े। फौजी बनायण सीमा पर शहीद हुए गए। पेंशन पट्टा मा सौत को नौ छयो तो लोन तेल को जुगाड़ भी खत्म हो गयो। कभी कभी जिंदगी कतना विद्रूप क्रूर व कष्टप्रद हो जांदी। बाल विधवा गरीब वे बाबा लोन तेल नसीब नहीं छो। पर द्वी भय छया चौन भागीरथी की हिम्मत टूटन नहीं दे। भागीरथी उठ खड़ी हुए वीन साहस करे। पुंगड़ों में नाज गोर बाछुरों में मेहनत करे। घी दूध वी का जीवन मा हमेशा रहन। मुआरा पालियन शहद की मिठास भी सदनी रहे। मेहनत का दम पर अपना जीवन मा वीन रंग भरिया। जिंदगी पट्टी पर वापस आ गए। पर सौर्या से ज्यादा मैत की माया छई। सारा बार त्योहार वीते मैत मा खींच लांदी छया। भादों का महीना की पाती मंगशीर का महीने की बगवाल पूस का महीना का जप्तों का भंडारा सभी माँ भागीरथी की मौजूदगी होंद छई। भय भौजा भतीजा भतीजी सब भागीरथी को इंतजार करता छया। रतुड़ा बिटी ग्वालखेत गांव की दूरी 15 मील का आसपास होंदी। बाल विधवा भागीरथी की आस औलाद नहीं छई। वहाँ की कमी व अपना भतीजा भतीजों पर लाड़ प्यार करी पूरी कर दी छई। अपना भतीजों का अलावा पूरा गांव का नौनियाल भागीरथी का ओण पर खुशी मनांदा छया। फूफू फूफू की आवाज़ फूफू आगे सब वितें घेरी खुश होंदा छया। भय भौजा भी हमारी नंदा आगे हमारी नंदा आगे बोली तें वी का प्रति लाड़ जतौंदा छया। नंदाष्टमी पर रत्तूड़ा खंडूड़ा की पाती की अपनी अलग पहचान चाहिए। पाती का त्योहार मा सप्त नया लौरा लत्ता बनदा छया। बिचला चांदपुर मा कूड़ों मा लाल रंग को माटू लगदो छयो। फूफू को ओण से पहली माँ का दगड़ी रत्नेश्वर महादेव का ऐंच बिटी मटखाणी बिटी लाल माटू लेते घर की साज सज्जा होंद छई। पुराना झुलनों की घसण काई का अग्नि आज का बेस किमिती पेंटिंग ब्रश भी कुछ नहीं छन। फूफू का इंजार मा पूरी बाल मंडली कई दिन पहली बिटी इंतजार कर दी छई। माते मने करी स्कूल की भी छुट्टी कर देंदा छा। हम सब का लीडर ज्यादातर पीताम्बर दादा होन छा। वन तो दादा फौज मा छया पर पाती मा अक्सर छुट्टी लेकरी रतुड़ा ऐ जान छया। ऊँ का ओण से पूरो वातावरण खुशनुमा हुए जान छयो। खिलंदड़ मजा किया दादा पूरी बाल मंडली मा लोकप्रिय छया। तब खबरसार को एकमात्र साधन चिट्ठी पत्री होन छई। फूफू कवाली सब कयास ही लगोदा छा। पितामर दादा को आदेश चला फूफू आज आली। अनवाणी खेते पूरी बाल मंडली पुंगड़ों बिटी छलांग लगेते धागड़ चौंधार और पलगाड़ तक पहुंच जानी छई। पलगाड़ का घटमा फूफू को इंतजार होन छयो। सबकी नजर नहल का बाटा पर होन छे। कई मरतबा यन भी हुए कि वे दिन फूफू नहीं आ सके। पूरी टीम दिन भर इंतजार करी ते शाम का वक़्त वापस आ गई। सब मायूस निराश रुआस अभी ते घर ओन छया। फिर अगला दिन सुबेरी अनवाणी का बाद फूफू की प्रतीक्षा। पलगाड़ का घटमा एक एक पल को इंतजार। आज भी नहीं होने रे फूफू पीताम्बरदा की रुआसी आवाज। तभी चमत्कार हो गए। बंसी दादा अचानक दिखे। पूरी बाल मंडली चिल्लाण लगी फूफू आगे। ज्यादातर परखंडी की टीम होंदी छे। ज्यादातर फूफू का दगड़ा बंसी दादा ही ओन छा। उनकी अनुपस्थिति मा और लोगों ते ओन पर्दो छयो। बंसी दा की पीठ परे पिठवा और फूफू की पीठ पर कंडो यू पछाण छई। लंबी छरहरी फूफू हाथों मा धागुला करोणों पर मुरकुला गौला मा हासुली आंगड़ी और लवा को वस्त्र विन्यास। फूफू का खजाना मा सप्ते कुछ न कुछ होन छयो। मौसम और ऋतु का हिसाब से बसकाल मा काखड़ी मुंगरी कार्तिक मा औंदी।

खजाना मा होन छया। बाल मंडली की संख्या ज्यादातर चार पांच ही होन छई, पर कभी कभार 10-12 तक भी पहुंच जाती छे। कभी कभी भय भौजू ते गौड़ी और बाछी की समोण भी आंदी छई। जिमर से पहली बंसी दादा का आदेश पर घास पात की भी व्यवस्था होंदी छई। दावत छक्की ते घट बिटी घर की यात्रा शुरू होंदी छई। बंसी दादा का कुटियारा भी बंटदा छया। बंसीदा की कोली मा बाछी, उनका पिसने गौड़ी, कैमा घी की कमोली, कैमा दही की परोठी, के का हाथ पर लिंगुड़ा और कुछड़ा, कुछ न कुछ सब बच्चों का हाथ मा देन पड़ छो, नहीं तो रोण धोन को कार्यक्रम भी होन छो। ई वजह से फूफू का जितना भी कुटियारा मुटियारा छया, वही तरह से वो बनिया होन छा। चौंधार में सबसे पहली बड़ा जी जयसिंह जी भंडारी बोल दो छया। छोटी आगे फूफू को प्यार को नो छोटी भी छयो, बैठ थोड़ी देर सुस्ते ली, उनका वास्ता भी फूफू कुछ न कुछ समोण लोंदी छे। काफिला अग्नि बढ़नी ते धागड़ पहुंच दू छयो, तब वीर देवता की मंडोली फूफू की यात्रा को महत्वपूर्ण पड़ाव होंद छयो। नैनी को मंगरो मंगराते भेंटण का वक्त वी का गलवाड़ों पर आंसू की बूंद कई बार दिखेंदी छई। जब तक फूफू मंगरो भेंटदी छई, तब तक बंसीदा अपनो पतब्यूड़ो को आनंद लेंद छा। भागीरथी आगे की आवाज आंदी छे, असली त्योहार तो प्रखंडी मा शुरू होन छयो। भाई भौज तो बोलदा छया कि हमारी नंद आगे, हमारी नंद आगे। पूरी प्रखंडी मा चहल पहल और त्योहार को माहौल बन जान छो। फूफू ज्यादातर पाती का त्योहार मई मैत आंदी छई। भादों का महीना की नंदाष्टमी हरियाली खुशहाली काखड़ी मुंगरी साटी झंगोरा कौणी को त्योहार होंद। रोट और ब्यूड़ा ब्यूड़ा गेहूं ते अंकुरित करीते बढ़ाई जांद। फूफू नंदा का जागर भी अपना सुनीला कंठबिटी गानी छई। नंदा नैनी का गीत होन या बच्चों की लोरी या गढ़वाली खुदेड़ गीत, फूफू का कंठबिटी कांस की थकुली जन फुरदा छया। वल

0: फुफू का सुरीला कंठ बिटी जब यू गीत फुर्दू छई तो पूर्व वातावरण गमगीन भी जान छयो। आज महसूस कर दू तो शायद अपना शहीद बरनारायण की याद भी ये गीत माँ फुफू की घुली होंदी छई। आनो पखवाना या लोक जीवन की कथा फुफू का भंडार माँ भरपूर छया। बच्चों की टोली घेरी ते फुफू माँ फरमाइश कर दी छई। जीतू बगवाल और एड़ी आंचरियों की कथा नौ बेणी नागिना परिवार की कथा रामी बौराणी वीर माधो सिंह भंडारी लोधी रिखोला वीर भट्टू की कथा अपनी की औलाद निहोण का कारण मी की सारी ममता अपना भतीजा भतीजों पर उमरदी छई। घुगुती बासुदी क्या खांदी दूध भाती गांधा भगत मी की आवाज माँ एक अदृश्य पीड़ा होंदी छई। शायद अपनी औलाद की कमी इन लोरी गहते पूरी कर दी होली। वी की पीड़ा और संघर्ष यूं ऊंचा ऊंचा पहाड़ों का जत्न छन। आम पहाड़ी महिला को संघर्ष और वेदना फूफू माँ दिखेंद छई। अब वह ई दुनिया में नीच पर आज जब भी पाती होंदी तो फूफू की याद ऐ जांदी। लोक जात राज जात माँ हजारों नंद की गाथा और कथा दबी छन। फूफू का किरदार का द्वारा ऊँ सभी नंदाओं ते हमारो सत सत नमन।
1: श्रोता बंधु अभी अपन सुन छोटी फूफू या गढ़वल कहानी कहानीकार चा श्री शंभू प्रसाद रतूड़ी
2: जी। जोन ये कहानी पहले नहीं सुन वालू था भी आज फिर से अपने सभ्य परिवार लोग यानी कि अपने फूफू वगैरह जो बिचार सब याद है जाली।
1: और लोग मोबाइल ऐप पर तो सुन दे
2: जी
1: लेकिन जो रेडियो पर होन चैन छा उन्नी हुए सब यहाँ वास्ता हमन यो तजवीज कार कि भाई ये कहानी दोबारा सुनाई जा और उन भी ब्याह कार्यक्रम में अमर खारियों श्रोताओं ने कहानी तो पसंद बिकार छा
2: जी।
1: तो चला साहब अब इधर हिट लियो ला फिर छुई बत लगो ला लेकिन ये बात हम शामिल करना छुआ कुमाऊनी गीत स्वर्च मनोज सिंह को।

0: भाई बंधु, हम आकाशवाणी का 90 साल मनाना चाहूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ो उत्सव छ हमारे खातिर। किले की 90 और 100 बड़ी बात हो बला।
1: जी
0: तो 90 सालों की यही प्रसारण यात्रा में हमारा जितना भी दगड़िया हमारे दगड़ रहे हूँ सभी तक बोला जुगराज रहे हैं कि हमारे दगड़ कना छिन अग्निविकरण। हाँ, इन्ना कि बस हुई गया। अभी तो हम 100 साल में जो दिन होला तो वे दिन और बड़ो कौथी कला।
1: बिल्कुल
0: और तब आप तो लागल के हाँ साहब, एक इन प्रसारण यात्रा जो कि बहुत दूर तक चली आ गया।
1: जी
0: आप तो बतौला कि अपना बात विचार ये बाबत भी आप जरूर हमारे दगड़ साझा करें कि आकाशवाणी का जो 90 साल छनी
1: जी
0: ई प्रसारण यात्रा में आप कक्ष है, तो
1: बिल्कुल।
0: आप अपना बात विचार हम तो ये पता पर लिखा।
1: हमर पता जो चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com।
0: और अब चल दा जौनसार का छोड़। आवा सुन दा राहुल वर्मा और दगड़ियों का स्वर्मा यो जौनसारी लोक गीत।

0: श्रोताओं, राहुल वर्मा और दगड़ियों का सुरमा, अभी आपन सुनिए सुंदर सी जौनसारी गीत।
1: और अब आप तो बतौला कि कखने जान अजी होर छुई आप दगड़ लगने वो भी कामक छुई शुरुआत बहुत जोरदार कह रहे छमन तो अजी होर छुई भी लगोला। लेकिन
0: जी
1: ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल। आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल। आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है उद्देश्य। पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा शुरू। और उधम सिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन एकीकृत प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की ई बुक सहित अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्र छात्राओं को किताबों को लेकर कोई दिक्कत न हो। योजना के ठोस क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं निदेशक उच्च शिक्षा को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना के तहत छात्र छात्राओं और शिक्षकों को एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्य पुस्तकें, उत्कृष्ट लेखकों की किताबें, शोध पत्र और अन्य डिजिटल सामग्री एक क्लिक पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई पुस्तकालय योजना का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है, ताकि आर्थिक और भौगोलिक कारणों से कोई भी छात्र किताबों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान रूप से मिल सकेगा और छात्र अपनी सुविधा अनुसार आसानी से विषयवार पुस्तकों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ तकनीकी शिक्षा, आयुष व चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभाग, निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
1: पौड़ी जिले में विकास कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पौड़ी प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि पोर्टल के जरिए सभी विभागों की प्रगति पर निरंतर नजर रखी जा सकेगी, जिससे कार्यों में गति के साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेही और पारदर्शी बनाने के साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
3: पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकताएं नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा आज से शुरू हो गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से नागरिक अब हिंदी या स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों तक तुरंत भेजा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता और शासन के बीच

0: संवाद को मजबूत बनाना है।
1: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ एक हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा। तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें हैं उनको यहाँ दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही उसमें प्राथमिकता रहेगी।
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को ईंधन की बचत के लिए प्रेरित करते हुए सप्ताह में 2 दिन पैदल या साइकिल से न्यायालय परिसर आने का आह्वान किया गया। अभियान को व्यावहारिक रूप से अपनाते हुए प्राधिकरण की सचिव ममता पंत अपने निवास से लगभग पैदल चलकर न्यायालय परिसर पहुंची। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य आम जन में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
2: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स, सारे अधिवक्तागण, सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आए या फिर साइकिल से कोर्ट आए। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाए। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
0: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में इन दिनों महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को अगरबत्ती, धूप और पारंपरिक दिए बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। प्रतिभागियों को केवल अगरबत्ती और धूप बनाना ही नहीं सिखाया जा रहा बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों से आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियों के उपयोग की जानकारी भी दी जा रही है। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादियान ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए स्वरोजगार ही सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कम पूंजी लगाकर आसानी से काम शुरू किया जा सके।
3: हमारी RCT जो है अलग अलग तरह के जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है जिसमें कम पूंजी में जो है युवक युवती जो है अपना स्वरोजगार कर सके। अभी जो हमारा चल रहा है धूप अगरबत्ती का चल रहा है 12 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें जो है 10,000 रुपए से जो है अपना स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है और अगर मशीने भी जो है आधुनिक मशीने लगाएंगे तो 50,000 से 1,00,000 तक जो है वो आधुनिक मशीने भी आ जाती है।
0: वहीं लाभार्थी जानकी जोशी ने बताया कि प्रशिक्षण में उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वे भविष्य में स्वरोजगार शुरू करने की योजना बना रही हैं।
4: हमने यहाँ पे 3-4 प्रकार की धूप बनानी सीखी, मिट्टी के दिए बनाने सीखे, अगरबत्ती सीखी, जिससे हमें नया अनुभव प्राप्त हुआ है। अगर हमें मौका मिलेगा तो आगे इसको हम आगे ले जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई पुस्तकालय योजना लागू, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है उद्देश्य। पिथौरागढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेलो हेल्प सेवा शुरू और उधम सिंह नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचारों का बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा मिछाओ आप दगड़ रुचि रावत। श्रोताओं, भारत विविध संस्कृतियों को देश और उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति अपनी सादगी, परंपराओं और लोक कलाओं को विशेष पहचान रखत। यख की संस्कृति प्रकृति का बिजान नजीक, पहाड़ों का रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, मेला, त्योहार और लोकगीत लोगों को जीवन को अभिन्न हिस्सा ज। पहाड़ों का लोकगीत केवल गीत नहीं हो दिन बल्कि वो लोगों की भावनाओं और जीवन संघर्ष की कहानी भी बतन दिन। दगड़ियों, उत्तराखंड मा झोड़ा, चांचरी, मांगल गीत, जागर और बधाई गीत बिजान लोकप्रिय छन। श्रोताओं, उत्तराखंड की धरती खुणा देव भूमि कही जान, किले की इक कण कण मा लोक परंपराएं, आस्था और संस्कृति बसद। यूं ही परंपराओं में एक विशेष स्थान च जागर को। जागर केवल गीत संगीत नहीं बल्कि लोकास्था इतिहास और देव संस्कृति को जीवंत रूप च। ढोल दमा डोंड थकले की गूंज मंत्रों जन पंक्ति और लोक गायकों की आवाज पूरा वातावरण थे भक्तिमय बड़े दिन दिन। जागर माँ देवी देवताओं पीरों और लोक नायकों को स्मरण करे जान। श्रोताओं आधुनिकता का ये दौर माँ कई लोक कलाएं धीरे धीरे कम होन जानी। इले हम सभी थे अपना अपना स्तर माँ अपनी संस्कृति और लोक कलाओं थे बचाने की कोशिश कर जानी। श्रोताओं बात अगर जागर की होनी चाहे तो आवा कार्यक्रम में शामिल कर दें एक जागर जमा स्वर दियों चा अमित कुमार सागर को।

0: श्रोताओं, अमित कुमार सागर का गया ये जागर का दगड़ी ही बगत वेगी उत्तराखंड का गडोलीमा प्रादेशिक समाचारों को तो आवाज सुना समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटाई गडोलीमा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार, प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व हो गया। 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण थे लेकिन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। पौड़ी जिला में विकास कार्यों थे पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बाण के दिशा में प्रशासन ने पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करी। और चमोली जिला में रुद्रनाथ यात्रा को शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली थे। श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ रखे गया 18 मई खुण खुलला रुद्रनाथ मंदिर के द्वार। अरब समाचार एक छोर बट, प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व हो गया। गणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा इकट्ठा करी। ये लिहाज से 86 लाख आबादी थे कवर करे गया। एक कार्य खुण 24 मई तक समय निर्धारित करे गया। ये संबंध में भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु दगड़ प्रदेश में जनगणना कार्य की समीक्षा करी। उन वर्चुअल बैठक करी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों बटे फीडबैक लिया। श्री नारायण ने बोली कि जनगणना के कार्य में आंकड़ों की गुणवत्ता का सबसे ज्यादा अहमियत किले की ये पर परिसीमन से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का आधार टिक्यो छ। उन सभी से आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने खुण डेटा की जांच पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील करी। दगड़म उम्मीद जताए कि उत्तराखंड में शेष बचा एक तिहाई कार्य थे भी समयबद्ध ढंग से पूर्व करे जालू।
2: जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य चल रहा है और उसके लिए एक अवधि निर्धारित होती है। तो उत्तराखंड में अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है, तो अभी 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाना है। सभी जगह कार्य चल रहा है, करीब 2/3 कार्य हो गया है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अगले 10 दिन में बचा हुआ 1/3 काम भी कर लेंगे।
1: पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण थे लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आह्वान के बाद प्रदेश में भी सरकारी विभाग सक्रिय होन दिखेना छन। ये क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने भी झटझटाक प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत थे लेकिन कदम उठाना शुरू कर दिया। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू करी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के दौरान साझा वाहन अपनाने को रोस्टर जारी करेगा, जैसे अनावश्यक ईंधन खपत थे कम करे जय साक। यहाँ के अलावा कार्यालय के आसपास रहने वाला कर्मचारियों थे साइकिल से या पैदल कार्यालय आना खुणों प्रेरित करे जानो च। उन बोली कि ऊर्जा संरक्षण थे लेकिन कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू करेगिन ज्या को उद्देश्य बिजली और ईंधन दुयों को बचत करण च।
3: हम लोगों ने रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में अवैध निर्माण में सीलिंग में लगे हैं, एक सेक्टर के लिए की गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और रोस्टरीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से आज जिला और सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का शुभारंभ करेगा। यह अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं थे ईंधन के बचत खुण प्रेरित करते हुए सप्ताह में 2 दिन पैदल और साइकिल से न्यायालय परिसर आने का आह्वान करेगा। अभियान तय व्यावहारिक रूप से अपने की प्राधिकरण के सचिव ममता पंत अपना निवास से लगभग पैदल चली के न्यायालय परिसर पहुंचीं। उन्होंने बोली कि 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान का उद्देश्य आमजन में ईंधन और पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना च।
4: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स, सारे अधिवक्तागण, सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आएं या फिर साइकिल से कोर्ट आएं। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाएं। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
5: समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: पौड़ी जिलामा विकास कार्यों थे पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल कर दवे पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू कैरी। यू अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिला में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करलू। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बोली कि पोर्टल का जरिए सभी विभागों को प्रगति पर निरंतर नजर रखे जा सकत, जहाँ से कार्य में गति को दगड़ दगड़ गुणवत्ता भी सुनिश्चित हुई। उन बताया कि यू पोर्टल प्रशासनिक कार्य प्रणाली थे अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के दगड़ ही विकास कार्यों को गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभालू।
6: पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी बात कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
1: चमोली जिला में स्थित रुद्रनाथ मंदिर का द्वार 18 मई खुणो श्रद्धालु खुण खुले जाला। ये बीच भगवान रुद्रनाथ का यात्रा का आज शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हो गया। रुद्रनाथ का मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सुबेर पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर के गर्भगृह से भगवान रुद्रनाथ का चल विग्रह उत्सव डोलित हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन खुण मंदिर परिसर में रखे गए। उन्होंने बताया कि आज अरभोल उत्सव डोली श्रद्धालुओं को दर्शन खुण मंदिर परिसर में रैली, 17 मई खुण डोली रुद्रनाथ खुण प्रस्थान कैरली और 18 मई खुण रुद्रनाथ मंदिर के द्वार श्रद्धालु खुण खुले जाला।
7: आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
1: पिथौरागढ़ जिला में आम जनता की समस्याओं को झटझटाक समाधान खुण हेलो हेल्प सेवा आज बटे शुरू हो गया। यहाँ खुण हेल्प लाइन नंबर 9458144651 जारी करेगा, जय पर कोई भी नागरिक अपनी समस्या दर्ज कर सकत। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन करी। यह अवसर पर उन्होंने बोली कि जिलक कह भी दूरस्थ क्षेत्र से नागरिक अब हिंदी या स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकला। हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों थे संबंधित विभागों तक तुरंत भेजे जालू और प्राथमिकता के आधार पर उनको समाधान करे जालू। उन्होंने बोली कि प्रशासन का उद्देश्य जनता और शासन के बीच संवाद थे मजबूत बाण च।
8: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ एक हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा, तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें हैं उनको यहां दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही उसमें प्राथमिकता रहेगी।
1: आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर से। प्रदेश में मकानों को सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 70% तक पूर्व, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल के बचत और ऊर्जा संरक्षण थैले की मसूरी। देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। पौड़ी जिला में विकास कार्यों थे पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने की दिशा में प्रशासन ने पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करी। और चमोली जिला में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली थे श्रद्धालुओं को दर्शनार्थ रखे गया। 18 मई खुण खुलला रुद्रनाथ मंदिर के द्वार। यहाँ का दगड़म गढ़लीमा प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त होंदु। नमस्कार।
0: श्रोताओं समाचारों का दगड़ी ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम भी में संपन्न होंद अनुमति दिया। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7 बज रहे हैं, प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार, सभी किसान साथियों का स्वागत है आज के कृषि जगत कार्यक्रम में। और आज आपके साथ मैं हूं आपकी साथी मीरा नेगी। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और साथ ही आप अपने सभी कृषि कार्यों को भी समय से पूरा कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे अरहर की खेती के बारे में। अरहर एक दलहनी फसल है और हमारे देश में लगभग हर घर में इसका उपयोग भी किया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसकी खेती करना हमारे किसानों के लिए लाभदायक है। साथियों, आज के समय में हमारे सभी किसान एक ऐसी खेती करना चाहते हैं जिसमें लागत कम लगे और उन्हें लाभ अधिक मिले, और अरहर की खेती हमारे किसानों के लिए एक ऐसा ही अच्छा विकल्प है। अरहर दाल की बाज़ार में हमेशा मांग बनी रहती है, साथ ही और मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाने में मदद करता है, और यही कारण है कि हमारे किसान साथी इसकी खेती करने में अब रुचि भी दिखा रहे हैं। जून और जुलाई के महीने में इसकी बुवाई की जाती है। बारिश शुरू होते ही किसान इसकी बुवाई भी कर सकते हैं। इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी बुवाई की, तो सबसे पहले आप खेत की 2 या 3 बार अच्छी जुताई करें। उसके बाद खेत को समतल बना लें। खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद भी डालनी चाहिए। साथियों, खाद डालने से मिट्टी की ताकत तो बढ़ती है, साथ ही पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है। इसमें आप जल निकासी का उचित ध्यान रखें, यानी कि खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना फसल को नुकसान भी हो सकता है। बुवाई के लिए हमेशा अच्छे और रोगमुक्त बीज का ही चयन करें। बीज को आपको कतारों में ही बोना चाहिए और कतार से कतार की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। साथियों, अभी इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक संगीतमय विराम और सुनते हैं ये गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, इसी गीत के साथ अब समय हो गया है भेंटवार्ता का, जिसमें आज का विषय है आम और लीची के बागों की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मीनाक्षी जोशी और इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास

0: बाद अब धीरे धीरे वो पकने भी लगेंगे। तो आमतौर पर किस तरह की समस्याएं हैं जो इन दिनों पर ज्यादा देखी जा सकती हैं?
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। पहले आम से शुरू करना चाहूंगी।
0: जी
1: जैसा कि देहरादून में आम और लीची दोनों के बगीचे बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट होने की वजह से आम और लीची के बगीचों में कमी आई है। तो आम पे बात करें तो जितना भी हमारा आम है, क्योंकि जो इंडिया है वो आम का एक प्रमुख उत्पादक देश है हमारा
0: जी
1: भारत, तो जो बीमारियां हैं उनसे निदान और उस बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आम में जो समस्याएं आती हैं, इसमें तीन तरीके की समस्याएं हम देखने को मिलती हैं। पहली समस्या है कि कीड़ों का लगना, आम के
0: जी
1: फलों में कीड़ों का लगना, और दूसरी समस्या है हमारी बीमारियों का लगना, और तीसरी कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आम में होते हैं जिनका उपचार समय से किया जाना अति आवश्यक होता है।
0: जी
1: तो पहले कीटों से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी मई का महीना आ चुका है और बहुत सारे कीड़े हमारे फलों को अभी खाने की कगार पर होंगे, तो ये ऐसा लगता है। तो इस समय सबसे पहला, जैसे बताती हूँ, पहला कीट है आपका मैंगो सिला, जिसे साइलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा कीड़ा होता है और आपने देखा होगा कि गांठ बना देता है टहनियों में, और ब्राउन कलर की अंदर को घुसी हुई गांठें इसमें बनती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम प्रति ml थाइमेथाजोम और 2 ml प्रोफेनोफॉस को मिक्स करके 21-21 दिन के अंतराल पे 3 बार छिड़काव किया जाना चाहिए। इसका छिड़काव इन्फ्लोरेसेंस सेट होने के और उसके 15 दिन बाद किया जा सकता है।
0: अच्छा
1: उसके बाद एक कीड़ा होता है आपका मिली बग कहते हैं, जिसको आपने देखा होगा, एक कॉटनी सी ग्रोथ होती है, सफेद सफेद रंग का कीड़ा होता है। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये पाया जाता है आपका फरवरी से लेके मई के महीने तक ये पाया जाता है, और इसके जो लार्वा होते हैं वो दिसंबर के महीने में बाहर निकलते हैं जमीन से। तो इसका एक बहुत ही अच्छा उपचार है, उसमें हम क्या करते हैं कि एल्काथीन की एक पट्टी होती है 20 से 25 सेंटीमीटर की, उसको पहले तो हम जो नीचे का भाग है तने का उसको पूरा अच्छे से उसकी बार्क को छील लेते हैं,
0: जी
1: और उसके बाद उस पे ग्रीस की 5 सेंटीमीटर की एक लेयर लगाते हैं ग्रीस की, उसके ऊपर 20 से 25 सेंटीमीटर की एल्काथीन शीट की लेयर लगाते हैं और उसको चारों ओर से कवर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिली बग का जो कीड़ा होता है, जो लार्वा होता है, वो बढ़ नहीं पाता है ऊपर की ओर, तो उससे क्या होता है कि पौधे को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। अदरवाइज क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी है और उसका रस चूसती है फलों का, तो जिससे पेड़ों को भी नुकसान होता है, फलों को भी नुकसान होता है। और हमें ये भी करना चाहिए, जो वहाँ मिट्टी वाला जो एरिया है जहाँ पे लार्वा रहता है, अंडे देता है, वहाँ पे नवंबर दिसंबर के महीने में हमें खुदान करके मिथाइल पैराथियन डस्ट का प्रयोग करना चाहिए, उससे उपचार करना चाहिए। और
0: जी
1: अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको लगता है कि मिली बग की समस्या है, तो इमिडाक्लोरपिड 8 ml प्रति 10 लीटर पानी में उसका छिड़काव करना चाहिए। और जब फल आ जाएं, अगर फल
0: जी
1: आने के बाद भी, जैसे अभी का टाइम है, फल डेवलप हो रहे हैं, अगर फल आने के बाद भी आपको लगता है कि हो रहा है, क्योंकि फल में पेस्टिसाइड का प्रयोग करना बहुत ज्यादा उचित नहीं माना जाता है, तो आपको नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करना चाहिए, 4% का, 4 ml प्रति लीटर पानी में उसको मिलाकर करें। और
0: जी
1: इसी तरीके से विकास जी, क्योंकि बहुत सारे कीट
0: कीट
1: लगते हैं
0: नहीं
1: आम में,
0: आते हैं
1: बहुत
0: जी।
1: सारे कीट आते हैं, जैसे एक शूट बोरर है, स्टेम बोरर्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी स्टेम्स होती हैं या जो शूट्स होती हैं उसमें छोटे छोटे होल्स कर देते हैं, और उससे चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है और उसमें कुछ बुरादा सा जमा हो जाता है। आपने देखा
0: अच्छा
1: होगा, बुरादा सा लगता है, कई पुराने पेड़ों में भी कुछ बुरा सा निकलता हुआ लगता है बड़े, तो लोग कहते हैं दीमक लग गई, दीमक लग गई।
0: जी।
1: उसमें यह है कि आपको जो उसके छेद हैं उसको पूरा हमने या तो मिट्टी से लेप कर दें, या फिर अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल से उसमें रुई से लगा के उसको बंद करके मिट्टी से पूरा उसको कवर कर देना चाहिए। और मई माह में पेड़ के तने पर हम लोगों ने, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है आपको शूट बोरर आया है, तो क्लोरपाइरीफॉस लें 1 ml,
0: अच्छा
1: नीम का तेल लें 10 ml, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें 4 ग्राम, 1 लीटर पानी में मिला के उसका पेस्ट पूरे पेड़ पे लगा दें। उससे जो इसकी जो कीट की जो सुंडी है और जो इसके कीड़े हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पौधे को। इसी तरीके से अब जैसे अभी फल डेवलप हो रहा है, तो अभी फ्रूट फ्लाई का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। एक ब्राउन कलर की आपने देखा होगा मक्खी जो घूमती रहती है पौधों के चारों और फलों के चारों ओर, तो
0: जी
1: उसके लिए क्या है कि हमें फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग करा जा सकता है। जैसे हम मिथाइल यूजिनॉल के ट्रैप को लगाएं, इसमें क्या करना पड़ता है हमको, घर पे ही हम एक ट्रैप बना सकते हैं। उसमें हमने करना है कि एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उसमें 2 से 3 होल करेंगे,
0: अच्छा
1: और हम एक जगह पे एक लिक्विड तैयार करेंगे जिसमें हम 60 ml इथाइल अल्कोहल डालेंगे, 40 ml मिथाइल यूजिनॉल डालेंगे, और 20 ml उसमें मेलाथियोन जो एक कीटनाशक है वो डालेंगे। उसका 3 से 4 ml लेके जो कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े बना के उसमें उसको डिप करके एक तार से उसमें लटका देंगे, जो छिद्र हैं उसके बनाए हुए हमने बोतल के, और उस

0: क्या होगा, उसको 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर वहां पे रख दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में 25 ऐसे ट्रैप हम लोगों ने लगाने चाहिए, और 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर और छायादार स्थान पे हम इनको लगाएंगे, इन ट्रैप्स को। तो उसमें क्या है कि जो फल मक्खी है वो अट्रैक्ट होगी उसकी ओर, क्योंकि वो एक फेरोमोन ट्रैप। बाद में आप देखेंगे कि बोतल में बहुत सारे कीड़े मरे हुए पाए जाएंगे। तो ये फ्रूट फ्लाई का बहुत ही अच्छा निदान माना जाता है।
1: जी
0: और एक मैंगो हॉपर, मैंगो हॉपर की भी बहुत ज्यादा समस्या है हमारे यहाँ। आम होता है, आपने देखा होगा, बहुत चिपचिपा सा, बिल्कुल ब्लैक कलर का, काले रंग का, चिपचिपा सा कुछ चिपक गया है उसमें, ऐसा लगता है। और बगीचों में आप जाओगे तो मतलब एक अजीब सी घूं घूं घूं घूं की आवाज आती है
1: जी जी
0: बगीचे
1: जी
0: में।
1: जी
0: तो ये मैंगो हॉपर, इसे फुदका रोग भी कहते हैं, इसकी वजह से आती है। तो इसका उपचार यही है कि अगर फल नहीं आए हुए हैं, फल मैच्योर नहीं हुए हैं, तब तो आप इमिडाक्लोपिड 8 ml 10 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करें। और
1: जी
0: अगर फल आ चुका है तो 4 ml प्रति लीटर पानी में आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो काफी विस्तार से आपने कीटों के बारे में जानकारी दी कि कौन कौन से कीट आम के बाग में आ सकते हैं। अच्छा, कुछ रोगों की बात करें तो कौन से वो रोग हैं जो इन दिनों हमारे बागों को प्रभावित कर सकते हैं?
0: विकास जी, आम में जैसे रोग हैं, जैसे पहला रोग है एंथ्रेग्नोज, एक रोग है। इसमें क्या होता है कि आपके पौधे की सभी जो भाग होते हैं उसमें गहरे भूरे रंग के कुछ धब्बे से हो जाते हैं, उसकी बौर मुरझाने लगते हैं, फल टूटकर गिर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्डो मिक्सचर होता है, बोर्डो मिक्सचर ऐसे बनाया जाता है जिसमें हमने क्या करना है, बोर्डो 1 किलोग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, जिसे हमने 50 ml 50 लीटर पानी में डालना है। 1 किलो
1: अच्छा
0: कॉपर सल्फेट को 50 लीटर पानी में डालेंगे, ऐसे 1 किलो चूने को 50 लीटर पानी में अलग से डालेंगे, फिर उन दोनों को धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे करके मिलाएंगे, तो उससे हमारा एक बॉर्डो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। उसका हम 2 से 3 छिड़काव करेंगे 15 से 20 दिन के अंतराल पर।
1: जी
0: तो उससे क्या होता है, आपका एंथ्रेग्नोज जो बीमारी है वो दूर होती है। और इसमें अगर हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा बीमारी है और निदान नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, तो फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज करेंगे 3 ml प्रति लीटर पानी में, तो ये यूज करेंगे। और किसी भी बीमारी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो संक्रमित टहनियां हैं उनके काट छाट करें, उसको अच्छे से दबाएं, या तो मिट्टी में दबा दें, या टहनियों को जला के भी हम उसके इफेक्ट को, उसको ट्रांसमिशन को, उसके बढ़ने को रोक सकते हैं।
1: जी
0: और एक बीमारी है आपका पाउडरी
1: जी
0: मिल्ड्यू, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ पाउडर सा फलों में दिखता है, पेड़ों पे भी दिखाई देता है, पत्तियों पे भी दिखाई देता है। तो इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है, वेटेबल सल्फर का प्रयोग किया जाता है, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करना चाहिए, या सल्फेक्स करके एक दवाई आती है उसका छिड़काव करना चाहिए। और 3 स्प्रे किए जाते हैं मोस्टली किसी भी बीमारी में, एक तो फूल खिलने से पहले स्प्रे किया जाता है, फल स्थापित होने पर स्प्रे किया जा सकता है, और फल अगर मटर के दाने के बराबर हो जाए तो
1: जी
0: छिड़काव किया जाना चाहिए। बीमारियों की बात करें तो ब्लैक टिप, अब जैसे फल आ गया है और अगर अभी थोड़े दिनों बाद बरसात होगी, बहुत कुछ होगा, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, बरसात होगी, तो हमारा जो फलों का जो सिरा है वो थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगता है। ये वाला जो बीमारी नजर आती है ये जहां पे ईंट के भट्टे होते हैं वहां पे ज्यादा नजर आती है।
1: अच्छा
0: तो ये है कि उससे थोड़ा सा दूर हमने बगीचों को स्थापित करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। और दूसरा बोरेक्स होता है आपका, 0.6%, उसका छिड़काव हम लोगों ने करना चाहिए। इसके अलावा एक काली फफूद, ब्लैक मोल्ड करके एक बीमारी होती है, जो आपने देखा होगा कि फलों में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, बड़े चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी कीड़े ने वहां पे कुछ चिपचिपा पदार्थ बनाया है तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है
1: जी
0: फंगस का, तो ये फंगल डिजीज हो जाती है। इसके लिए भी हम लोगों ने इमिडाक्लोपिड 3 ml प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। ऐसे फ्रूट रॉट है जिसमें पौधे फल सड़ने लगते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, पूरा संकन स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसमें भी हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव किया जाना चाहिए।
1: जी आम में अक्सर हमने देखा है कि फल गिरने भी लगते हैं या फल फटने लगते हैं।
0: फल गिरने और फल फटने की समस्याओं के तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये रहता है कि बगीचा जब हमने लगाया है, जब इनिशियल स्टेज है, तब नमी को हमने संतुलित नमी का प्रयोग नहीं किया है,
1: अच्छा
0: नमी हमारी असंतुलित है पौधे के लिए, और तापमान अचानक से हमारा बढ़ जा रहा है, और जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स का असंतुलन भी इसका बहुत बड़ा कारण है जो फलों का गिरना है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, पोषण तत्वों की कमी भी इसका कारण हो सकता है, या बीमारियों की वजह से भी फल गिर जाते हैं। तो
1: अच्छा
0: इसके लिए क्या है आपका कि मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आप घास की मल्चिंग भी कर सकते हैं, आप पॉलीथीन शीट की भी मल्चिंग कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी नमी बरकरार रहेगी। और दूसरा जो इसमें हम कर सकते हैं, 4% कैल्शियम नाइट्रेट और 50 mg पर लीटर बोरिक एसिड का छिड़काव अगर हम करेंगे तो फलों का गिरना कम होगा, क्योंकि उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देता
1: जी,
0: है।
1: तो ये छिड़काव हमें

0: पहले करना होगा।
1: पहले करना है ये छिड़काव, हमें 3 बार करना चाहिए छिड़काव। एक तो हमें फूल आते समय करना चाहिए, मटर के दाने के बराबर जब फल हो जाए हमारा, या फिर अखरोट के दाने के बराबर हो जाए। इसके अलावा हमें 15 से 20 ml प्रति लीटर NA का छिड़काव भी करना चाहिए। नेप्थिलिन एसिडिक एसिड है, ग्रोथ हार्मोन है, इसका छिड़काव करने से भी हम फलों के गिरने को बचा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, लीची में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं अगर हम रोगों और कीटों की बात करें?
1: लीची में भी पहली समस्या तो फलों का गिरना ही है, जिसके बारे में मैंने आप, इसके अलावा वही कैल्शियम नाइट्रेट और बोरिक एसिड, बोरेक्स दोनों का स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा एक फ्रूट बोरर करके होता है, फल बेधक, आपने देखा होगा, उसके अंदर छोटे छोटे से व्हाइट कलर, जब आप लीची खाते हैं तो व्हाइट कलर का एक लार्वा सा निकलता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: वो यही है कि फल भेदक जो कीड़ा है फ्रूट बोरर उसका है। तो इसके लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट है ट्राइकोग्रामा चेलोनिस, उसका 50,000 ND प्रति हेक्टेयर का हमने प्रयोग करना चाहिए। कुछ फेरोमोन ट्रैप्स भी आते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर लगता है आपको नहीं, बहुत ज्यादा कीड़ा बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और अब हमारी क्रॉप पूरी डैमेज हो जाएगी, तो हम फ्लूबेंडियामाइड 1 ml 5 लीटर पानी में, या स्पिनोसाइड 1.5 ml 5 लीटर पानी में एक एक हफ्ते के अंतराल पे 2 बार छिड़काव करेंगे, तो इस कीट का प्रबंधन किया जा सकता है।
0: जी
1: और एक है माइट, ब्राउन ब्राउन कलर की लीची में देखा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है, माइट की वजह से ही होती है। तो इसके लिए सल्फर फंजीसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, वेटेबल सल्फर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के से छिड़काव किया जाएगा, तो जो भी संक्रमित टहनियाँ हैं वो उसमें बचाव हो पाएगा।
0: जी छिड़काव के समय डॉक्टर साहब किन सावधानियों का हमारे जो किसान साथी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए?
1: छिड़काव के समय सावधानियां तो बहुत ज़्यादा बरतनी चाहिए। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग करें, सबसे पहले तो हम लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए कि हम केमिकल जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या हमारे फंजीसाइड्स हैं उनका प्रयोग करें। हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। उसके लिए हमें फेरोमोन ट्रैप्स, लाइट ट्रैप्स, इनका इनिशियली प्रयोग करना चाहिए। और जब अत्यधिक मात्रा में लगता है नहीं, अब मैनेजेबल नहीं हो पाता, तब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत तब हमें केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। और सावधानियां, अगर आप केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो आप मास्क पहने, अपनी पूरी बॉडी को कवर रखें, और ये ध्यान रखें कि जब बारिश ना होने वाली हो उस टाइम पे छिड़काव करें, सुबह या शाम ही पेस्टिसाइड का छिड़काव करें।
0: तो डॉक्टर मीनाक्षी जोशी, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके साथ हुई कि किस तरह से जो हमारे किसान साथी हैं आम और लीची के बागों की देखभाल कर सकते हैं और अच्छा लाभ वो ले सकते हैं। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसमें आज का विषय था आम और लीची के बागों की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान। जानकारी दे रही थी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी और इनसे बातचीत कर रहे थे विकास चमोली। साथियों, उम्मीद है आपने इस भेंटवार्ता को ध्यान से सुना होगा और आप इस जानकारी से लाभ भी जरूर उठाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं हम अरहर की फसल की। अरहर की फसल साथियों को अरहर की फसल को अधिक पानी की जरूरत नहीं होती है साथियों, लेकिन अगर बारिश लंबे समय तक नहीं होती है तो हल्की सिंचाई जरूरी करनी चाहिए। समय समय पर निराई और गुड़ाई करना चाहिए, खरपतवारों को निकाल कर नष्ट कर दें, इससे पौधों को पर्याप्त हवा और पोषण भी मिलता है और फसल भी अच्छी बढ़ती है। साथियों, अरहर की फसल में फली छेदक कीट सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीट माना जाता है, और अगर आपको खेत में रोग या कीट दिखाई दें तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। आप जैविक उपायों को अपनाकर भी अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। आप नीम कीटनाशक का स्प्रे करके भी नुकसान से बच सकते हैं। साथियों, अरहर की खेती हमारे किसानों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। इसकी दाल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। ईंधन के रूप में इसके पौधों की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। अरहर की जड़ों में नोड्यूल बनते हैं साथियों, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में छोड़ते हैं। फसल चक्र अपनाकर आप अगली फसल के नाइट्रोजन का उपयोग भी और लाभ भी ले सकते हैं। साथियों, अरहर की खेती किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है, और अगर सही जानकारी और मेहनत के साथ हमारे किसान साथी इसकी खेती करें तो वे अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब सुनते हैं अगला गीत।

साथियों, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और अब अपनी साथी मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:30 होने को हैं और अब वक्त है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारक दगर मी कुसुमलता पिलखवाल।

पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में मकानों सूचीकरण और आवास गणना काम 70% तक पूर्व। 19 लाख घरों ताले पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर दी जोर। पौड़ी जिले में विकास कामों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाने दिशा में प्रशासनल पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करो। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में जल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गो। 18 मई के खुलल रुद्रनाथ मंदिरक द्वार। अब समाचार विस्तारल सुनो। प्रदेश में मकानों सूचीकरण और आवास गणना काम 70% ताले पूर है गो। गणना कामों में लगी टीमों अब ताले 19 लाख घरों बटी डेटा इकट्ठा कर हेलो।

0: यो लिहाजल 86 लाखक आबादी के कवर करी जैरो यह कामक लीजी 24 मई तालिक समय निर्धारित करी जैरो यो संबंध में भारतक महा रजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणल देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशुक दगर प्रदेश में जनगणना कामक समीक्षा ले करी उन्होंने वर्चुअल बैठक कर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्त ने फीडबैक ले ली। श्री नारायणल को की जनगणना कामों में आंकड़ों गुणवत्ता के सभी हबे ज्यादा अहिमित छो किले की परिसीमन बटी लिबे जन कल्याणकारी योजना के यमे आधार टिकी हुई छो उन संबंधे आंकड़ों गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा जांच पर विशेष ध्यान दी जानक अपील ले करी दगड़ी ही उम्मीद ले जते कि उत्तराखंड मा शेष बची एक तिहाई काम के लिए समयबद्ध ढंगल पूरी करी जाल।
1: जनगणना का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का काम चल रहा है और उसके लिए एक अवधि निर्धारित होती है तो उत्तराखंड में अवधि 24 मई को समाप्त हो रही है तो अभी 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाना है। सभी जगह कार्य चल रहा है, करीब 2/3 कार्य हो गया है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अगले 10 दिन में बचा हुआ 1/3 काम भी कर लेंगे।
0: पेट्रोल डीजलक बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपीलक बाद प्रदेश माले सरकारी विभागक सक्रिय दिखाई दिनी यो क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDL ले ऊ बखत बटी ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत के लिबेर कदम उठान शुरू कर हेली। MDDL उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी प्राधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों दे तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू कर हेली। उन्होंने बता कि अधिकारियों कर्मचारियों दगर कार्यल आण जाणक दौरान साझा वाहन अपनाणक रोस्टर ले जारी करी जेरो ताकि अनावश्यक ईंधन खपत के कम करी जा सको। ये के अलावा कार्यालय आसपास कर्मचारियों के साइकिलल या पैदल कार्यल आणक लिजिले प्रेरित करी जानो। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के लिए ले बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू करी जरी जैक उद्देश्य बिजली और ईंधन द्विनोक बचत करियन छू।
2: हम लोगों ने आज रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में अवैध निर्माण में सीलिंग में लगे हैं एक सेक्टर के लिए एक गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कारपूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और रोस्टरीकरण की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
0: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगरक ओर बटी आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर मा सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियानक शुभारंभ करीगो। यह अवसर पर न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के ईंधनक बचतक लिजी प्रेरित करते हुए हफ्त मा द्वि दिन पैदल या साइकिल न्यायालय परिसर आणक अपील ले करी गये। अभियान के व्यवहारिक रूप अपनाण और प्राधिकरण के सचिव ममता पंत अपू निवास बटी लगभग पैदल चलबे न्यायालय परिसर पहुंची। उन्होंने कहा कि 1 महीने ताले चलन वालियों अभियानक उद्देश्य आम जनमा ईंधन व पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली प्रति जागरूकता बढ़ाण छो।
3: ये कैंपेन 1 महीने तक चलेगा। इस कैंपेन में हमने सारे लिटिगेंट्स सारे अधिवक्तागण सारे न्यायिक अधिकारीगण सब लोगों से आह्वान किया है कि वह सप्ताह में 2 दिन सैटरडे और मंडे कोर्ट पैदल आए या फिर साइकिल से कोर्ट आए। इसका यही उद्देश्य है कि ईंधन बचाए तथा सुरक्षित जीवन पाए। आज समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा तथा मेरे द्वारा पैदल आया गया।
4: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: पौड़ी जिले में विकास कार्यों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध वर्णक दिशा में प्रशासनल एक महत्वपूर्ण पहल के करते हुए पौड़ी प्रगति पोर्टल ले शुरू करो। यह अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिले में संचालित अलग अलग विकास योजनाओं रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करोल। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल को की पोर्टलक जरिए सभी विभागों प्रगति पर निरंतर रखी जा सकेल जेल की कामों में गतिक दगड़ी दगड़ी गुणवत्ता ले सुनिश्चित होल। उन्होंने बता कि यह पोर्टल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सकल प्रभावी जवाबदेह और पारदर्शी बनाने दगड़ी ही विकास कामों गुणवत्ता और प्रगति पर सतत निगरानी रखने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाल।

0: गौरी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सभी की मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग उस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी विभागों को जो उनके लॉगिन आईडीज हैं वो भी दिए जा चुके हैं और जिसपे उन्हें प्रत्येक अपने वित्तीय तथा फिजिकल प्रोग्रेस प्रत्येक प्रोजेक्ट का अपलोड करना होगा और अब हम लोग आगे की जितनी भी समीक्षाएं करेंगे वो सब कुछ प्रगति पोर्टल के रिपोर्ट के एनालिसिस के आधार पर ही करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें विभागवार, ब्लॉकवार हर प्रकार से हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं जिससे कि क्लियर कट हर समय हमें बार बार दोबारा से सभी विभागों से उनकी सूचनाएं बार बार मांगने की भी आवश्यकताएं नहीं रहेंगी और फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस में हम लोग साथ में सामंजस्य बिठाकर मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
1: चमोली चिल्मा स्थित रुद्रनाथ मंदिरक द्वार 18 मई के श्रद्धालुओं लीजिए खोली जाल। यो बीच भगवान रुद्रनाथक यात्राक आज शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चनाक बाद शुभारंभ है गो। रुद्रनाथक मुख्य पुजारी हरीश भटल बता की रत्ती पूजा अर्चनाक बाद गोपीनाथ मंदिरक गर्भगृह बटी भगवान रुद्रनाथक चल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रखी गो। उन्होंने बता कि आज और भोल उत्सव डोली श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रोली। 17 मई के डोली रुद्रनाथक लिजी प्रस्थान करेल और 18 मई के रुद्रनाथ मंदिरक कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाल।
2: आज भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहां से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहां से चलेंगे और 18 तारीख 11:30 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी की कपाट खुलेंगे।
1: पिथौरगढ़ जिले में आम जनता की समस्याओं के जल्द समाधानक लीजी हेलो हेल्प सेवा आज बटी शुरू है गई। यह लीजी हेल्पलाइन नंबर 9458144651 जारी करी जरो जमे कोले नागरिक अपू समस्या दर्ज करे सकूं। जिलाधिकारी आशीष भटगाइल आज हेल्प डेस्क कंट्रोल रूम का उद्घाटन करो। यह अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला कोले दूरस्थ क्षेत्र बड़ी नागरिक अपू हिंदी या स्थानीय भाषा में अपू शिकायत आसानी दर्ज करे सकूं। हेल्पलाइन में मिली शिकायतों के संबंधित विभागों ताले जल्द भेजी जाल और प्राथमिकता के आधार पर उनर समाधान करी जाल। उन्होंने कहा कि प्रशासनक उद्देश्य जनता और शासनक बीच संवाद के मजबूत बनाण छो।
3: हेलो हेल्प पिथौरागढ़ हेल्प डेस्क है, इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक ग्रीवांस रिट्रेसल का सिस्टम है जो कि फोन के आधार पर ही काम करेगा, तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें उनको यहां दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही उसमें प्राथमिकता रहेगी।
1: आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। प्रदेश में मकानों का सूचीकरण और आवास गणना काम 70% तक पूर्व 19,00,000 घरों ताले पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल बचत और ऊर्जा संरक्षण के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ले शुरू करी तेल बचाओ मुहिम। साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर दी जोर। पौड़ी जिले में विकास कामों के पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बयान दिशा में प्रशासनल पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू करो। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर परिसर में चल विग्रह उत्सव डोली के श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखी गो। 18 मई के खुलल रुद्रनाथ मंदिरक द्वार। यो कदगढ़ी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचार ये अंक ये समाप्त हूँ। नमस्कार।

FM 107.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हो रहे हैं और अब पेश है फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और फिल्म संगीत के शुरुआत में सुनेंगे ये पहला गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की आवाज में फिल्म त्रिशूल से। इस गीत को बोल दिए हैं साहिर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म तड़ी पार से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आरएनए देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद।

नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से मैं अखिलेश चंद्र गैरोला आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के विशेष कार्यक्रम विषय संवाद में। विषय संवाद के अंतर्गत हमारे विशेष पॉडकास्ट अशोक चक्र विजेता श्रृंखला में आज हम आपको ले चल रहे हैं उस वीर योद्धा की कहानी में जिन्होंने सीमा पर नहीं बल्कि शांति के समय भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की रक्षा की। लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र, उनका

0: जीवन, उनका साहस और उनका बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट अंतरिक्ष थपलियाल, जो असम रेजिमेंट के साथ सेवा का अनुभव रखते हैं। लेफ्टिनेंट थपलियाल, आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मैं आकाशवाणी के इस मंच से भारत माता के वीर पुत्र लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र के अपार शौर्य को नमन कर सकूं।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अशोक चक्र का महत्व क्या है।
1: देखिए, अशोक चक्र भारत के शांति के समय दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह उन वीरों को दिया जाता है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में, चाहे दुश्मन का सामना हो या किसी जानलेवा स्थिति का, असाधारण साहस, अप्रतिम हिम्मत और अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, बल्कि हर सीमा, हर चौकी और हर जिम्मेदारी पर होती है।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, अब जरा हमारे श्रोताओं को लैंस नायक सुंदर सिंह के जीवन के बारे में बताइए। वो कहाँ के थे, कैसे सेना में आए और कौन सी यूनिट से जुड़े थे?
1: लैंस नायक सुंदर सिंह का जन्म 14 फरवरी 1929 को जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ जिले के गांव चौखदान में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले इस युवक के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा था। फरवरी 1947 में उन्हें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस में भर्ती किया गया, जो बाद में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के रूप में पुनर्गठित हुई। अपनी कठोर ट्रेनिंग के बाद वो फोर जैकरिफ के साथ तैनात हुए और धीरे धीरे एक अनुभवी इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में उभर कर आए।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, हमने सुना है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन पंजाब के हुसैनीवाला सेक्टर में हुआ। उस समय उनकी यूनिट किस ड्यूटी पर तैनात थी और स्थिति क्या थी?
1: 17-18 मार्च 1956 को फोर जैकरिफ की तैनाती पंजाब के हुसैनीवाला फिरोजपुर के आसपास के इलाके में थी। ये इलाका सतलुज के किनारे डैम और गाइड बंद के कारण बहुत संवेदनशील सेक्टर माना जाता है। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना के तत्वों ने इस क्षेत्र में हमला किया। हमारे सैनिकों ने प्रतिक्रिया में वीरता से पलटवार किया और बंद के एक हिस्से पर कब्जा वापस ले लिया, लेकिन डैम और गाइड बंद के कुछ हिस्सों पर अब भी दुश्मनों ने मजबूत पकड़ बना रखी थी। दुश्मन ने पथरीले इलाके में मशीन गन्स लगाकर ऐसी फायरिंग पोजीशंस बना ली जहां से वो हमारे जवानों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। किसी एक व्यक्ति को अपनी जान की परवाह किए बिना आगे जाकर इन पोजीशंस को खामोश करना जरूरी हो गया, और यहीं से शुरू होती है लैंस नायक सुंदर सिंह की वो कहानी जो उन्हें अशोक चक्र तक ले गई।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब ग्राउंड पर हमारे जवान किस प्रकार की टैक्टिकल चुनौतियों का सामना कर रहे थे? क्या था वो जो इस मिशन को इतना कठिन बना रहा था?
1: सबसे बड़ी चुनौती थी खुला और नंगा मैदान, जहां से डैम और गाइड बंद की तरफ बढ़ते हुए हर सिपाही दुश्मन की सीधी नजर और फायर के दायरे में आ जाता था। दूसरी बात, रात का अंधेरा, पानी के आसपास की नमी और पथरीला इलाका, इन सब ने मूवमेंट को धीमा और खतरनाक बना दिया था। दुश्मन की लाइट मशीन गन्स ऊंचे ग्राउंड से नीचे की तरफ फायर कर रही थी, जिससे हमारे जवानों के लिए सिर उठाकर आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में किसी एक जवान का आगे बढ़कर इन पोजीशंस को तबाह करना पूरी कंपनी के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल था, और यही जिम्मेदारी लैंस नायक सुंदर सिंह ने बिना झिझक अपने कंधों पर ले ली।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पल था, वो कौन सी रात थी जहां लैंस नायक सुंदर सिंह ने ऐसा शौर्य दिखाया कि उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पूरी घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी और बंद के उस पार से दुश्मन की मशीन गन की गोलियां अंगारों की तरह बरस रही थी। हमारे जवान डैम पर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दुश्मन ने एक ऐसे कोने पर मजबूत पकड़ बना ली थी जहां से वो हमारे सैनिकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। ऐसे में एक ही रास्ता था, किसी को अपनी जान दांव पर लगाकर सीधा उनकी पोजीशन तक पहुंचना था। इसी समय लैंस नायक सुंदर सिंह नंबर 15103 को दुश्मन की पोजीशंस को खामोश करने का टास्क दिया गया और उन्होंने बिना झिझक हां कर दी। उनके पास सिर्फ 6 हैंड ग्रेनेड थे और सामने थे दुश्मन की मशीन गन्स और तेज गोला बारूद। वो लगभग 150 मीटर तक खुले पथरीले इलाके में गोली की बौछार के बीच रेंगते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। जब वो दुश्मन की पहली पोजीशन के करीब पहुंचे, उन्होंने पहला ग्रेनेड फेंका। इससे दुश्मन की एक पोस्ट खामोश हो गई, उनके कुछ सिपाही मारे गए और मशीन गन चुप हो गई। फिर वो आगे बढ़े दूसरी और तीसरी पोजीशन की तरफ, हर बार वो अपने ऊपर हो रही गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए पथरीले इलाके का फायदा उठाते हुए आगे सरकते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे। तीन बार ऐसा करके उन्होंने तमाम पोजीशंस को तबाह कर दिया जहां से हमारे जवानों पर सबसे तेज फायर हो रहा था। उनकी इस वीरता के कारण फोर जैकरिफ बंद के उस हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमा पाई, दुश्मन को पीछे धकेल दिया और पूरा इलाका सुरक्षित कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं की, उनका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, मिशन कम्प्लीट करना और अपने साथियों की जान बचाना।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, इतनी कठिन परिस्थिति में जब हर पल मौत सामने खड़ी हो, तब भी ऐसे साहस का प्रदर्शन ये भारत

0: भारतीय सेना के किस मूल सिद्धांत को दर्शाता है?
1: यह भारतीय सेना के उसी मूल मंत्र को दर्शाता है जिसे हम अक्सर बोलते हैं, नाम नमक निशान। सोल्जर के लिए अपने रेजिमेंट का नाम, अपने देश का नमक और अपनी पलटन का निशान उसकी अपनी जान से भी बड़ा होता है। लैंस नायक सुंदर सिंह ने दिखाया कि जब देश की मर्यादा, यूनिट का सम्मान और साथियों की जान दांव पर हो तो एक फौजी अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे आखिर में सोचता है। इसी कर्तव्य निष्ठा की वजह से उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और वो जम्मू एंड कश्मीर से पुरस्कार को पाने वाले प्रथम वीरों में शुमार हुए।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज के युवाओं के लिए जो फौजी जीवन को सिर्फ एक नौकरी के रूप में देखते हैं, लैंस नायक सुंदर सिंह का जीवन क्या संदेश देता है?
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि फौजी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है। एक साधारण परिवार का बेटा जो एक छोटे से गांव से निकलकर फोर्ट जैक्रिफ का वीर जवान बनता है और फिर हुसैनीवाला जैसे संवेदनशील सेक्टर में अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी कंपनी को जीत की राह दिखाता है। यह कहानी हर युवा को बताती है कि आप कहीं से भी आते हो, अगर जज्बा सही हो तो आप देश के इतिहास में अपना नाम लिख सकते हैं।
0: लेफ्टिनेंट थपलियाल, जब आप जैसे अधिकारी स्टूडियो में बैठकर इन कहानियों को सुनाते हैं तो हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम कभी उन वीरों का कर्ज चुका सकते हैं? आप आज के इस विशेष कार्यक्रम के अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: हम इन वीरों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनकी कहानियों को जिंदा रखें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। चाहे आप फौज में हों, पुलिस में, किसी दफ्तर में, खेत में या कक्षा में, अगर आप अपना काम ईमानदारी और समर्पण से कर रहे हैं तो आप भी देश की सुरक्षा और उन्नति में हिस्सा डाल रहे हैं। यही असली राष्ट्रभक्ति है।
0: तो श्रोताओं, आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमने सुना लैंस नायक सुंदर सिंह अशोक चक्र की वीरगाथा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने हुसैनीवाला के मोर्चे पर अपनी जान से खेलकर दुश्मन को पीछे धकेला, अपने साथियों की जान बचाई और भारत के तिरंगे को सर उठाकर लहराने दिया। आइए अंत में उन सब वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने रखते हैं, जिन्होंने सीमा पर खुद को भुला दिया, जिन्होंने सीमा पर खुद को भुला दिया, गोलियां खाकर भी तिरंगा संभाल दिया। वही असली वीर हैं जिनके एक एक श्वास देश के नाम लिखा हुआ, भारत के विकास के पास। ये कहानी सिर्फ लैंस नायक सुंदर सिंह की नहीं, उन सब वीर सैनिकों की कहानी है जो रोज हमारे लिए जागते हैं ताकि हम आराम से सो सकें। इन्हीं वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन। यही थे आज के विशेष कार्यक्रम के ट्रू हीरोज ऑफ आर नेशन। मैं हूं आपका आरजे, आकाशवाणी देहरादून से विदा लेता हूं। शौर्य जिनका स्वभाव है, देश सेवा जिनका धर्म है, भारत उन्हें सदा याद रखेगा। जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति विषय संवाद। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनेंगे कथा सागर के अंतर्गत श्रीमती कुसुम भट्ट से कहानी खूबसूरत हो।

भय की सर्द लहर के बीच झुरझुरी उठी। अनजानी जगह, अंधेरी रात, चांद का कहीं पता नहीं, अमावस्या शायद, सुनसान शहर और वह एकदम अकेली। उसने सिहरते हुए देखा, देह का जो चोला उन सबों ने पहना था उसकी तरह किसी का भी नहीं था। गोया एक किसी तीसरी दुनिया के वासिंदे थे, जो कभी कभार मूवी या सीरियल में दिखाई पड़ते थे, जिनसे अपना कोई संबंध नहीं होता, बस शंका और भय की नागफनी उगा करती है। वह कुछ कहना चाहती है पर जीभ तालू से चिपक रही है। पहले कभी ऐसे मौकों पर वह दो भागों में बंट जाती थी, खुद को सावधानी से बचा ले जाती थी। इस कदर डरावना एहसास जिंदगी में पहली मर्तबा हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस स्थिति का कारण क्या है। भूख लगी थी सो चली आई, तवे

रंगत और चूया सी काया वाले निर्मला दीवान के आदेश पर बच्चे की मानिंद चली आई थी। पेट की भूख से बड़ी कोई भूख नहीं, यही समझ में आया था। निर्मला दीवान के रूखे वाक्यों के पत्थर सब पर पड़े थे। यहाँ किसी के लिए खाना नहीं आएगा, वहीं होटल में चलना पड़ेगा। थोड़ी दूर खड़ी अंधेरे में उसका चेहरा रात के साथ विलय हो गया था, सिर्फ सफेद खादी की साड़ी चमक रही थी। कालिंदी सिंह अस्फुट बुदबुदाई थी, अपने घर में बुलाकर भूखा मारेगी कमबख्त। कालिंदी सिंह भैंस की तरह चारपाई पर पसरी थी। कमरे में बत्ती गुल थी, एकदम अंधेरा। ठस काली चूया की व्यवस्था पर सभी ने इसे रोज कोसा था। कालिंदी सिंह रागिनी की रूम पार्टनर एकाएक बीमार हो गई, बड़ी आह ओह के साथ टांगे दबा रही थी। रागिनी प्लीज गिव मी वन टैबलेट प्लीज, थरथराहट फूट रही थी उसके स्वर में। महिला विकास मंत्रालय की गजेटेड ऑफिसर कालिंदी इस व्यवस्था पर बार बार तंज कस रही थी। उसकी पीड़ा का एहसास रागिनी को था, पर दवा इस अंधेरी रात में कहाँ मिलेगी। भूख भी बिल्ली की मानिंद उछल रही थी। रागिनी सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल से जयपुर की उमा से दवाई लाकर कालिंदी सिंह को पकड़ाकर धम बैठ गई थी। मेरी भी टांगें दुख रही हैं, कालिंदी कहने लगी, प्लीज गो अवे, मेरे लिए बंधवा लेना, बाद में खत्म हो गया तो। होने को सीता का मायका है जनकपुर, पर कूड़े के ढेर जगह जगह, गरीबी भुखमरी छोटे छोटे बच्चे कामगार, जहां ठहरे थे आसपास दूर तलक एक चाय की गुमटी भी नहीं कि कुछ खाकर भूख मिटा सके। जितना उल्लास आमंत्रण पत्र मिलने पर हुआ था, यहां आकर सूख गया था। रवि ने रागिनी को सलाह दी थी, कुछ नहीं है वहां रागिनी, गरीबी और भुखमरी इतनी कि वहां से मजदूरी करने यहाँ पहाड़ में आते हैं बेचारे। कुछ भी हो, दिखता तो खूबसूरत हरियाला है ना, फॉरेन कंट्री है भाई, उसने हंसते हुए रवि को देखा था, जैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हूँ। रवि ने भी उसे उसी दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखा था। वह तो जाने पर पता चलेगा स्त्री, और जब हमारे देश के कवियों को वे श्रद्धा से सम्मानित कर रहे हैं तो जाना तो बनता ही है ना, तुम क्या समझोगे पुरस्कृत होने का सुख, मन में बोली थी। अरे ईंट पत्थर के व्यापारी, कभी वह सोच रही थी कि मोबाइल पर मैसेज चमका, सहयात्री स्टेशन पर मिलूंगी, मैं तराना खुशबू हास्य व्यंग की कविताएं मंचों पर गाती हूं। लिस्ट में उसका नाम देखकर तराना खुशबू पुलक से भर उठी थी। फिर दो दिन बाद व्हाट्सअप किया, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, रास्ते के लिए पूरा खाना मैं बना लूंगी जी, आप अपनी पसंद की सूची बना लेना। रागिनी भीतर से भीग उठी, उसने डायरी में लिखा, शब्द एक पुल है जिसमें भावनाओं के तार जुड़े हैं, विश्वास की ईंट लगी है, पुल के नीचे अपनेपन की नदी छलछलाती बह रही है, उस पार हसीन प्यारे रिश्ते हैं, मित्रता के, दोस्ती के, इंसानियत के, शब्द तुम्हें पढ़ना। भीतर भावनाओं का ज्वार उठता और खुशी से आंखें भीग उठती। इस नई दोस्त का काल्पनिक चित्र दृश्य से अनेका अनेक रूपों में उभरता बिगड़ता, डीपी में गुलाबी चेहरा और काले घुंघराले बाल ही दिखे थे। इतने पर किसी के व्यक्तित्व का पता लगाना दूर से मुमकिन नहीं था। ओंठों पर खिलंदड़ी मुस्कान, कुल मिलाकर प्यारी छवि पलों को जीती हवा में तैरने लगी थी। सफर खूबसूरत हो, इससे बढ़कर कोई सुख हो सकता है भला। रवि जन शताब्दी में दिल्ली तक छोड़ने को तैयार हो गए थे, वे दो घंटे पहले पहुंच चुके थे। रागिनी तराना खुशबू के मैसेज पढ़ रही थी, पंजाबी खाना पसंद है आपको, कुछ तो मुझे भी बनाना चाहिए कि नहीं, उसने लिखा था। खाना तो खाना है तराना जी, किसी भी प्रांत का हो, मैं इडली बना लूंगी, मैंने पंजाबी छोले पूड़ी हलवा बनाए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, वैसे ट्रेन में भी खाना आता ही है। छोले हलवा की याद आते ही रागिनी को प्यास महसूस हुई। अप्रैल का महीना गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एकाएक फोन बजा, मेरी रेड कलर की ड्रेस है जी। अच्छा, पर मनुष्यों के इस महासमुद्र में जहां काले सफेद सिरों के रेले बहे जा रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगी आपको, वो मन ही मन बोली थी और पास के कूलर पर पानी भरने लगी थी। तभी एक पीले रंग की रिक्शा पास आई। हाय, रागिनी पीछे से मुड़ी, उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, क्या ख्यालों में देख लिया, तराना खुशबू। वे रिक्शा से बमुश्किल उतरी, मैं ही हूं भाई तराना खुशबू, आपकी सहयात्री, सफर खूबसूरत हो, रागिनी ने अपने ओंठों को अस्फुट बुदबुदाते सुना था, और आंखों ने हथनी काया को लदबद रिक्शे से उतरते हुए देखा था। इस 125 किलो की काया पर रेड ड्रेस खिल रही थी। तभी भीतर वह दूसरी चिंता

नेगेटिव क्यों सोचती हो तुम रागिनी? मन के आगे देह का सौंदर्य क्या मायने रखता है भला? मन की आंखों से मन को देखो, ये छल छलाती आत्मीयता इसके आगे संसार के समूचे सौंदर्य पानी भरे। रवि ने कवित्री के लिए ससम्मान बेंच की तीनों सीटें छोड़ दी थी। मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। रवि को भी शायद घुटन होने लगी थी जब खुशबू तराना ने आगे से बंकर की तरह रास्ता रोक लिया था। अरे सर बैठिए ना, मेरे पास खाने पीने का भंडार है। उसने हाथ में पकड़े बैग पर हाथ मारा और रवि को प्लेट में एकाएक खाना परोसने लगी। खट्टे छोले हैं, अच्छे लगेंगे सर आपको? रवि चुप बेबस टुकुर टुकुर रागिनी को देखने लगे थे। अब ले लो रवि, इतने प्रेम से परोस रही है हमारी तराना खुशबू, इशारे से रागिनी ने रवि को कहा। तो रवि के चेहरे पर मासूमियत को रागिनी देखती रही देर तक। घर की दीवारों के बीच जो शेर होता है दूसरी स्त्रियों के सामने मेमना कैसे हो जाता है एकाएक। इच्छा नहीं फिर भी थाम ली पलेट। रवि को उसके सिवा सबको अपनी मासूमियता का विश्वास देकर लगता है कि रागिनी को हरा दिया है। देखो दुनिया वालों में कितना भोला भाला हूं, जबकि असलियत कुछ और थी। एक पूरी बमुश्किल खाने के बाद रवि ने रागिनी को देखा था असहाय दृष्टि से कि तीन पूरी छोले अचार सलाद अभी प्लेट में पड़े थे। तराना खुशबू ने खुद भी खाते हुए रवि को देखा था। खाइए सर, इतने खाने से मेरे जैसे नहीं हो जाएंगे ना? हा हा हा, रागिनी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया था, थोड़ी देर पहले वे खा चुके थे। तराना खुशबू दुकान लगाकर बैठी थी, लोग मुस्कुराकर देखते और गुजर जाते। ट्रेन की सीटी दूर से आ रही थी। रवि खाना छोड़ आगे निकले। तराना खुशबू डिब्बे संभालने लगी। ट्रेन पटरी पर लग चुकी थी, यात्रियों में अफरा तफरी मच चुकी थी। रवि ने चिप्स बिस्कुट के पैकेट पकड़ाकर विदा लेते कहा, सफर खूबसूरत हो। दरअसल यह रागिनी का तकिया कलाम था जो रवि ने व्यंग से शायद उछाला था। तराना अपनी सीट पर टांगे फैलाकर बैठते ही बचा हुआ जूठा खाना परोसने में लग गई थी। रागिनी उनींदी थी, उसे झपकी आई तो एकाएक उठने वाले शोर से खुल गए। उसने चेहरे से कंबल हटाया था, अधमुदी आंखें एक दुबले गोरे खिचड़ी दाढ़ी और लंबे खिचड़ी बालों वाले सज्जन को देखने लगी थी। वे ऊंचे स्वर में गा रहे थे, प्रेम की अलख जगाओ रे, प्रेम में जीना प्रेम में मरना जग को ये समझाओ रे। उनके कंधे पर झोला था जिससे निकालकर वे अपनी कविता पुस्तक लोगों को बांट रहे थे और साथ ही गा भी रहे थे, पीर बड़ी है दिल में मेरे, किस किस को दिखलाऊं मैं, जख्म दिए हैं जिसने कैसे मैं सहलाऊं। वाह वाह, तराना खुशबू खाते खाते दाद देने लगी, धन भाग हमारे काबिल साहब, आप भी इसी डिब्बे में हुए? अरे मोहतरमा आपका परिचय? फिर उनको एकाएक याद आया कि इस महिला से पहले भी मिल चुके हैं। काबिल कवि आगे बढ़े, पहले आपके चरणों में प्रणाम कर लूं सर? उन्होंने लपक कर तराना खुशबू के गुलाबे गोरे गुदाज पांवों में सिर रख लिया। आप मिल गए मोहतरमा, सफर खूबसूरत हो गया। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मेरे पाँव को, पाप चढ़ाएंगे क्या? तराना उठने लगी, आप बैठिए। उसने जूठे हाथों से एक प्लेट में चार पूड़ी छोले अचार रख उन्हें दिया, खाइए खाइए, पंजाबी छोले बड़े टेस्टी हैं। काबिल कवि हड़बड़ा गए, नहीं नहीं मैडम नहीं, अभी भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है, अच्छा एक पूड़ी बस, वह परोसने लगी। काबिल कवि को खाने में रुचि नहीं थी, वे बातों के छल्ले उड़ाते ऊपर की बर्थ पर चले गए और कविताएं सुनाने लगे। थोड़ी देर में तराना खुशबू की आंखें बंद होने लगी, वह सीट पर पसर गई। जाने कैसे उसका प्लाजो घुटने से ऊपर हो गया। काबिल कवि ने उसकी नंगी टांग का फोटो लेकर फेसबुक पर डाल दिया। जब नींद खुली तो उसने मोबाइल खोला, फेसबुक पर अपनी नंगी टांग देखकर उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि काबिल कवि ऐसी बचकानी हरकत कर सकते हैं। ही काबिल कवि हंसने लगे, सौंदर्य बोध मोहतरमा, ही लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह रुआंसी हो गई और आंखों से आंसू की बूंदें छलकने लगी। डिलीट कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए डिलीट, उसने रोज से कहा। उसकी आंखों में डबक डबक पानी भर आया और चेहरा धुंध से भर गया।

0: मोहतरमा, तराना ने कॉफी मग पकड़ने से साफ इनकार कर दिया तो कवि मुस्कुराकर बोले, ले लीजिए मोहतरमा, माफ भी कर दीजिए। अब गलती भी इंसान से ही होती है ना। तराना ने मग पकड़ा और पर्स खोलकर पैसे देने लगी। कवि ने उसे अनदेखा कर कूपे के सभी यात्रियों के लिए कॉफी पका ली। रास्ते भर वे सभी को कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहे। तराना ने 500 का नोट उनको जबरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, अब तक आपके बहुत पैसे खर्च हो गए, अब चुपचाप इसे रख लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि लौटने के लिए भी कुछ न रहे। उन्होंने चुपचाप नोट रख लिया। सेमिनार के समाप्त होने के बाद तराना खुशबू को पटना में एक और सम्मान लेने जाना था। उसने रागिनी को भी साथ चलने को कहा था, पर रागिनी को कालिंदी का साथ मिल चुका था। मोबाइल की छीन सी रोशनी में गेस्ट हाउस से आधा मील दूर इस छोटे से होटल में खाना लेने आई तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। नशे में काबिल कवि दूसरे कवियों से तराना खुशबू की गदबदी गोरी देह का अनावरण करते हुए अंगों पर अश्लील कविता कर रहे थे और सारे कवि चटकारे लेकर सुन रहे थे। गोया तराना खुशबू की अनावृत देह उन सबके बीच पड़ी थी और वे सब भेड़िए उसके एक एक अंग को स्वाद से चबा रहे थे। रागिनी के भीतर थरथराती चीख उठी, पर उसके भीतर ही बिला गई। उसने अपने भीतर कंपकपी महसूस की। अगर वह थोड़ी देर रुकी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उसने पैकेट उठाया और लड़खड़ाते कदमों से बाहर आई तो अपनी आत्मा की चीख सुनाई दी। अब उसे खुद को रोकना मुश्किल लगा। अंधेरी सुनसान जगह पर वह जोर से चीखी और अपनी व्यवस्था पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: अभी आप सुन रहे थे कथा सागर के अंतर्गत श्रीमती कुसुम भट्ट से कहानी खूबसूरत हो। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की आवाज़ में चंद गज़लें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:20 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की आवाज में चंद

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत विविध कलाकारों की आवाज़ में गजलें। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं, पेश है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिल्म संगीत में। और फिल्म संगीत में ये पहला गीत अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में फिल्म तेजाब से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और बोल दिए हैं जावेद ने।

खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:34 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, पेश खिदमत है फिल्म संगीत में ये अगला गीत। मनहर की आवाज में इस गीत को संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने। फिल्म है आप तो ऐसे न थे।

तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। जी हाँ श्रोताओं, अभी ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था निदा फाजली ने, आवाज़ थी मनहर की और फिल्म थी आप तो ऐसे न थे। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:41 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, फिल्म संगीत में सुनेंगे ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने। फिल्म है आंधी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने RJKR मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई U17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति

0: ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है।

0: इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के

0: अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। उपस्थित हुए। यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
4: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Saman Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaDAC and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Speaking to Akashvani, Ambassador Deepak Mittal said, India and the UAE have taken several strategic decisions during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi to deepen cooperation in energy, technology, investment and trade.
5: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements, long-term decisions to deepen India's energy security and to deepen energy partnership between India and the UAE. The discussions between the leaders today also touched upon technology, the decisions to set up 8 exaflop supercompute facility in India, which will be based upon the Cerebras chip technology. That will form a very important part of our AI mission. Associated with was also the UAE decision to also partnership in developing the ship repair cluster in the Vadnagar in India.
2: Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening the shared planet and futures such as climate change. Briefing media New Delhi after the conclusion of BRICS foreign ministers meeting, Secretary Economic Relations and Minister of External Affairs Sudhakar Dalela said all the BRICS members and partner countries were highly appreciative and supportive of India's chairship priorities under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
6: All the BRICS members and partner countries were very appreciative and supportive of India's chairship priorities on the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Building on this deliberation in the last 2 days and based on these discussions, we have issued a chair statement and outcome document. It captures the common position of BRICS members on almost all the subjects under the three pillars of BRICS strategic partnership.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. Jaishankar said the breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi today addressed a press conference in New Delhi. He said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. The Iranian Foreign Minister said Iran would welcome any constructive role by India.
7: I think India, with its good reputation, can

तो श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत में अगला गीत, दिव्य कुमार और प्रिया सारिया की आवाज़ में फिल्म ABCD 2 से।

आपने ट्यूनिंग किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 9:42 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, अभी आप ये गीत सुन रहे थे के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म अक्सर से। इस गीत को संगीतबद्ध किया था हिमेश रेशमिया ने और बोल थे समीर के। तो आइए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अगला गीत हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म गुरु से। इस गीत को शब्दों में पिरोया है गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: श्रोताओं, हमराज फिल्म का ये गीत अगला गीत हम सुनेंगे। उदित नारायण की आवाज़ में इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीपे हुआ तो रब से शिकायत।

तो जी हाँ श्रोताओं, समय को देखते हुए सुनेंगे फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत। अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में फिल्म भारत से इस गीत को बोल दिए हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 10 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश, रात की खामोशी हर सुर से बातें करने लगे। चांदनी जब गीतों की धुन पर मुस्कुराने लगे, तभी शुरू होता है आपका खास कार्यक्रम, जहां हर फरमाइश बन जाती है किसी की दिल की आवाज़। जी हां, कार्यक्रम में मैं सुषमा जोशी की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मेरे प्यारे श्रोताओं, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हर धड़कन गुनगुनाएगी, हर पल मुस्कुराएगा और संगीत का जादू आपको ले जाएगा एक खूबसूरत सफर पर। तो आइए इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ लेते हैं कार्यक्रम में ये पहली कॉल। हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना नाम बताएं।
1: सुषमा, मैं गुलजार बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जिला शामली से।
0: आपने आवाज से पहचान लिया?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: वाओ, ये तो बहुत प्यारी बात है। आज आपका कॉल लगा कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है आपको?
1: दीदी मुझे बहुत अच्छा लगा है कॉल, आज मेरा बहुत दिनों बाद कॉल लगा है, आज बहुत खुशी हो रही है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम काफी दिनों बाद चालू हुआ है।
0: तो आज तो बहुत अच्छी बात है, आज का दिन कितना प्यारा है। देखिए, आपका कॉल लगा हमारे कार्यक्रम में।
1: अजी बहुत दिनों से मिला रहे थे जी, 4:16 पर कॉल लगाया।
0: आखिरकार आपकी कॉल लग ही गई है ना। कहते हैं ना, शिद्दत से किसी भी चीज को चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। तो बताएं, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं उर्दू की पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप उर्दू की?
1: हाँ।
0: और पढ़ाई करते समय भी आप रेडियो सुनते हैं?
1: जी पढ़ाई करने के बाद रेडियो सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, तो समय निकाल लेते हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: जी रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेता हूँ।
0: अच्छा, तो मतलब इतना लगाव है आपको रेडियो से?
1: अजी तो देख, एक पटे कार्यक्रम, इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं आकाशवाणी देहरादून पे। हेलो फरमाइश, हेलो रेडियो, ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं।

0: प्रोग्राम आता है, व्हाट्सएप हमारे कार्यक्रम आता है, टेलीचार हमारे लिए कार्यक्रम आता है।
1: हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ के सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: किसी जगह कार्यक्रम आता है हर शनिवार को, हेलो लोक मंजरी फोन इन कार्यक्रम, वो भी नहीं आ पा रहा था, वो भी कल से शुरू हो जाए।
1: और ये बताए कि कार्यक्रम जो आप सुनते हैं, और जो जैसे कि कृषि जगत आपने बताया आप सुनते हैं, तो कार्यक्रम सुनकर आप इनका लाभ भी उठाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स आते हैं प्रोग्राम में, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं।
0: हाँ जी, इनका लाभ वगैरह भी उठाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, किस तरह से क्रॉप उगाते हैं, किस तरह से हमें खेती उगानी चाहिए, किस तरह से पानी देना चाहिए।
1: अच्छा, और बताएं वहाँ का मौसम कैसा है?
0: शामली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, रात बारिश हो रही थी और अब धूप निकल रही है।
1: हाँ जी, रात पे बारिश होती है, फिर दोपहर के टाइम बहुत तेज गर्मी भी होती है ना, तो गर्मी के
0: हाँ जी
1: बचाव के लिए ना तेज धूप में ज्यादा बाहर ना जाएं। अगर बहुत ही
0: जी
1: जरूरी काम है आपको तो बाहर जाएं, लेकिन हाँ, जाते समय बाहर खुद को जरूर कवर करें और खूब पानी पिए, अपना ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखें, है ना?
0: जी छाता लेकर बाहर जाए घूमने।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना, कि आप छाता लेकर बाहर जाते हैं। तो आज बताएं आप कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: प्रेम रोग फिल्म का गीत सुनना है मुझे, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपको आपकी पसंद का ये फरमाइशी गीत। आप अपने परिवारजन या अपने जो भी करीबी मित्र हैं उनका नाम लेना चाहेंगे तो आप जरूर ले सकते हैं।
0: दीदी जी, मेरे मित्र है महराज मलिक, शहनाज मलिक, फिजा मलिक, महबूब दुकानदार है, मकसूद अली है, और मेरे और भी मित्र है, साकिरा बाजी है, शहनाज बाजी है, अफसरुन बाजी है, यही मेरा मित्र है।
1: तो लीजिए, शामिल कर लिया हमने आप सभी मित्रों के नाम प्रोग्राम में।
0: और चलते चलते मैं आखिरी बात और भी कहना
1: बिल्कुल
0: चाहता हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बोल सकते।
0: ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता है कि वालेकुम अस्सलाम कहना है?
1: मुझे ईश्वर एक ही है, बस रूप अनेक है ना,
0: जी
1: उसी तरह मुझे हर तरह के विश करना बहुत पसंद है। तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का प्रेम रोग फिल्म से ये प्यारा सा।

0: हेलो फरमाइश
1: तो नमस्कार दीदी।
0: जी, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना नाम बताएं।
1: बहुत धन्यवाद जी। दीदी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ और आज पहली बार मेरा देहरादून के इस फोन इन कार्यक्रम में फोन लगा है और बड़ी खुशी हो रही है।
0: वाह, क्या बात है। आज आपका कॉल लगा तो देखिए कितना प्यारा सा दिन है ये, है ना?
1: इस कार्यक्रम में हमारा कॉल लगा है तो खुशी पहले मनाई जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर आने वाले पल का स्वागत खुशियों से करना चाहिए, है ना? तो बताएं
1: जी
0: कहाँ से बात
1: बिल्कुल
0: कर रहे हैं आप?
1: जी। दीदी, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: दीदी, ब्लाइंड पर्सन हूँ, मैं घर पर ही रहता हूँ, लेकिन रेडियो सुनने का मुझे बचपन से ही शौक है।
0: वाह, आप रेडियो सुनते हैं, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं आप रेडियो?
1: हाँ, मतलब लगा लीजिए जब चिट्ठियों के माध्यम से दो चार आकाशवाणी केंद्र हुआ करते थे, जैसे मथुरा है, दिल्ली है, लखनऊ है, ग्वालियर है, नजीबाबाद है, क्योंकि केवल ये रेडियो पे आते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत डेवलप कर लिया है, तो ऐप के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम सुन सकते हैं, देश विदेशों में ही लोग सुन सकते हैं।

0: मथुरा ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है, मथुरा की मात्र 55 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है, तो आगरा मथुरा ये सब यानी बटेश्वर क्षेत्र जो है वो ब्रज में ही आता है जी। आगरा की खूबसूरती तो ताजमहल से है ही है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल की क्या खासियत है, और अन्य इमारतें भी हैं आगरा में, जैसे एक लाल किला है, सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है वो तो।
0: लेकिन दीदी आप भी बहुत खूबसूरत और देवभूमि में निवास करती हैं, तो सौभाग्य आपका भी है और हमारा सौभाग्य यह है कि हमारा फोन आज इस कार्यक्रम में लगा।
1: ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, और देखिए आप हैं तभी हम हैं, हमारा ये कार्यक्रम है ना, क्योंकि हम जुड़े हैं आपसे, आपका और हमारा नाता तो ऐसा है जैसे हम सब ना एक परिवार हैं।
0: लेकिन दीदी अगर आपकी मेहनत ना हो तो हम इतने अच्छे कार्यक्रम सुन कैसे पाएंगे, बात तो ये भी है।
1: हाँ जी, हमारी मेहनत है और उस पर चार चांद लगाते हैं आप सभी की उपस्थिति।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: दीदी, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम श्रोताओं के लिए इतनी मेहनत से और इतनी शिद्दत से कार्यक्रम बनाते हैं, फिर उसे पेश करते हैं, तो जितनी शिद्दत से आप पेश करते हैं उतनी शिद्दत से हम भी सुनते हैं और मजा आ जाता है कार्यक्रम से।
1: जी, शुक्रिया आपका कि आप इतनी शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आज हमारा ये जो फोन आपके कार्यक्रम में लगा है, सबसे पहले तो हम आप सभी को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारा कॉल शामिल किया, और दूसरा
1: जी
0: ये है कि एक भजन आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम सुनेंगे, क्योंकि आप देवभूमि में हैं, तो उत्तराखंड जो है वो देवभूमि कहलाता ही है, तो
1: बिल्कुल।
0: चारों धाम फिल्म का एक गीत है दीदी,
1: हाँ जी,
0: जिसने चारों धाम कर लिए मुक्ति मिल गई जीवन में, ये चारों धाम फिल्म का है, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर शायद की आवाज में। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच।
1: तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में ये आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: जी, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना नाम बताएं।
1: ग्राम को

0: बेला डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील डाटागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
1: तो कैसे हैं आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैम आपका हाल जानना चाहता हूँ, कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल, हम लोग भी बहुत बढ़िया से हैं। आज आपका कॉल लगा, बताएं कैसा लग रहा है आपको?
0: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आकाशवाणी देहरादून में हमारा कॉल, काफी अंतराल के बाद आज फिर से शामिल होने का ये मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना
0: जी
1: जी। और क्या करते हैं आप?
0: वैसे मैं आपके अभी पास में ही हूँ क्योंकि मैं हरिद्वार में ही जॉब कर रहा हूँ, रहने वाला तो बदायूं का हूँ पर इस समय
1: ओके।
0: हरिद्वार में ही जॉब कर रहा हूँ मैं।
1: रेडियो सुनना पसंद होगा आपको, है ना? बहुत
0: जी, बिल्कुल, रेडियो तो मैं 2008 से सुन रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है, रेडियो के जरिए लगता है, रेडियो के कार्यक्रम मुझे बहुत लुभाते हैं।
1: अच्छा, वाह, रेडियो तो मतलब लगता है आपके सफर का हम सफर है।
0: बिल्कुल मैम, सफर का हम सफर, रेडियो कहीं भी कभी भी सुना जा सकता है, कभी न्यूज ऑन AIR के माध्यम से कभी भी प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हरिद्वार का मौसम फिर कैसा है, यही की तरह होगा?
0: बिल्कुल मैम, मौसम तो कुल मिला के थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है, मौसम ठीक ठाक ही है फिलहाल, कल तो थोड़ा सा आंधी तूफान सा आया था
1: हाँ
0: पर थम
1: जी,
0: गया।
1: हाँ जी, हाँ जी, और गर्मी में अपना खास ख्याल रखिएगा, है ना?
0: मैम अपने साथ साथ में अपने अन्य श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा, इस समय जो ज्यादा जो पानी वाले फल वगैरह है उनको खाते रहे, और साथ में कहीं बाहर जाए तो गमछा लेकर जाए, और साथ में बोतल पानी की जरूर ले जाए।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है ये, बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: मैम कुछ लाइनें आपको पेश कर दूं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं।
0: एक हसरत थी सच्चा प्यार पाने की, एक हसरत थी सच्चा प्यार पाने की, मगर चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की,
1: वाह, क्या बात है कि मेरी आदत थी मुस्कुराने की।
0: मुस्कुराना।
1: जी,
0: अब
1: बहुत
0: मुस्कुराता हुआ
1: प्यारी
0: चेहरा हर
1: लाइन।
0: किसी को अच्छा लगता है, मुस्कुराना जीवन में बहुत जरूरी, जितना आप हंसते रहोगे उतना आप स्वस्थ फील करते रहोगे।
1: वाकई वाकई में आपने शत प्रतिशत इतनी प्यारी लाइन कही है ना ये, कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? क्योंकि ना हम
0: बिल्कुल
1: किसी को कुछ दे या ना दे, पर अपने एक प्यारी सी मुस्कान दे देना, तो उससे ही ना अपनापन लगता है, अपनापन बढ़ता है ना?
0: जी, बिल्कुल मैम,
1: बहुत ही प्यारी बात कही आपने और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम रहेगा मैम अर्पण, और इसमें बेहतरीन सुनाऊंगा परदेस जाके परदेस या भूल जाना पिया, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
1: जी, तो आप कार्यक्रम में अपने परिवारजनों का नाम लेना चाहेंगे या मित्रों का, आप जरूर ले सकते हैं,
0: पर
1: बताइए।
0: मेरी बात नहीं सरता जी, मेरे बच्चे शुभलभ गुनगुन रामपुर से अहमद जी और दिव्यांशु यादव खेल की पिजराओं के साथ मैम आप भी रहेंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, बहुत बहुत प्यारा सा नमस्कार आपको भी, और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम, हमारे मतलब
1: जी
0: आपके अपने कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना
1: जी
0: नाम बताएं।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ आपकी तरफ पहाड़ों से। जी
0: अच्छा, वाओ, पहाड़ों से।
1: जी जी
0: तो कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। इस समय जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप बताइए देहरादून का मौसम कैसा हो।
0: देहरादून का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है, और मतलब ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे हैं आप वहाँ पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप जैसे देहरादून में ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे, तो हम भी अपने क्षेत्र में ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आज कार्यक्रम में आपका
1: जी
0: कॉल लगा, आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक पहाड़ों से दूसरे पहाड़ों तक कॉल लग गया तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत प्यारी बात।
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: जी
1: जी
0: और क्या
1: क्योंकि
0: करते हैं?
1: हमारे इधर
0: हाँ जी, बोलिए
1: हम
0: बोलिए।
1: तो हमारे यहाँ तो बागवानी होते हैं, हमारे जो है सेब होते हैं।
0: अच्छा, वाओ, ये बहुत प्यारी बात है कि सेब के बाग लगाते हैं आप, और सेब की खेती करते हैं, तो सेब
1: अभी
0: कैसे लगे
1: तो
0: हैं मतलब?
1: पत्तियां, अभी तो पत्तियां आने वाली है और छोटे छोटे फल लगने वाले, तो अब देखते इस बार फल सेब की जो है फसल कैसी होती है।
0: तो हमारी दुआ
1: जी
0: है कि ये जो सेब के बाग लगाए हैं आपने, बहुत ही आपको फायदा हो, बहुत अच्छे सेब हो।
1: जी हमारे जो सेब होते हैं पूरे देश में जाते हैं, शायद आप तक भी पहुंचे होंगे। जी
0: बिल्कुल, वहां से यहाँ तक जरूर आते होंगे।
1: जी जी और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर्यटक भी बहुत आते हैं, खासकर जो है कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, इस जगह से बोल रहे हैं।
0: पहाड़ कहाँ
1: जी
0: से बात
1: मैं
0: कर रहे
1: राकेश
0: हैं आप?
1: बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी
0: अच्छा, वाओ, शिमला से बात कर रहे हैं आप।
1: जी जी मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, बहुत प्यारी जगह है शिमला, है ना?
1: जी, तभी तो शायद आपको शायद कंफ्यूज मतलब ये होगा कि पहाड़ों से तो बोल रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से किस जगह से बोल रहे हैं, तभी तो शायद
0: नहीं, आपने
1: तभी तो
0: बोला ना
1: मैंने
0: कि
1: सोचा
0: हम
1: कि
0: आपके बगल से बोल रहे हैं, मुझे लगा आपने बोला ना यही पहाड़ों से, मुझे लगा मजूरी से बात कर रहे हैं आप।
1: नहीं, हिमाचल
0: अच्छा
1: प्रदेश पहाड़ी राज्य से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा तो वाओ, मतलब शिमला तो
1: जी
0: प्यारी जगह है ही, और शिमला के लोग भी इतने प्यारे हैं, देखिए आज पता ही लग गया आपसे बात करके।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हम क्योंकि जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड और हिमाचल, इसकी जो है देव संस्कृति है एक ही है, था खान पान है, और हमारे जो संगीत नृत्य एक ही है, तो इसलिए मुझे लगा तो मैं अपने आप परिचय में इस तरह से दूँ,
0: और बहुत
1: तभी
0: ही
1: तो मैं।
0: अच्छा परिचय दिया आपने, बिल्कुल अलग ना, बहुत प्यारा सा।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सोचा कि जो मेरे मेरे दिमाग में था कि मेरा कॉल देहरादून पे लग जाए, तो मैं इस तरह से परिचय दूँ कि ताकि अगर अगर आप नहीं पहचान पाए तो मैं फिर मैं बाद में थोड़ी देर के बाद में बता दूंगा कि मैं शिमला से बात कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, देखिए आपका कॉल भी लगा, और हमारे कॉल से पता है एक चीज बहुत बड़ी चीज हुई अभी, पूछिए क्या?
1: जी, हाँ जी बोलिए।
0: आपके चेहरे पर इतनी सारी जो ये मुस्कुराहट आई है ना, वो है ना?
1: क्यों क्यों क्योंकि देखो बहुत खुशी होती है जब हम अपने आकाशवाणी केंद्रों पे कॉल लगाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि देखो हम दोस्तों से बात करते तो उसमें से 5 मिनट में लग के कॉल लगाने में, लेकिन आकाशवाणी में जब घंटों प्रयास करते तो जब खुशी होती है, जब कॉल मिलती
0: हाँ जी
1: तो मुस्कुराहट
0: बिल्कुल।
1: होती है, क्योंकि आकाशवाणी में कॉल लगना ये होता है कि इतनी भीड़ में हम कॉल लगा रहे, कम से कम लाखों लाखों हजारों की भीड़ में अपनी कॉल लग जाती है, तो बहुत खुश होते हैं कि हम अपनी बात देश और प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और ये खुशी ना आपके चेहरे पर साफ झलक रही है, क्योंकि ये ना मुझे महसूस हो रही है अभी।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे प्रोग्राम में?
1: जी आज सुनना है मुझे मोहब्बत मूवी का गाना,
0: अच्छा, कौन सा गीत?
1: मोहब्बत नहीं वाली, उसमें एक टाइटल सॉन्ग है, आई ना बता नहीं, आई ना बता कैसे उनका दिल चुराना है। जी
0: और प्रोग्राम में आप अपने परिवार जनों या अपने कोई भी किसी खास मित्र का नाम लेना चाहेंगे तो जरूर ले सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: सच में?
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है जी, शुक्रिया।
1: क्योंकि आपका तो अधिकार बनता है, क्योंकि सबसे पहले तो आप हमारे लिए श्रोताओं के लिए मेहनत कर रहे, तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा। तो मेरे जो परिवारजन है, मदर फादर है, और हमारी छोटी दीदी है, और रेडियो श्रोता है, कुछ एक दो मित्रों का शायद नाम न कहता हूँ।
0: हाँ जी बिल्कुल, जरूर लीजिए।
1: जी पूरण वर्मा जयपुर राजस्थान से, भगवान से परमार अविनाश तेली, और तमाम सुनने वाले श्रोता जो आपके केंद्र से जुड़ेंगे उनके गाना डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में।
1: आज मेरी पहली बार देहरादून में है।
0: पहली बार? तो चलिए अपना नाम बताएं।
1: मैं 36 बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से?

0: बात कर रहे हैं?
1: फरुखाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: जी फरुखाबाद यूपी से बात कर रहे हैं। तो आज आपका कार्यक्रम में पहली बार कॉल लगा है ये?
1: हाँ जी, मैंने बार
0: अच्छा, हाँ जी,
1: मैंने एक बार लगाया तो नहीं रहता है, नहीं तो पैदा कर रहा लगाते हैं, लग गया।
0: हाँ जी, क्योंकि सभी के कॉल आते रहते ना। तो बताइए आज कैसा लग रहा है आपको, आपका कॉल लगा कार्यक्रम में?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा।
1: मैं रेडियो पकड़ता सारा दिन, मतलब 5 दिन है तो वो सुनता रहता हूँ। जो प्रोग्राम आता है रात को शुक्रवार को।
0: अच्छा, तो आज का दिन तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल हुआ है ना।
1: हाँ, अच्छा लग रहा है।
0: ऐसे ही ना, हमेशा अच्छा लगते रहना चाहिए जी।
1: हाँ, अच्छा नहीं है, मैंने कई बार ट्राई मार लिया, नहीं है जी, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मेरी।
0: चलिए कोई बात नहीं है ना, देर से ही सही पर दुरुस्त लगा है ना आपका कॉल आज कार्यक्रम में लगा, पहली बार लगा, इससे तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है
1: हाँ जी,
0: जी। तो बताइए कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। और ये फरुखाबाद में एक दिन में बहुत बढ़िया चल रहा है, और आलू सब बेचे थे, अभी तो अपने तकड़ी है, तो इनका जैसे लाभदायक है। और जैसे नींबू पानी है उसके, और जाइए लस्सी वगैरह वगैरह
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने।
1: और जैसे कच्चे जैसे कहीं बच्चे बार जानवर करने के अच्छा है, कहीं पानी यानी रखना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: घर के पुण्य मिले,
0: हाँ जी,
1: पशु हैं तो उनको भी सारा पानी टाइम से।
0: और बताइए क्या करते
1: हाँ, खेती
0: हैं आप?
1: बाड़ी करता हूँ, खेती बाड़ी।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आप?
1: हाँ जी, खेती बाड़ी
0: अच्छा।
1: किसान आदमी।
0: वाओ, किसान है ना, बहुत प्यारी
1: हाँ
0: बात है ये।
1: जी,
0: और
1: और मेरे ये तो मक्का मक्का लगी हुई है,
0: तो कैसी हो रखी है इस बार फसल आपकी?
1: कटाई मक्का भी और मक्का भी तो कटने वाले हैं
0: अच्छा।
1: अभी।
0: अच्छा, और जब आप खेती करते हैं तो खेती करते समय रेडियो सुनते होंगे, है ना?
1: हाँ, रेडियो भी सुनते रहता हूँ और मोबाइल देखता रहता हूँ, मोबाइल तो घर से रेडियो रात को सुनता हूँ, तो मोबाइल से सुन लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: रेडियो फिर दोपहर को सुनने लगता है, वो शाम को सुनता है, ये मतलब
0: आप
1: है। हाँ,
0: तो फोन में भी पूरे प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: फोन पे ऐसा है, फोन पे तो कितने कोई दिक्कत ना, फोन पे एप्लीकेशन
0: हाँ जी, फोन
1: डाउनलोड
0: को तो कहीं भी
1: है।
0: अपने साथ ले जाओ, है ना?
1: हाँ, तो वो जो में आपका देहरादून
0: अच्छा। और हमारे यहाँ से कितने जानकारियाँ आती है खेती के लिए, उनका कभी आप लाभ उठाते हैं?
1: बढ़िया आते हैं, लोग
0: बहुत प्यारी बात है ये। तो बताएं आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज वो ना और उसमें गाना है ओ प्रिया प्यार,
0: एक बार और बोलिए कौन सा वाला गीत।
1: दिल प्रिया प्रिया
0: अच्छा,
1: माधुरी दी आमिर खान की दिल।
0: हाँ जी। और प्रोग्राम में आप अपने दोस्तों का या परिवारजनों का नाम लेना चाहेंगे तो
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: जरूर ले
1: सबसे
0: सकते हैं जी। बिल्कुल।
1: पहले आपके करेंगे, और तो आपको बहुत बहुत बताऊँ, और आप कुमार भट्टाचार्य जी हैं, अमिताभ बच्चन पटेल हैं, और मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जितने तमाम सुनने वाले हैं भारत का।
0: जी, तो चलिए, आज आपका पहली बार कॉल भी लगा कार्यक्रम में, तो
1: हाँ, फिर बारिश
0: हाँ जी, तो फिर से कॉल करते रहिएगा कार्यक्रम में, है ना? तो चलिए, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में आपकी पसंद का ये गीत। अपना ख्याल रखिएगा
1: धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया। हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमा
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। अपना नाम बताएं।
1: जी मैम, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। अपना नाम
1: जी
0: बताएं।
1: मैम, मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, ग्राम दोलापुर, उत्तर प्रदेश से। जी
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं आप।
1: मैम,
0: जी तो कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं मैम?
0: यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से हैं। जी, और आज आपका कार्यक्रम में कॉल लगा, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको?
1: जी मैम, आज काफी अच्छा लग रहा है, काफी अंतराल के बाद आज मेरी आपसे बात हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है मैम।
0: जी, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना? जी, और
1: जी बिल्कुल मैम।
0: जी क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं आचार्य बनाता हूँ।
0: अच्छा, क्या बनाते हैं आप?
1: मैं घर बनाता हूँ।
0: अच्छा, आशियाने बनाते हैं, आपने आशियाना बोला ना?
1: जी मैम,
0: हाँ, वाह,
1: और साथ साथ में रेडियो भी सुनता हूँ, और रेडियो भी मैकेनिक हूँ मैम। जी
0: अच्छा, रेडियो ठीक करते हैं।
1: मैम,
0: अच्छा, बहुत प्यारी बात है ये तो। अच्छा,
1: और जब
0: लोग,
1: जब टाइम मिलता है तो मैम आपका कार्यक्रम सुन लेता हूँ।
0: अच्छा, तो रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, सुबह को भी सुनता हूँ, नमस्कार देहरादून, और बादशाह फरमाइश सुनता हूँ, लोकगीत सुनता हूँ मैम। आपकी फरमाइश सुनता हूँ, यानी सुबह से रात्रि 11 बजे तक सभी प्रोग्राम सुनता हूँ मैम।
0: वाह, मतलब रेडियो आपका साथी है, आप जुड़े रहते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: मैम,
0: रेडियो
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
0: जी, ये तो बहुत प्यारी बात है। और मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों के लिए आशियाने बनाते हैं, कितना प्यारा काम करते हैं आप।
1: जी मैम,
0: जी,
1: मैम
0: और
1: मैं जब काम पे होता हूँ तो मोबाइल ऐप के द्वारा सुन लेता हूँ, और घर पर होता हूँ तो रेडियो सेट सुनता हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है ये, है ना? काम करते समय मोबाइल से रेडियो सुन लो तो काम
1: जी मैम,
0: का पता भी नहीं चलता।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल पता नहीं चलता है, और कार्यक्रम चलता रहता है, गीत गीत वगैरह चलते
0: हाँ
1: रहते
0: जी,
1: हैं,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: बात तो फरमाइश चलती रहती है मैम,
0: जी बिल्कुल
1: अपना
0: बिल्कुल
1: देते रहते हैं।
0: जी, काम भी हो, मनोरंजन भी हो, है ना? और आप अपने
1: बिल्कुल
0: फरमाइश भी
1: मैम,
0: भेजते रहते हैं, वाह, काम के
1: बिल्कुल मैम,
0: बीच में।
1: बिल्कुल।
0: जी,
1: मेरी अक्सर आकाशवाणी देहरादून में फरमाइशी लगती रहती है मैम।
0: अच्छा, हाँ जी, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आपका नाम ना कितने बार हम लोगों ने शामिल कर रखा है प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आकाशवाणी देहरादून का एक छोटा सा नियमित श्रोता हूँ मैम।
0: बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, और मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मैम, हमारे यहाँ पर काफी गर्मी है मैम,
0: है ना,
1: और इस
0: गर्मी
1: समय
0: है,
1: भी
0: और आप
1: बिल्कुल
0: काम
1: मैम,
0: काम करते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना? ज़रूर।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम काम पे जाते हैं तो सर पे कैप वगैरह ओके जाते हैं, और मैम टोले वगैरह रख लेते हैं मैम सिर पे।
0: हाँ बिल्कुल, कवर करना ना खुद को बहुत ज़रूरी है गर्मी के इस मौसम
1: बिल्कुल
0: में।
1: मैम, बिल्कुल। इस समय भी काफी तेज धूप हो रही है मैम।
0: अच्छा, तो और खूब पानी पीजिएगा।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अपना ध्यान रख रहे हैं मैम, अपना भी रख रहे हैं, अपने घर वालों को भी, वो आस पड़ोस वालों को, खास करके अपने बड़े बुजुर्ग का ध्यान बहुत रखना पड़ा है मैम।
0: बहुत प्यारी बात है ये कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास और अपने अपनों का भी ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात
1: बिल्कुल
0: है
1: मैम,
0: जी। और आज आपका कॉल लगा, कैसा लग रहा है आपको?
1: आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज इतनी अंतराल के बाद मेरी कॉल लगी आकाशवाणी देहरादून में, बहुत खुशी हो रही है मैम।
0: बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट ना पूरी बयां कर रही है, जिसे मैं महसूस
1: बिल्कुल
0: भी कर
1: मैम,
0: पा
1: बिल्कुल
0: रही
1: बिल्कुल
0: हूँ।
1: मैम, बिल्कुल
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये जो खुशी होती है ना, जो इन खुशी को ना हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते
1: बिल्कुल मैम,
0: जी, वो साफ पता लग रहा है, झलक रही है आपकी खुशी आपकी आवाज में।
1: मुझे मैम एक विश्वास भी था, आज आकाशवाणी देहरादून में मेरी कॉल जरूर लगेगी इंशाल्लाह, तो कॉल लगी भी, आपने रिसीव भी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम,
0: जी बिल्कुल,
1: और
0: और
1: आपसे
0: देखिए,
1: बात कर और आपसे बात करके तो और भी अच्छा लग रहा है मैम।
0: वाह, और देखिए, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत भी सुनी है ना, आप कॉल कर रहे थे तो देखिए आपका कॉल ही लग गया आज।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: ये तो बेहद ही खास दिन हुआ आज का, है ना?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास दिन।
0: हाँ जी बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है।
1: शुक्रिया मैम।
0: जी, तो बताइए, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम हमारे आसपास में, मतलब हमारे गांव के पास में मेला लग रहा है मैम,
0: हाँ जी,
1: मैं आज मेला पिक्चर का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा, मेला फिल्म का कौन सा गीत?
1: मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है।
0: आज मेला लग रहा है, किस चीज का मेला लगा है वहाँ पर?
1: मैम ये पता नहीं, मतलब एक महीने लगातार मेला लगता है।
0: अच्छा, और आप जाते हैं
1: बिल्कुल
0: मेले? अच्छा
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम जाते हैं और उसे चैती मेला बोलते हैं मैम।
0: अच्छा लगता होगा ना मेले में जाकर, मजा आता होगा।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: बहुत प्यारी बात है ये तो।
1: बिल्कुल मैम, मैं आपसे भी और तमाम श्रोता से भी चाहता हूँ कि आप भी आइए और हम भी चलेंगे आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर चलेंगे, है ना? कभी आए तो आपके साथ
1: बिल्कुल
0: जरूर मिले जाएंगे।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: हाँ
1: आइए,
0: जी
1: आपका वेलकम
0: जी
1: है।
0: जी तो चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आप अगर अपने परिवार जनों का या अपने किसी भी खास का करीबी मित्र का नाम लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, शुक्रिया।
0: जी
1: सबसे पहले आप चलेंगे हमारे साथ और जम्मू कश्मीर से नईम मलिक है, मुकेश कश्यप भाई है, वक्कार भाई है, राउ भाई है, निजामुद्दीन, आसिफ चौधरी, कादिर चौधरी है, राशिद अंसारी है और नदीम बाकी साहब है, और जितने भी श्रोता है सभी सुनेंगे और साथ में हमारी बहन सुनेगी नरगिस खातून।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, और अपना ख्याल रखिएगा।
1: बिल्कुल।

सी प्यारे से गीत के साथ ही आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम बस यहीं तक। और आज अगर हमारे नए श्रोता इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी इस कार्यक्रम में कॉल करके बन सकते हैं हेलो फरमाइश का हिस्सा। इसके लिए आपको करना है कॉल हमारे नंबर पर, नंबर है 7088001382। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088001382। हमारी फोन लाइन्स हर गुरुवार शाम 4 बजे से शाम के 5 बजे तक खुली रहती है और इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है अगले दिन यानी शुक्रवार रात 10 बजे से रात 11 बजे तक। तो इसी के साथ ही श्रोताओं, अपने दोस्त सुषमा जोशी को दीजिए अनुमति। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTI की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakha, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
3: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also call for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stress the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stress their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease